FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026, सुबह के 5:59 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के

विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। समय न बांधे ईश को, बांधे केवल प्रीत, दृढ़ता और उत्साह ही, भाव भजन की प्रीत,

ये कौन है पांच लुटेरे जो दिन रात हम सब की वास्तविक संपत्ति को लूटा करते हैं, और इन पांचों लुटेरों को हम अपने साथ रखते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, ये हमें लूटते रहते हैं। इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे एक दिन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना FM 102-103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है। लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है। कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहाँ से दूर परदेश में है और तुम यहाँ कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा। मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

0: अभी श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण किया गया। मुख्य स्वर ए हरिहरन, मिताली सिंह और उत्तरा केलकर के थे। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। FM 102-103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। पर्यावरण चेतना के कार्यक्रम आबो हवा में लीजिए सुनिए श्री अमित गोचर की लघु वार्ता वन विनाश से उत्पन्न समस्याएं।
1: श्रोताओं, आज के आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि के साथ जंगलों का विनाश बढ़ गया है। लोग नहीं जानते हैं कि पेड़ हमारी जिंदगी है। पेड़ों से हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों और जंगलों से हम अपनी काफी जरूरतों को पूरा करते हैं। जंगलों के कारण बारिश होती है, लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव अपनी जरूरतों के लिए अंधाधुंध जंगलों का विनाश कर रहा है। यही कारण है कि आज जंगलों का अस्तित्व खतरे में है। अकेले भारत में लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जंगल कट रहे हैं। शहरीकरण का दबाव, बढ़ती आबादी और तेजी से विकास की भूख ने हमें हरी भरी जिंदगी से वंचित कर दिया है। जंगलों में पेड़ों को अवैध रूप से काटा जाता है। एक ओर सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और दूसरी तरफ लकड़ी के माफिया जंगलों में दिन रात पेड़ काट रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लकड़ी माफिया पेड़ों को प्रतिरोध की भावना से काट कर व्यापार करने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। वनों की कटाई के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं और वनों की कटाई के परिणाम बहुत गंभीर हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। जहां पेड़ों की कमी होती है, वहां हवा प्रदूषित हो जाती है। शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा है। शहरों में लोग कई बीमारियों से पीड़ित हैं, विशेष रूप से अस्थमा जैसी सांस लेने की समस्या से। वनों के विनाश के कारण वन जीव खत्म हो रहा है। कई प्रजातियां गायब हो गई हैं और कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। वनों की कटाई का प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है श्रोताओं, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जंगलों के घटते क्षेत्र के साथ बारिश भी अनियमित हो रही है। जंगलों के क्षेत्र में निरंतर कमी और भूमि के क्षरण के कारण रेगिस्तान एक बड़े पैमाने पर फैल रहा है। आज नदियों का पानी उथलना कम गहरा और प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि उनके किनारों और पहाड़ों पर पेड़ों और पौधों की अंधाधुंध कटाई के कारण इस वजह से अपर्याप्त वर्षा होती है, जिससे जल स्रोत दूषित हो रहा है और पर्यावरण भी दूषित और सांस लेने में घातक साबित हो रहा है। पेड़ और पौधों ने वातावरण में फैलने वाली इन विषैली गैसों को रोकने और वातावरण में राख आदि के कण को रोककर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया है। आज वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पहाड़ और जंगल वीरान हो गए हैं। वनों की कटाई के फलस्वरूप पृथ्वी का सामान्य रहना वाला वातावरण प्रदूषित हो गया है। यह ओजोन परत के लिए गंभीर खतरनाक है, जो पूरी पृथ्वी की रक्षा के लिए आवश्यक है। श्रोताओं, जब ईंधन की मात्रा अपर्याप्त हो जाती है, तो गाय का गोबर और वनस्पति अवशेषों को ईंधन के रूप में भोजन बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस वजह से पेड़ों के हर हिस्से को धीरे धीरे इस्तेमाल में लिया जाता है, परंतु मिट्टी को पोषण नहीं मिल पाता। बार बार इस प्रक्रिया को दोहराने से मिट्टी की उत्पादकता प्रभावित होती है।

0: अंतहीन वनों की कटाई के कारण जानवर गांव में शरण ले रहे हैं। नतीजन देश के गांव और कस्बे में प्रवेश करने वाले जंगली जानवरों की घटनाएं बहुत आम हो रही हैं, जो मानव जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: पर्यावरण चेतना के कार्यक्रम आबोहवा में अभी आप सुन रहे थे श्री अमित गोचर की लघु वार्ता वन विनाश से उत्पन्न समस्याएं। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण में प्रस्तुत है हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 8:15 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वन संरक्षण। कार्यक्रम में आज का विषय है विदेशी वृक्षों से हमारे पर्यावरण को होती हानि और हमारी अर्थव्यवस्था के सहायक वन्य जीव। विशेषज्ञ होंगे उप वन संरक्षक श्री अनुराग भटनागर और वनस्पति शास्त्र से श्री सोनू कुमार। श्रोता इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर से 07442941142। कार्यक्रम नमस्कार कोटा का होगा आगाज सुबह 7:15 पर सुनेगा गांधी चर्चा कड़ी संख्या 31 गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन। सुबह 7:30 पर सुनेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाना सफर। आज का ये कार्यक्रम पार्श्व गायक अमित कुमार पर केंद्रित होगा और फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9:10 पर और शाम 6:05 पर। बहनों के कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण किया जाएगा सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी डॉक्टर साकेत गोयल से की गई भेंटवार्ता, विषय होगा हृदय रोगों से बचाव। दोपहर 12:00 सुनेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कड़ी संख्या 1320।

युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5 बजे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण विश्व पटल के अंतर्गत युवा साथी जानेंगे जल तापीय प्रणाली डालोल के बारे में। संध्या 7 बजे का समय होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का। कार्यक्रम में आज सजीव फोन इन का विषय होगा धान की सीधी बुआई कैसे करें। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा। किसान भाई इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें डायल करने होंगे हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 2941142, कोटा का एसटीडी कोड 0744। शाम 7:30 पर सुनेगा लोक संगीत और चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर रहेंगे रात्रि 9 बजे। शेष प्रसारण समय पर श्रोता आनंद ले सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण में ये थी एक झलक हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। FM 102, 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर

0: मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषः पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानाञ्च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इण्डो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एण्ड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एण्ड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। 57 दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 80-83,000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति।

0: आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं चत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया। लोग, गलियां, मौसम और मायने, बस कुछ एहसास हैं जो ज्यों के त्यों हैं, ना कम हुए ना कभी पुराने। और इन्हीं एहसासों को मुकम्मल करते हैं आप और हम। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, स्नेह अभिवादन आप सभी का सुबह सवेरे के कार्यक्रम नमस्कार कोटा में। कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। कई बार कई लोग हमें कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम अंदर तक टूट जाते हैं, और कई बार कई लोग कुछ ऐसी भी बातें कह देते हैं कि वो बातें हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। और इस बात से एक वाक्य याद आ रहा है जो हम आपसे यहाँ से साझा करना चाहेंगे। क्या पता इसे सुनकर आपको भी आपकी मंजिल मिल जाए। ये बात है थॉमस एडिसन के जीवन की। जब वे छोटे थे और स्कूल जाया करते थे, एक दिन जब वे स्कूल से घर लौटकर आए और अपनी माँ को उन्होंने एक लेटर दिया और कहा कि माँ, टीचर ने ये लेटर आपको देने को कहा है। माँ ने वो लेटर खोला और पढ़ने लगी तो माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने थॉमस एडिसन को गले लगा लिया। थॉमस एडिसन ने पूछा कि माँ, इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने लेटर एक बार फिर से खोला और वो उसे जोर जोर से पढ़ने लगी और कहा कि इसमें लिखा है कि थॉमस एडिसन एक जीनियस बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है, और इस बच्चे को हम इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं जो थॉमस को पढ़ा सकें। इसलिए हम ये सलाह देते हैं कि आप इस बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। उस दिन के बाद से माँ ने थॉमस एडिसन को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और थॉमस ने भी पूरी लगन मेहनत के साथ पढ़ाई की। और एक वक्त ऐसा आया कि थॉमस एडिसन अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक बन गए। बल्ब का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का आविष्कार किया, और भी कई सारे आविष्कार उनके नाम से दर्ज हैं। इन सब के बीच में उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन उन्हें अपनी माँ की अलमारी में रखा वही लेटर मिला जो स्कूल की टीचर ने माँ को देने को कहा था। उन्होंने उस लेटर को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही रखें। थॉमस एडिसन ये पढ़कर भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी माँ ने उनके लिए कितना बड़ा काम कर दिया। यदि उनकी माँ वही शब्द पढ़ देती जो लेटर में लिखे थे तो शायद थॉमस एडिसन वो थॉमस एडिसन नहीं बन पाते जिन्हें दुनिया जानती है, और ना ही इतने सारे आविष्कार हो पाते। तो दोस्तों, कई बार हम कई लोगों को ऐसे शब्द कह देते हैं कि वे मन में घर कर जाते हैं और अंदर तक टूट जाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी ऊर्जा सकारात्मक हो, जो औरों को जीने की नई राह दे, नई रोशनी दे। और कहते हैं ना कि जो सीढ़ियां किसी के लिए ऊपर तक जाती हैं, वही सीढ़ियां किसी के लिए नीचे भी आती हैं। ये सभी हमारे शब्दों पर और हमारी सोच पर निर्भर करता है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं ये अच्छा सा गीत, सुनिए।

कार्यक्रम नमस्कार कोटा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, बाजार जाकर खरीदारी करना एक आम बात है। कई बार हम हमारे साथ सामान लाने के लिए घर से ही कपड़े या जूट का बैग साथ लेकर जाते हैं, और कई बार नहीं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि दुकानदार से सामान के साथ बैग तो मिल ही जाएगा। और थोड़ी सी सहूलियत के चक्कर में हम हमारे साथ साथ पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि बाजार से सामान खरीदने के साथ साथ हमारे साथ आते हैं प्लास्टिक के बैग, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हैं। आज हम अपने चारों ओर हर जगह प्लास्टिक और प्लास्टिक के उत्पाद देखते हैं। प्लास्टिक पर बढ़ती हमारी निर्भरता के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। झीलों, समुद्रों, नदियों के आसपास जमा होने वाले कचरे का लगभग 80% से अधिक हिस्सा प्लास्टिक ही है, और ये ना सिर्फ हम मनुष्यों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा है। प्लास्टिक बैग के बढ़ते उपयोग के साथ साथ कचरे और प्लास्टिक के ढेर भी बढ़ते जा रहे हैं। प्लास्टिक के बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं हम सभी को यह एहसास होने लगा है कि प्लास्टिक से दूरी बनाना ही हम सभी के लिए और इस पर्यावरण के लिए बेहतर है। कई देशों में तो स्वास्थ्य और पर्यावरण की बेहतरी के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। अब हमारा ये सोचना बिल्कुल सामान्य है कि यदि प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल ना करें तो फिर सामान किस में लाएंगे, तो इसका बेहतर विकल्प कपड़े या जूट के बैग हो सकते हैं। जूट के बैग हम सभी के लिए एक बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि प्लास्टिक की तुलना में ये टिकाऊ भी हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी, और इनके सड़ने गलने पर ये खाद्य योग्य हो जाते हैं। इन दोनों जूट के बैग प्लास्टिक बैग की तुलना में एक वरदान के रूप में उभरे हैं। जूट, श्रोताओं, एक ऐसा उत्पाद है जो न केवल सस्ता है बल्कि बाजार में आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। साथ ही प्लास्टिक बैग जहां आप एक या दो बार ही इस्तेमाल कर पाते हैं, वहीं जूट के बैग को आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये देखने भी में भी काफ़ी सुंदर होते हैं, और पर्यावरण से भी इनको कोई नुकसान नहीं होता। तो पर्यावरण को हरा भरा, स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी आदतें अपने दैनिक जीवन में अपनाकर भी हम पर्यावरण के सच्चे प्रहरी, सच्चे मित्र बन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं हाड़ौती अंचल की अपनी आवाज आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। श्रोताओं, व्यक्तित्व में आज बात महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत वे कुछ समय तक शिक्षक रहे। उसके पश्चात तिलक वकालत के पेशे से भी जुड़े, लेकिन तिलक की पहचान सामाजिक कार्यकर्ता और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में है। तिलक का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही इनकी पढ़ाई में रुचि थी। तिलक जब महज 10 साल के थे तब इनके पिता रत्नागिरी से पुणे आ गए। तिलक जब मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब उनका विवाह तापीबाई से हुआ, जिनका नाम बाद में सत्यभामा हो गया। भारत के इतिहास में तिलक वो पीढ़ी थी जिन्होंने मॉडर्न पढ़ाई की शुरुआत की और कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। ग्रेजुएशन करने के बाद वे एक प्राइवेट स्कूल में गणित के शिक्षक बन गए, लेकिन इसके कुछ समय बाद स्कूल छोड़कर वे पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। तिलक उस समय देश में चल रही गतिविधियों से बहुत आहत थे और वे इसके विरुद्ध आवाज भी उठाना चाहते थे। वे पश्चिमी शिक्षा पद्धति के आलोचक थे। उनका मानना था कि इस शिक्षा पद्धति में भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से प्रस्तुत

किया जा रहा है। भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर डेक्विन एजुकेशन सोसाइटी बनाई और इसके अगले साल वे समाचार पत्रों के प्रकाशन से भी जुड़ गए। केसरी और मराठा साप्ताहिक समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने भारत की दुर्दशा और भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखा। तिलक को लोग लोकमान्य कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। इस नारे में छिपे ओजस्वी शब्दों ने मानव आजादी के मतवाले क्रांतिकारियों में एक ऊर्जा का संचार कर दिया था। तिलक क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उनके हिसाब से अहिंसा सत्याग्रह पूरी तरह से अपनाना सही नहीं था। 1897 में तिलक पर अपने भाषण के द्वारा अशांति फैलाने और सरकार के विरोध में बोलने के लिए चार्जशीट फाइल हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। इन प्रताड़नाओं के बावजूद आजादी के लिए उनके दिल में सुलग रही ज्वाला शांत नहीं हुई। जेल से आने के बाद तिलक समाचार पत्र एवं भाषणों के द्वारा अपनी बात गांव-गांव तक पहुंचाते। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वे सभी विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए लोगों को कहते और इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते। बाल गंगाधर तिलक करम दल के पक्ष में थे। आजादी की लड़ाई के लिए बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय का समर्थन करने लगे थे और इन तीनों की तिकड़ी लाल बाल पाल के नाम से जानी जाने लगी। सन 1909 में अपने समाचार पत्र केसरी में उन्होंने तुरंत स्वराज्य की बात कही, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें 6 साल की कैद हुई और उन्हें बर्मा जेल भेज दिया गया। यहाँ जेल में वे बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करते थे और यहीं उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। जेल से आने के बाद तिलक ने गरम दल और नरम दल दोनों को फिर से जोड़ने की कोशिश की। कोशिशों को नाकाम होता देख उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी होम रूल लीग बनाई। इसके बाद तिलक देश भर में भ्रमण करके भारतीयों को स्वराज आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। राजनीति के क्षितिज का ये सूर्य असमय अस्त तो हो गया, लेकिन इनकी दी हुई उष्मा ज्वाला के समान भारतीय क्रांतिकारियों के रूप में भड़क उठी और अंततः भारत में स्वराज की स्थापना हुई। महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक।

और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। शहर का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में अगले 5 से 7 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहने तथा पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार कोटा में आज बस इतना ही। कार्यक्रम में संयोजन रहा तेजरा मीणा का, प्रस्तुति राजेश महावर की। और अब दीजिए रीना को अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा कड़ी संख्या 31, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन।

श्रोताओं नमस्कार। गांधी चर्चा के अंतर्गत आप बापू की जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग से विभिन्न प्रसंग सुन रहे हैं, जिनमें गांधी जी के जीवन, उनके दर्शन और समाज के विभिन्न पहलुओं, उनकी समस्याओं और समाधान का विहंगम दर्शन मिलता है। आज के

प्रसंग में घर में परिवर्तन और बाल शिक्षा पर गांधी जी के विचार। डरबन में मैंने जो घर बसाया था उसमें परिवर्तन तो किए ही थे, खर्च अधिक रखा था, फिर भी झुकाव सादगी की ओर ही था, किंतु जोहानिसबर्ग में सर्वोदय के विचारों ने अधिक परिवर्तन करवाए। बैरिस्टर के घर में जितनी सादगी रखी जा सकती थी उतनी तो रखनी शुरू कर ही दी थी, फिर भी कुछ साज सामान के बिना काम चलाना मुश्किल था। सच्ची सादगी तो मन की बढ़ी, हर एक काम अपने हाथों से करने का शौक बढ़ा और बालकों को भी उसमें शरीक करके कुशल बनाना शुरू किया। बाजार की रोटी खरीदने के बदले कोने की सुझाई हुई बिना खमीर की रोटी हाथ से बनानी शुरू की। इसमें मिल का आटा काम नहीं देता था, साथ ही मेरा यह भी ख्याल रहा कि मिल में पिसे आटे का उपयोग करने की अपेक्षा हाथ से पिसे आटे का उपयोग करने में सादगी, आरोग्य और पैसा तीनों की अधिक रक्षा होती है। अतएव 7 पाउंड खर्च करके हाथ से चलाने की एक चक्की खरीद ली। उसका पाट वजनदार था, 2 आदमी उसे सरलता से चला सकते थे। अकेले को तकलीफ होती थी, इस चक्की को चलाने में पौलाक, मैं और बालक मुख्य भाग लेते थे। कभी कभी कस्तूरबाई भी आ जाती थी, यद्यपि उस समय वह रसोई बनाने में लगी रहती थी, मिसेस पौलाक के आने पर वे भी इसमें सम्मिलित हो गईं। बालकों के लिए यह कसरत बहुत अच्छी सिद्ध हुई। उनसे मैंने चक्की चलाने का या दूसरा कोई काम कभी जबरदस्ती नहीं करवाया, वे सहज ही खेल समझकर चक्की चलाने आते थे, थकने पर छोड़ देने की उन्हें स्वतंत्रता थी। घर साफ रखने के लिए एक नौकर था, वह घर के आदमी की तरह रहता था और उसके काम में बालक पूरा हाथ बटाते थे। पाखाना साफ करने के लिए तो म्यूनिसिपैलिटी का नौकर आता था, पर पाखाने के कमरे को साफ करने और बैठक आदि धोने का काम नौकर को नहीं सौंपा जाता था, उससे वैसी आशा भी नहीं रखी जाती थी। यह काम हम स्वयं करते थे और इससे भी बालकों को तालीम मिलती थी। परिणाम यह हुआ कि शुरू से ही मेरे एक भी लड़के को पाखाना साफ करने की घिन न रही और आरोग्य के साधारण नियम भी वे स्वाभाविक रूप में सीख गए। जोहानिसबर्ग में कोई बीमार तो शायद ही कभी पड़ता था, पर बीमारी का प्रसंग आने पर सेवा के काम में बालक अवश्य रहते थे और इस काम को वे खुशी से करते थे। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि बालकों के अक्षर ज्ञान के प्रति मैं लापरवाह रहा, पर यह ठीक है कि मैंने उसकी कुर्बानी करने में संकोच नहीं किया और इस कमी के लिए मेरे लड़कों को मेरे विरुद्ध शिकायत करने का कारण रह गया है। उन्होंने कभी कभी अपना असंतोष भी प्रकट किया है। मैं मानता हूं कि इसमें किसी हद तक मुझे अपना दोष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान कराने की मेरी इच्छा बहुत थी, मैं प्रयत्न भी करता था, किंतु इस काम में हमेशा कोई विघ्न आ जाता था। उनके लिए घर पर दूसरी शिक्षा की सुविधा नहीं की गई थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ पैदल दफ्तर तक ले जाता था। दफ्तर 2.5 मील दूर था, इससे सुबह शाम मिलाकर कम से कम 5 मील की कसरत उन्हें और मुझे हो जाती थी। रास्ता चलते हुए मैं उन्हें कुछ न कुछ सिखाने का प्रयत्न करता रहता था, पर यह भी तभी होता था जब मेरे साथ कोई दूसरा चलने वाला न होता। दफ्तर में वे मुवक्किलों और मुहर्रिरों के संपर्क में आते थे, कुछ पढ़ने को देता तो वे पढ़ते थे, इधर उधर घूम फिर लेते थे और बाजार में मामूली सामान खरीदना हो तो खरीद लाते थे। सबसे बड़े हरिलाल को छोड़कर बाकी सब बालकों की परवरिश इसी प्रकार हुई। हरिलाल देश में रह गया था, यदि मैं उन्हें अक्षर ज्ञान कराने के लिए 1 घंटा भी नियमित रूप से बचा सका होता तो मैं मानता कि उन्हें अक्षर ज्ञान हो गया है। मैंने ऐसा आग्रह नहीं रखा, इसका दुख मुझे और उन्हें दोनों को रह गया है। सबसे बड़े लड़के ने अपना संताप कई बार मेरे सामने और सार्वजनिक रूप से भी प्रकट किया है। दूसरों ने हृदय की उदारता दिखाकर इस दोष को अनिवार्य समझकर दरगुजर कर दिया है। इस कमी के लिए मुझे पश्चाताप नहीं है, अथवा है तो इतना ही कि मैं आदर्श पिता न बन सका, किंतु मेरी यह राय है कि उनके अक्षर ज्ञान की कुर्बानी भी मैंने अज्ञान से ही क्यों न हो फिर भी सद्भाव पूर्वक मानी हुई सेवा के लिए ही की है। मैं यह कह सकता हूँ कि उनके चरित्र निर्माण के लिए जितना कुछ आवश्यक रूप से करना चाहिए था वह करने में

कहीं भी त्रुटि नहीं रखी है और मैं मानता हूँ कि हर माता पिता का यह अनिवार्य कर्तव्य है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अपने इस परिश्रम के बाद भी मेरे बालकों के चरित्र में जहाँ त्रुटि पाई जाती है, वहाँ वह पति पत्नी के नाते हमारी त्रुटियों का ही प्रतिबिंब है। इन बालकों की अंग्रेजी शिक्षा के विषय में मेरे और पोलाक के बीच कितनी ही बार गर्मा गर्म बहस हुई है। मैंने शुरू से ही यह माना है कि जो हिंदुस्तानी माता पिता अपने बालकों को बचपन से ही अंग्रेजी बोलने वाला बना देते हैं, वे उनके और देश के साथ द्रोह करते हैं। मैंने यह भी माना है कि इसमें बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहता है और उस हद तक वह देश की तथा संसार की सेवा के लिए कम योग्य बनता है। अपने इस विश्वास के कारण मैं हमेशा जानबूझकर बच्चों के साथ गुजराती में ही बातचीत करता था। पोलाक को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी दलील यह थी कि मैं बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहा हूँ। वे मुझे आग्रह पूर्वक और प्रेम पूर्वक समझाया करते थे कि यदि बालक अंग्रेजी के समान व्यापक भाषा को सीख लें, तो संसार में चल रही जीवन की होड़ में वे एक बड़ी मंजिल को सहज ही पार कर सकते हैं। उनकी यह दलील मेरे गले न उतरती थी। अब मुझे याद नहीं है कि अंत में मेरे उत्तर से उन्हें संतोष हुआ था या मेरा हट देखकर उन्होंने शांति धारण कर ली थी। इस संवाद को लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी उस समय के मेरे ये विचार आज अनुभव से अधिक दृढ़ हुए हैं। और यद्यपि मेरे पुत्र अक्षर ज्ञान में कच्चे रह गए हैं, फिर भी मातृभूमि का जो साधारण ज्ञान उन्हें आसानी से मिला है, उससे उन्हें और देश को लाभ ही हुआ है। और इस समय वे देश में परदेशी जैसे नहीं बन गए हैं, वे द्विभाषी तो सहज ही हो गए, क्योंकि विशाल अंग्रेज मित्र मंडली के संपर्क में आने से और जहां विशेष रूप से अंग्रेजी बोली जाती है, ऐसे देश में रहने से वे अंग्रेजी भाषा बोलने और उसे साधारणतः लिखने लग गए। अभी आपने घर में परिवर्तन और बाल शिक्षा पर बापू की जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग से प्रसंग सुना। अगले अंक में सुनेंगे कुछ और रोचक प्रसंग। अब सुनिए महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा कड़ी संख्या 31, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का क्रमिक वाचन। वाचन स्वर राजेश महावर का था। आप सुन रहे हैं हाड़ौती अंचल की अपनी आवाज आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102-103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए सुहाना सफर। सुहाना सफर में आज सिर्फ गाने नहीं बल्कि बात होगी उस पार्श्व गायक की जिनका आज जन्मदिन है। एक ऐसे गायक जिन्होंने बचपन में ही बता दिया था कि वे एक जबरदस्त गायक हैं। पिता किशोर कुमार भी उनकी आवाज सुनकर हैरान रह गए। हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायक अमित कुमार की।

अमित कुमार के पिता किशोर कुमार और माँ रूमा गुहा थी। जन्म की तारीख 3 जुलाई सन 1952। बचपन से ही नन्हे अमित में संगीत के प्रति खासी रुचि थी। एक बार दुर्गा पूजा के दौरान उन्हें स्टेज पर गाने का मौका मिला। उस दुर्गा पूजा के फंक्शन का आयोजन महान अभिनेता उत्तम कुमार ने किया था। अमित कुमार की आवाज सुनते ही लोगों ने एक के बाद एक गानों की फरमाइश शुरू कर दी। जब ये बात उनकी माँ तक पहुंची तो माँ ने किशोर कुमार से शिकायत की कि अमित का ध्यान पढ़ाई में ना होकर गीत संगीत में है। और इसके बाद वो हुआ जिसका इंतजार अमित कुमार काफी अरसे से कर रहे थे। फिल्म तड़प के इस गीत में सुनिए अमित कुमार और लता मंगेशकर को धुन आर डी बर्मन की।

किशोर कुमार अपने बेटे के स्टेज शो को देखने पहुंचे, खुद बैठे लाइट रूम में और बेटे को परफॉर्म करने दिया स्टेज पर। जब देखा अपने बेटे का हुनर तो किशोर दा ने फैसला किया कि अब अमित को भी मुंबई लिए चलते हैं। इससे पहले अमित कुमार बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने पिता की फिल्मों में काम कर चुके थे। फिल्म थी दूर गगन की छांव में और दूर का राही। गाना आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले किशोर कुमार और अमित कुमार पर फिल्माया गया है। फिल्म दूर का राही में गाने की शूटिंग के दौरान अमित कुमार को बुखार था, परंतु पिता ने कहा कि एक्टिंग तो ठीक से करनी ही होगी और बुखार में तपते हुए नन्हे अमित कुमार पेड़ की डाल पर बैठे रहे। मैं तो चला, मैं एक पंछी मतवाला रे। दुर्भाग्यवश ये गाना फिल्म से हटा दिया गया। फिल्म तेरी कसम का ये गीत है आवाज अमित कुमार की, आर डी बर्मन की धुन, गीत के बोल आनंद बख्शी के।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण कार्यक्रम में। आज का विषय है, विदेशी वृक्षों से हमारे पर्यावरण को होती हानि और हमारी अर्थव्यवस्था के सहायक वन्य जीव। हमारे विशेषज्ञ होंगे उप वन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ श्री सोनू कुमार। हमारे श्रोता इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 2941142, कोटा का एसटीडी कोड 0744। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाना सफर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम पार्श्व गायक अमित कुमार पर केंद्रित है, जिनका आज जन्मदिन है। अमित कुमार का हुनर धीरे धीरे रंग ला रहा था। अमित कुमार के जीवन में एक बहुत बड़ा मौका उनका इंतजार कर रहा था और वो मौका था फिल्म बॉबी में अपनी आवाज देना। फिल्म मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद राज कपूर साहब फिल्म बॉबी बनाने वाले थे और इस फिल्म के लिए उन्होंने ऋषि कपूर को कास्ट किया। एक नई आवाज की तलाश थी। दिग्गज संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अमित कुमार का नाम सुझाया। अमित कुमार इस बात से घबराकर मुंबई छोड़कर कलकत्ता चले गए और तब शैलेंद्र सिंह को फिल्म बॉबी में गाने का मौका मिला। पहला मौका उनके हाथ से निकल गया, परंतु दूसरा मौका बहुत ही जल्द उन्हें मिला। फिल्म बालिका वधू में वे सचिन की आवाज बने। गाने में RD बर्मन का संगीत था और इस गाने ने इतिहास रच दिया। अमित कुमार इस गाने को लेकर कहते हैं कि ये गाना उनका ब्रेड एंड बटर यानी रोजी रोटी है,

80 के दशक में तो अमित कुमार ने कमाल ही कर दिया। राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म लव स्टोरी के लिए लॉन्च किया। इस फिल्म के गानों का संगीत आरडी वर्मन का रहा और बोल आनंद बख्शी के। आरडी वर्मन ने गायक के लिए अमित कुमार का नाम सुझाया और कुमार गौरव की आवाज बनकर अमित कुमार छा गए। इस फिल्म का हर एक गाना सुपर हिट रहा। जिसने फिल्म लव स्टोरी का ये गीत आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की, आरडी बर्मन की धुन, आनंद बख्शी के बोल।

श्रोताओं, आज सुबह 8:15 पर सुनना ना भूलें सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण। आज का विषय है विदेशी वृक्षों से हमारे पर्यावरण को होती हानि और हमारी अर्थव्यवस्था के सहायक वन्य जीव। हमारे विशेषज्ञ होंगे उप वन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर और वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ श्री सोनू कुमार। हमारे श्रोता इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07442941142। हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाना सफर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक अमित कुमार पर। पिता किशोर कुमार अपनी गायकी की यात्रा पर थे और बेटा अमित कुमार अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। फिल्म कुर्बानी में इनकी आवाज का जादू चला और फिल्म तेजाब में ये अनिल कुमार की आवाज बनकर आए। बहुत कम ऐसा होता है कि महान कलाकार का बेटा उसी महानता को छूने की कोशिश करे, पर ठीक ऐसा ही हुआ। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्म हम में गोविंदा और शिल्पा शिरोडकर पर फिल्माया हुआ गाना भी सुपरहिट रहा। सलमान खान की फिल्म बागी में भी वे उनकी आवाज बने। आमिर खान का गाना दीवाना मुस्सा नहीं लोगों की जुबां पर चढ़ चुका था और फिल्म कभी हां कभी ना के मासूम शाहरुख खान की आवाज भी अमित कुमार ही बने। बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ अमित कुमार ने काम किया और इन्हें सफलता भी हाथ लगी, परंतु आरडी वर्मन के साथ इनका एक अलग ही नाता था। फिल्म कभी खुशी कभी गम, राजू चाचा पेज 3 में इनके गाए हुए गानों को सराहा गया। फिल्म रोमांस का ये गीत है, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आरडी बर्मन की धुन है और गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुहाना सफर अभी आप सुन रहे थे। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक अमित कुमार पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से श्रोता सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्व

0: भी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब

0: पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जट्टा आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायल

0: को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं। राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रोग्राम वन संरक्षण।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
2: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
0: कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये बात तो हम सभी ने सुनी है और यही संदेश हम सभी को देते भी हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें मत लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। सुनने में हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगे, परंतु ये सच है कि हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिनकी सुंदरता हमें लुभाती तो है, परंतु पर्यावरण के दृष्टिकोण से इन्हें घर पर लगाना या अपने आसपास पनपने देना उतना ही घातक है। जानेंगे आज कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों की विदेशी और आक्रामक प्रजातियों के बारे में और कुछ वन्य जीवों के बारे में जिन्हें हम आक्रामक समझकर उन्हें मारने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से वे हमारे हितैषी हैं। विशेषज्ञ तो के तौर पर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ श्री सोनू कुमार जी और एक जानी पहचानी आवाज़ जिससे इस कार्यक्रम की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है, जिनसे इस कार्यक्रम में होने से वन्य जीवों के प्रति हमारा नज़रिया बदल रहा है। और हमारे साथ हैं उपवन संरक्षक श्री अनुराग जी भटनागर। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज का विषय है विदेशी वृक्षों से हमारे पर्यावरण को होती हानि और हमारी अर्थव्यवस्था के सहायक वन्य जीव। इस विषय से संबंधित अपने प्रश्नों के लिए आप हमारे विशेषज्ञों से सीधे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको डायल करने होंगे हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 2941142, कोटा का एसटीडी कोड 0744। और इससे पहले कि आप हमसे जुड़े, हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न करें, एक विनम्र अनुरोध हम यहाँ पर हमारे सभी श्रोताओं से करना चाहते हैं। श्रोताओं, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रश्न करते हैं और हम हमारी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो जिस स्तर पर हम चाहते हैं कभी कभी उस स्तर तक हमारे अधिकारी, हमारे विशेषज्ञ नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप धैर्य बनाए रखें, मर्यादित भाषा का आप इस्तेमाल करें और उन्हें धैर्यपूर्वक सुने। आपसे यही अपेक्षा है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना हम सभी के लिए अच्छा है। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू जी के साथ। सोनू जी, हम विदेशी प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि विदेशी प्रजाति को हम किस तरह से समझें।
3: जी मैडम, धन्यवाद। एक विदेशी प्रजाति अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शुरू से ये हमारे बीच में रही
0: जी,
3: है
0: जी।
3: तो विदेशी प्रजातियां ज़्यादातर अपनी जो स्वदेशी प्रजाति है उनसे थोड़ी सी इस मात्रा में इस तरह से अंतर रखती है अपने आप में कि वो अपनी जो स्वदेशी प्रजातियां हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है। इसमें पेड़ पौधे हो सकते हैं, कोई चिड़िया हो सकती है, किसी तरह का इंसेक्ट हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है जो बाहर से लाया गया हो और उसने अपने यहाँ एक प्रभुत्व स्थापित कर लिया हो
0: जी।
3: तो इन प्रजातियों से जो नुकसान हो रहा है अपनी स्वदेशी प्रजातियों को, इसलिए उन्हें इन्वेजिव का दर्जा दिया गया है
0: जी।
3: तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। हो सकता है हमारे देश में जो हमारी स्वदेशी प्रजाति है वो किसी और देश में
0: जी
3: इन्वेजिव हो जाए या वहाँ आक्रामक रूप से वो अपना व्यवहार दर्शाए।
0: ऐसा
3: तो जरूरी नहीं है कि एक देश की प्रजाति एक देश में या किसी और देश की प्रजाति उस देश में वहाँ की स्वदेशी हो
0: जी।
3: वो अपने आवास के अनुसार वो आक्रामकता प्रदर्शित करती
0: तो है। आवास के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये नेटिव है या इन्वेजिव है।
3: बिल्कुल नहीं
0: जी,
3: आवास के आधार पर तो हम कहेंगे उसे

FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रही हैं। सुबह के 8:15 का समय है। श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन।

0: इंट्रोड्यूस यानी एक्जोटिक,
1: जी जी
0: कि एक स्पीसी जो भारत की है वो श्रीलंका में है तो उसको एक्जोटिक बोलेंगे।
1: अच्छा,
0: और श्रीलंका की स्पीसी जो भारत में मिल रही है तो भारत के लिए एक्जोटिक है।
2: मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसमें। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी इंडिजिनस पे, इंडिजिनस का मतलब ये होगा कि वो हमारे देश में पिछले 10,000 सालों से यहाँ पे उगती आई हुई है। जैसे हम नीम की बात करें, यहाँ पे बड़ की बात करें, पीपल की बात करें, बहेड़ा की, अर्जुन की, मोखा की, वरुण की, ये पेड़ ऐसे हैं जो हमारे यहाँ 10,000 सालों से उगते आ रहे हैं, मतलब फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, आपको पता नहीं चल रहा कब से है। तो इनको हम बोलेंगे ये इंडिजिनस है। और जैसे ओक है जो हमारे यूरोप में मिलता है, ठीक है, वो हमारे यहाँ नहीं मिलता। लेकिन मैं कभी यूरोप गया और मैं वहां से दो पौधे उठा के यहाँ पे ले आया, है ना, जैसे हम लेंटाना को लेके आए, वहां से हम उठा के यहाँ पे ले आए, तो वो पौधा वहां का तो इंडिजिनस था, वहां पे वो 10,000 सालों से उग रहा था उनके यहाँ, हम उसको उठा के यहाँ पर ले आए, यहाँ पे हमने उसको उगा दिया यहाँ पे, तो वो पहले तो हुआ एक्जॉटिक कि ये एक्जॉटिक है, बाहर से हम लेके आए जैसे एक्जॉटिक। और यदि वो बहुत तेजी से फैलता है, उसका ये कहें प्रोपेगेशन जो है तेजी से होता है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इनवेजिव, तब ये इनवेजिव भी हो जाता है। इनवेजिव ज्यादातर के 100% एक्जोटिक ही होगा, क्योंकि मेरे देश का जो पौधा है जो 10,000 सालों से उग रहा है वो ऑटोमेटिकली तो भागी नहीं रहा है। आप देखो, नीम के नीचे 10,000 बीज गिरते हैं एक पेड़ के नीचे, लेकिन 10,000 पौधे तैयार नहीं होते हैं, वो बायोटिक कंट्रोल है उसका, दैट इज द थिंग।
1: हेलो हेलो
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, नाम बताइए। हेलो
3: हेलो
1: जी, नाम बताइए।
3: वर्षा,
1: प्रश्न कीजिए आप।
3: वर्षा
1: जी, वर्षा जी प्रश्न कीजिए। क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप, आपका कोई प्रश्न है?
3: अपन को जो जीव जंतु होते हैं उनको क्यों नहीं मारना चाहिए?
1: जी, प्रश्न आप एक बार फिर से रिपीट करें।
3: जो जीव जंतु होते हैं उनको क्यों
1: जीव जंतु जो है उन्हें क्यों नहीं मारना चाहिए?
2: जीव जंतु को आप क्यों मारना चाहते हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी जीव जंतु है ना, उनका प्रकृति के अंदर अपना अपना रोल होता है, वो कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। और इनडायरेक्टली देखें तो ह्यूमन बीइंग की यदि हम बात करें तो हर जानवर, जितने भी 1 करोड़ तरह के जो जानवर पृथ्वी पर रहते हैं, वो सभी मिलकर ह्यूमन बीइंग के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एज ए होल वो पूरी प्रकृति के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन का बेनिफिट ही हो रहा है, चाहे वो दीमक हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो एलिफेंट हो, तो सभी जानवर जितने भी हैं वो सब पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग करते हैं, इसलिए उनको हमें नहीं मारना चाहिए।
1: जी धन्यवाद वर्षा जी हमसे जुड़ने के लिए।
3: जी आप कौन सा कार्यक्रम है?
1: अनुराग जी, हम बिल्कुल अन्य वन्य जीवों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जिन्हें हम अब तक हमारे लिए घातक समझ रहे थे, एक नए नजरिए से आज उन्हें देखने का मौका मिलेगा आपके जरिए कि किस तरह से वो हमारे लिए और पर्यावरण के प्रति हितेशी। लेकिन फिलहाल पहले हम विदेशी प्रजातियों के बारे में बात करना चाहेंगे। सोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में ये जो विदेशी प्रजातियाँ हैं इनके फैलने के क्या कारण है?
0: मैम, इनका जो जनरली फैलने का रीजन है वो यही है कि अपने आप तो आ नहीं रही
1: जी,
0: हम अपने फायदे के लिए उन्हें किसी दूसरे देश से ला रहे हैं, फिर वो एग्रीकल्चर हो या वो उसकी सौंदर्यता हो या वो उसका अपने देश का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हो, तो किसी न किसी रूप में हम उन्हें यहाँ ला रहे हैं
1: जी। अभी आपने एग्रीकल्चर कहा,
0: बिल्कुल,
1: तो एग्रीकल्चर में मतलब मैं समझ नहीं पाई इस बात को कि किस तरह से।
0: बिल्कुल, एग्रीकल्चर में हम ये देख रहे हैं कि जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है
1: जी,
0: तो हमारे यहाँ कई सालों पहले तक हम इतने कुछ उस लेवल पे किस्में तैयार नहीं कर पा रहे थे, तो पहले जो शुरुआत हुई वो बाहर से लाया गया
1: जी,
0: तो उसमें ऐसा होता है कि वहाँ की वीड्स हमारे देश में वो सीड के तौर पर आ जाती है, तो वो जहाँ धीरे धीरे ग्रो करना हुई हमने उन पे ध्यान नहीं दिया
1: जी,
0: तो वो अपने आप को यहाँ पूरी तरह से वो जमा बैठी है
1: जी।
0: और अब ये हो रहा है कि मैं उसका पेस्टिसाइड से या हर्बिसाइड का यूज करके उसे निकालना पड़ रहा है या बार बार उसका वो करना पड़ रहा है।
2: इसमें मैं सोनू जी की बात को सपोर्ट करना चाहूंगा। जैसे ये बता रहे हैं ना कि जैसे हम धान लाए या व्हीट लाए, कुछ भी हम बाहर से इम्प्रूव्ड या हाइब्रिड वो कुछ चीज लेके आए हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे पार्थेनियम एक वीड है जो आज की तारीख में इंडिया के लिए बहुत बड़ा न्यूसेंस हो गया है, गाजर, कांग्रेस का इस तरह के वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, तो वो उसके साथ वहां से आ गया, अमेरिका से हमारे यहाँ आ गया। अब होता क्या है, देखिए, जब जो हमारे देश के पौधे हैं चाहे हमारे यहाँ की फसल है, उनको बायोटिक कंट्रोल होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसके ऊपर कोई ना कोई कीड़ा लगता है, और हमारे जितने तरह के कीड़े हैं वो उसको गॉड ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उनको सबको मैनेज कर लेता है।

0: अब जो आप वहां से पार्थेनियम लेके आए, इसके सीड को खाने वाला कोई जानवर हमारे पास नहीं है। अब हम अपने जानवरों से कैसे कहें कि भैया तुम इसके सीड को खा लो, वो नहीं खाते हैं उसको, क्योंकि बाहर का सीड है वो एक्सोटिक है पूरा पूरा। अब वो क्या, जितने सीड उसके गिरते हैं उतने ही वो बनते रहते हैं, पौधे बनते रहते हैं, जितने सीड गिरते हैं उनके पौधे बनते हैं। पर आप देखो, आप तुलसा के बीज डालोगे नहीं उगेंगे, क्योंकि उसके अंदर, उसकी मंजरी के अंदर भी कीड़ा होता है, उसके बीज को वो खा जाता है। तो ये बायोटिक कंट्रोल है, इसलिए हमें बाहर के पौधों को, एक्सोटिक को कम से कम लाना चाहिए, चाहे वो क्रॉप में हो, फसल में हो, चाहे वो हमारे ट्रीज में हो। पहले स्टडी करो उसके बारे में, तब हमें उस पौधे को लाना चाहिए, नहीं अवॉइड करना चाहिए बाहर से लाने का।
1: सोनू जी, ये बताए कि हमारे राजस्थान में ऐसी कौन सी विदेशी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की जो यहाँ मुख्यतः पाई जा रही है?
2: राजस्थान में वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, जैसे हमारे अरावली में या साउथ वाले जो राजस्थान है उसमें जनरली लेंटाना, जूली, विलायती बबूल जिसको अपन बोलते हैं, पार्थेनियम हो गया, सुबबूल हो गया, ये बहुत कॉमन है।
1: जी, एक कॉल लेते हैं।
2: बिल्कुल।
1: हेलो।
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, नाम बताइए।
3: मैं रामचंद माखीजा काफिर भाई बोल रहा हूँ, धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से।
1: जी प्रश्न कीजिए आप।
3: प्रश्न ये है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए, शरीर के लिए कितना लाभदायक हैं, और कौन से पौधे जो हैं नहीं उगाना चाहिए जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे? कुछ पौधे ऐसा मैं सुना हूँ होते हैं।
1: जी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका उत्तर रेडियो पर सुने।
0: देखिए, जितने भी पौधे होते हैं वो सभी हमें ऑक्सीजन देते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जो हम ऐसे इन्वेजिव ले आए हैं गलती से, जैसे लेंटाना की बात अभी सोनू जी ने बताई है, सुबबूल की बताई है, कोनोकार्पस इरेक्टस होता है, पार्थेनियम होता है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, या सेना होता है, सेना स्पेक्टेलिटिस जो साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये बायोमास भी दे रहे हैं, लकड़ी भी दे रहे हैं, लकड़ी भी हमारे काम आती है, लेकिन उससे ज्यादा ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। वो नुकसान कैसे कर रहे हैं कि ये हमारे यहाँ के जो लोकल स्पीसीज हैं उनका पूरा पूरा खत्म करते जा रहे हैं, यानी ये फैलते जाएंगे तो उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, उनका पानी सारा ये पी जाते हैं, चाहे यूकेलिप्टस हो, यूकेलिप्टस एक्सोटिक है लेकिन वो पानी बहुत सारा निकाल लेता है, सेना जो स्पेशलिटीज है वो भी सारा सारा पानी खींच लेता है। तो इस तरह से ये हमारे पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, वहां पे जो लोकल स्पीसीज है उनकी जगह वहां पे आज लेंटाना फैलता जा रहा है, तो वहां पे ग्रासेस कम होती जा रही है, वहां के लोकल ट्रीज कम होते जा रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा, और आज एक जन साधारण को, हर एक आदमी को ये समझना पड़ेगा हमें कि कौन कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एक्सोटिक हैं, जो कि इन्वेजिव हैं। हम बच्चे बच्चों को समझाना पड़ेगा, ये कोरोना की तरह से है। यदि मैं ये कहूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इस पे काम करेगा तो खाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम करने से नहीं चलेगा,
1: नहीं
0: इसमें
1: चलेगा।
0: जब कोरोना आया तो खाली मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं, हर एक को एक्टिव होना पड़ेगा, हर एक को अपने मुंह पे मास्क लगाना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम इन स्पीसीज को, एक्सोटिक्स को किस तरह से कंट्रोल करें। सबको जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब मुझे पता ही नहीं लेंटाना क्या होता है, आज 90% लोगों से आप पब्लिक से पूछेंगे कि लेंटाना क्या होता है, सुबबूल क्या होता है, कोनोकार्पस क्या होता है, पार्थेनियम क्या होता है, तो नोबडी नोज, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। तो उनको अवेयर करेंगे तब पता चलेगा कि कोरोना से बचना कैसे है, एंड दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कोरोना।
1: अनुराग जी, लेंटाना तो इन दिनों नर्सरी में भी देखा जा रहा है, वहां से लोग अपने घर पर लेकर आ रहे हैं, उसको लगा रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी अपने उसमें लगाती है, नाम लेने की वाली बात नहीं है, लेकिन वो लोग खरीद के लाते हैं, 200 रुपए का पौधा लगे और हम उसको उखाड़ रहे हैं। हम 500 लाख रुपए लगा के हम उसको उखाड़ रहे हैं, सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और कुछ लोग खरीद के लाते हैं।
1: हेलो। हेलो
4: जी, आकाशवाणी से।
1: जी नमस्कार, नाम बताइए।
4: जी मेरा नाम विनय है, मैं मंडाना से बोल रहा हूँ।
1: जी विनय जी, प्रश्न कीजिए आप।
4: जी मेरे अभी सोनू जी से दो सवाल है। पहला तो सर मैम ये है कि जब हम जानते हैं कि लंडाना जैसी स्पीशीज इन्वेजिव होती है तो ये नर्सरी में क्यों बेची जाती है? इनके ऊपर सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई वार्निंग देने का कोई उपाय क्यों नहीं करता?
1: बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न?
4: हाँ जी, और दूसरा सवाल सर मैम मेरा ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं आए दिन अखबारों में और न्यूज में पढ़ रहे हैं कि जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, कभी विकास के नाम पे, कभी माइनिंग के नाम पे, तो इसकी भरपाई करने के लिए जो वृक्षारोपण अभियान बार बार सरकार के द्वारा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, क्या ये कितने कारगर है? क्या इनसे हमारे पास कोई डेटा है जिससे ये साबित होता है कि ये जो पुराने एंशियंट जंगलों को काटने के बाद हम लोग जो ये वृक्षारोपण कर रहे हैं उससे कोई फायदा हो रहा है या उसकी भरपाई हो रही है?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, आप इनका जवाब रेडियो सेट पर सुनेंगे।
4: जी
1: जी, धन्यवाद
0: जी सर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है कि क्यों लैंटाना के पौधे को हम नर्सरी के अंदर उगाते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी

फॉरेस्ट की नर्सरीज के अंदर आपको कहीं पर भी लेंटाना का कोनोकार्पस का पौधा नहीं मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे आपको ये पौधा, लेकिन प्राइवेट नर्सरीज के ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं है, है ना। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जाके ये नहीं कह सकते प्राइवेट नर्सरी को आप ये पौधा तैयार, तो कुछ लोग इसके पौधे को तैयार कर रहे हैं, कोनोकार्पस को भी तैयार कर रहे हैं। कोनोकार्पस का 300-400 रुपए का पौधा भी बिक रहा है, जबकि हमारे मतलब फॉरेस्ट की तरफ से सर्कुलर निकल गया है कि भाई इस पौधे को कहीं पर भी तैयार नहीं किया जाए। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी न्यू दिल्ली यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ये अलेन स्पीसीज है और ये इन्वेजिव स्पीसीज है, इसको कम से कम लगाया जाए या इसको ना लगाया जाए, पूरी तरह से बना कर दिया। लेकिन कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें इसको प्रोहिबिट कर दिया हो कि भैया कोई करेगा तो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये नियम नहीं बना है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसमें 62A एक धारा होती है, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट कर सकती है, मैं नहीं कर सकता हूं, गवर्नमेंट चाहे तो इसको डिक्लेयर कर सकती है भैया इसको लगाने पे यदि कोई लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पर अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो पहली बात तो देखिए लेंटाना वाला ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि हम नर्सरी में तैयार नहीं कर रहे, प्राइवेट आदमी कर रहा है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, होना चाहिए लेकिन वो नहीं है अभी।

0: उसके अंतर्गत गवर्नमेंट कर सकती है, मैं नहीं कर सकता हूं, गवर्नमेंट चाहे तो इसको डिक्लेयर कर सकती है भैया इसको लगाने पे यदि कोई लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो पहली बात तो देखिए लंटाना वाला ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि हम नर्सरी में तैयार नहीं कर रहे, प्राइवेट आदमी कर रहा है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, होना चाहिए लेकिन वो नहीं है अभी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम लैंड को क्लियर करते हैं, जैसे मान लो हमें कहीं पर रोड बनानी है तो पेड़ काट दिए, कहीं पर डैम बनाना है तो पेड़ काट दिए, इस तरह से हम बहुत सारे करते हैं और कंपेंसेशन में उसके अगेंस्ट हम पौधे लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम मुश्किल से 20-30% उसको कंपेंसेट कर पाते हैं। यदि मैंने सपोज 100 पेड़ काटे हैं तो मुश्किल से हम जितने 100 के बदले मैंने 500 पौधे लगाए, लेकिन मुश्किल से 20% ही चलते हैं, 100 के अगेंस्ट 20 ही चल पाते हैं। क्योंकि मैं जो पेड़ काट रहा हूं उसकी एज है 100 साल 200 साल, और आज मैं जो पौधा लगा रहा हूं उसकी उम्र है 1 साल 1.5 साल। इतना बड़े पौधा मैं लगा पाता हूं, उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और उसमें भी बहुत तरह की चीजें होती हैं कि कौन सा पौधा आप लगा रहे हो। यदि मैंने इंडिजिनस नहीं लगा के मैंने वहां पे कोई ऐसा पौधा लगा दिया जो बाहर से लेके आए हुए हैं, क्योंकि वो फास्ट ग्रोइंग है। आज कोनोकार्पस हम क्यों लगाते हैं, फास्ट ग्रोइंग है, ग्रीन ग्रीन दिखता है, बड़ा हो जाता है फटाफट। मैं आज बेलपत्र लगाता हूं, मैं आज नीम लगाता हूं, मैं आज बड़गर लगाता हूं, बहुत स्लो ग्रोथ है, वो हल्के हल्के हल्के बढ़ता है, वो 5 सालों में जाके 4 फीट का ही होता है। तो हमें ये आपका जो क्वेश्चन है वो ये बिल्कुल मैं आपको मानता हूं कि उसको हम कंपेंसेट पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, पर फायदा है। यदि मैं ये भी नहीं करूंगा तो मेरे 20% जो हम कह रहे हैं 100 के अगेंस्ट 20 पौधे तैयार हो पा रहे हैं, तो वो तो कम से कम जंगल हम कर ही रहे हैं, कुछ तो कंपेंसेट कर ही रहे हैं। जी
1: सर। उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
2: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
3: सजीव फोन इन प्रोग्राम वन संरक्षण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विदेशी वृक्षों से हमारे पर्यावरण को होती हानि और हमारी अर्थव्यवस्था के सहायक वन्य जीव। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ श्री अनुराग जी भटनागर और श्री सोनू कुमार। सोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम जिन विदेशी प्रजातियों की बात कर रहे हैं तो इनसे जैव विविधता पर कितना बड़ा संकट आ पड़ा है?
4: मैम, इसको नापने का तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर जैसे आप हो, आप अपने गार्डन को अगर रेगुलर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक टाइम के बाद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे लेंटाना हो गया, सुबबूल हो गया, तो ये एक टाइम के लिए तो एक पौधा ग्रो होगा, लेकिन देखते देखते आपके पूरे गार्डन को कवर कर लेगा। फिर आप न चाहते हुए भी वहाँ कोई दूसरी स्पीसीज नहीं लगा सकते, आपको पूरा वो एरिया साफ करना पड़ेगा, उसके बाद भी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रह जाता है कहीं ना कहीं, सीड या उसकी जड़ें जमीन में रह जाती है।
3: तो क्या ये सिर्फ दूसरे जो स्थानीय वनस्पति है उन्हीं के लिए ये नुकसानदायक है, या जो कीट पतंगे हैं या जो दूसरे वन्य जीव हैं हमारे आसपास उनके लिए भी है ये खतरा?
4: बिल्कुल मैम, पूरी बायोडायवर्सिटी के लिए। बायोडायवर्सिटी की हम बात करें तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाता है, क्योंकि जो इन्वेजिव होता है उनका जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें ये भी रहता है कि वो अपनी रूट से कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिनको एली लोग पेटी बोलते हैं, तो उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी नुकसान होता है
3: जी।
4: तो ये इंसेक्ट के लिए, उसका जो बटरफ्लाईज होती है उनके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, सबके लिए, बर्ड्स के लिए भी।
3: बिल्कुल बिल्कुल। हेलो,
5: हाँ, गुड मॉर्निंग भटनागर साहब।
0: गुड मॉर्निंग साहब
3: जी।
5: प्रश्न, पौधा है एल्स्टोनिया स्कॉलरिस, ये मेरे घर के सामने मैंने 4-5 लगा रखे थे, हर साल इनकी कटिंग करता था, इनको शेप दे रखी थी
0: जी।
5: फिर मैंने इनकी जड़ों को बड़ा अजीब ढंग से बढ़ता देखा, मेरी रैंप में कुछ क्रैक्स देखे, और फिर मैंने कहीं इसको पढ़ा कि ये शैतान का पेड़ कहलाता है और इसके सांस की बीमारी पनप सकती है और इसकी जो सुगंध है वो एलर्जी पैदा करती है, ये वो। तो मैंने इनको काट दिया, बहुत दुख तो हुआ, लेकिन क्या ये सही है जो नेट पे और इन पे अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन?
0: हाँ सर, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, जो ये एलिस्टोनिया स्कॉलरिस है ना, ये एक्चुअली है तो इंडिया का ही, लेकिन इंडिया में भी आप देखेंगे तो जैसे एक पौधा

0: है तमिलनाडु का, एक पौधा है केरल का, एक आसाम का, एक यूपी का, एक हरियाणा का, अलग अलग जगह के पौधे हैं, उसमें भी फर्क पड़ता है। हम जैसे राजस्थान में रहते हैं, जो ये हम एलेस्टोनिया स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, ये हिमालयन ट्रैक से आया हुआ है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी रूट्स नीचे तक फैलती हैं, तो हमें अपने घर के बाहर या घर के अंदर इसको नहीं लगाना चाहिए, वहाँ से अवॉइड करना चाहिए। इसके पॉलन से भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पॉलन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं पूरे। यदि हम स्कॉलर्स लाए थे यहाँ पर, तो हम एक दो पौधे लगा सकते हैं, रोड साइड लगाएं, फास्ट ग्रोइंग है, फटाफट बड़ा हो जाता है और अच्छा भी लगता है, ग्रीन होता है, लेकिन उसके पौधे हमें एक दो लगाने चाहिए। यानी एक रे, यदि एक पूरी लाइन है 100 मीटर की लंबी लाइन है, तो उसमें मैं दो पौधे लगाऊंगा, बाकी मैं नीम भी लगाऊंगा दूसरे पौधे। हम क्या करते हैं, हमने पूरी पूरी लाइन ही स्कॉलरिस की लगा दी, यानी एलेस्टोनिया की लगा दी हमने पूरी पूरी सब पढ़नी। अब उसमें कितना ज्यादा पॉलन्स आएगा, वो सारे पॉलन्स जब आएंगे तो मेरे सांसों में जाएंगे, और सांसों में जाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगा उससे। और फिर दूसरी बात, इसकी रूट्स नीचे तक फैलती हैं, तो आपकी जो बिल्डिंग है उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमें इसको कम से कम 15 से 20 मीटर की दूरी पे उसे लगाना चाहिए मकान से, तब तो वो ठीक है लगेगा। और वो भी नंबर ऑफ प्लांट्स की भी एक लिमिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हमने लाइन से सारे के सारे स्कॉलर्स लगा दिए, तो इतना ही है आपने काटा, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आप दूसरा लगा लीजिए, उसमें आप नीम लगा लीजिए, वहां पे आप उसमें गुलमोहर लगा लीजिए, वहां पे शीशम लगा लीजिए, ये आप लगा सकते हैं वहां पे।
1: जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू।
0: और मैम मैं आपको बता रहा था, जैसे अभी सोनू जी बता रहे थे, हाँ। बहुत अच्छी बात कि कैसे कीट पतंगों का और जानवरों के ऊपर कैसे फर्क पड़ता है इनवेटिव। देखिए एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया हम बात करें, कोटा के आसपास की बात करें, मुकुंद्रा की बात करें, वहां पे मान लो आपके पूरे लंबे चौड़े एरिया में लेंटाना फैल गया। लेंटाना फैलने से देखिए हर्बीवोर्स के ऊपर कैसे इफेक्ट आएगा, सारे में ग्रासेस खत्म हो जाएंगी, ग्रासेस नहीं आ पाएंगी, जहाँ पे लेंटाना आता है वहां ग्रास नहीं आ सकती। अब ग्रास नहीं आएगी तो जितने हिरन है, जितने हर्बीवोर्स है, जो घास खाने वाले जानवर है, उनको वहां पे घास नहीं मिलेगा, तो घास नहीं मिलेगा तो वो जगह छोड़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो शहरों तक आ जाएंगे। अब इन हर्बीवोर को खाने के लिए कार्निवोर पीछे, कार्निवोर भूखा है, उसको हर्बीवोर नहीं मिल रहा है, तो हर्बीवोर के पीछे पीछे कार्निवोर भी घूमता घूमता परेशान होता, वो आ रहा है, वो भी शहरों में पहुंच रहा है। और इससे बड़ी बात आप देखिए, जो बायोडायवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, एक तितली जो होती है ना, उसका भी ये पता है उसको कि होस्ट प्लांट कौन सा है, वो जाके उसके ऊपर बैठती है पत्ते के ऊपर, अपने पैरों से टेस्ट लेती है, उसकी जो जीभ है वो उसके पैरों में होती है
1: जी।
0: तो वो अपने पैरों से देखती है टेस्ट मेरा वाला है या नहीं है, वो लगता है तो लेंटाना ही मेरा काम करे, वो उड़ के आगे जाती है, आगे भी लेंटाना, आगे भी लेंटाना, वो 2 किलोमीटर तक चली जाती है, उसको अपना होस्ट प्लांट ही नहीं मिल रहा है, तो इट विल डाई, या तो वो मर जाएगी, या अपने अंडे देगी तो भी अंडे उसके हैच नहीं हो पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। तो आप देखिए, आपने एक क्या पता नहीं हजारों तरह की जो हमारी तितलियां हैं, मॉथ्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, तो इससे कितनी बड़ी बायोडायवर्सिटी के ऊपर फर्क पड़ा। जो इतने सारे हमारे यहाँ पेड़ पौधे उगते थे, जैसे कि शतावरी है ना, सफेद मूसली है, काली मूसली है, इस तरह के जो पौधे होते हैं, बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे जैसे कंद जिनको बोलते हैं, कंद मूल जो होते हैं, वो सब भी नहीं उग पा रहे लेंटाना की वजह से। तो इनको खाने वाले जो जानवर हैं, जो इस पे खाते हैं, जंगली सुअर जो रूट्स खाएगा, उसको रूट्स नहीं मिल रही है, तो पूरा पूरा इकोसिस्टम, पूरा जंगल डिस्टर्ब हो जाता है एक इनवेसिव के आने
1: से। तो कहा जाए तो खाद्य श्रृंखला भी डिस्टर्ब हो रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जैसे हिरण को घास नहीं मिली तो फिर वो शहरों की तरफ आएगा, उसके पीछे पीछे जो अन्य वन्य जीव उसको खा रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो मानव वन्य जीव संघर्ष भी इसके पीछे कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल आपने कोरिलेट किया है, बिल्कुल सही कोरिलेट किया है।
1: आपसे ये भी जानना चाहेंगे सोनो जी कि सिर्फ इसका जो प्रभाव है वो जैव विविधता पर, कीट पतंगों पर ही हो रहा है, या मानव पर भी इसका कोई असर देखा जा रहा है,
3: बिल्कुल,
1: या किसी तरह की एलर्जी या किसी तरह की कोई बीमारी इन वनस्पतियों से?
3: बिल्कुल, इन्वेजिव ही इसीलिए उनको बोला गया है कि वो किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचा रही है अपने जैव विविधता को भी और इंसान को भी और अपने जो एग्रीकल्चर है उसको भी।
1: इंसान को किस तरह से?
3: इंसान को मैं जैसे अभी अपने क्वेश्चन किया सप्तपर्णी का, तो सर ने बताया कि वो हिमालयन रीजन का है, तो वहाँ इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो नाइट होती है वो थोड़ी वेट होती है, तो उसके पोलन इतना दूर तक नहीं जा पाते, तो वेट के साथ वो वहीं बैठ जाते नीचे।
1: जी।
3: अपने राजस्थान क्या है, ड्राई है, यहाँ रात में गर्म हवा चलती, ज्यादा दूर तक वो फैलता है,
1: बिल्कुल,
3: तो इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। और दूसरा पार्थेनियम, जो आपको स्किन अगर आपकी सेंसिटिव है तो आपका पूरा जला देगा पैर अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आए, इसी तरह लेंटाना है, लेंटाना को अगर कोई बीटल खा रहा है या कोई केटल खा रहा है तो उसका पूरा इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन को वो पूरा छेद कर देता है, एक टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है।
1: हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार, नाम बताइए
2: जी। योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़।
1: योगेश जी प्रश्न कीजिए।
2: हम जानना ये चाहते हैं, जैसे जो विदेशी वृक्ष बोल रहे हैं तो वो कहीं पर जैसे लगाते हैं तो क्या उससे आसपास के जो

0: जमीन होता है, मृदा होती है, उसको भी प्रभावित करता है क्या?
1: जी बिल्कुल, इसकी इनको बोलते हैं एलेलोपैथिक प्रॉपर्टीज। उन उन जो हमारे हम इन्वेजिव्स की बात कर रहे हैं उनके अंदर, जैसे हर एक प्लांट के अंदर ही एलेलोपैथिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पर जो हमारे इन्वेजिव जो हम एक्जॉटिक बाहर से लेके आए हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे यहाँ के जो ट्रीज हैं, जो लोकल हमारे यहाँ के ट्रीज हैं, उनके जर्मिनेशन परसेंटेज को कम कर देते हैं। और जब उनके पत्ते नीचे गिरते हैं, जैसे मान लो कोई ट्री है उसके पत्ते नीचे गिरते जा रहे हैं, कोनोकार्पस या कोई भी लैंटाना, तो उन पत्ते के जो जब वो गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो सोयल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ के जो पौधे हैं उनके पौधों का सीड जब नीचे गिरेगा तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। यानी यदि मेरे यहाँ के जो पौधे हैं जो हजारों सालों से यहाँ पे उग रहे हैं उनके सीड तो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, और ये जो बाहर से हम एक्जॉटिक लेके आए हैं ये जहां जहां जाता जा रहा है इसके बीज फैलते जा रहे हैं, और ये बीज फिर पत्ते गिरा रहे हैं, फिर नीचे गिर रहे हैं, तो मिट्टी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करते जा रहे हैं। यानी पूरा जो वहाँ का इको सिस्टम है पूरा ही चेंज हो जाएगा, वहाँ का नुकसानदायक हो जाएगा।
2: धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सोनी जी, अब समहाउ ये जो पेड़ पौधे हैं ये आ तो चुके हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि इनकी रोकथाम कैसे की जाए?
3: मैम, ये जैसे सर ने स्टार्टिंग में कोविड से रिलेट करके बताया तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो एक डिजीज है, इन्वेजिव को भी एक डिजीज मान सकते हैं हम
2: जी,
3: कि वो इस तरह से फैल चुकी है कि उसका सबसे बढ़िया की रोकथाम ही, वो अपन बोलते हैं किसी बीमारी के लिए कि उपचार ही वो सबसे बड़े इलाज
2: है।
3: तो इन्वेजिव का भी वही है, अगर किसी एरिया में आ गई है तो आप उसको एक तो प्रोटेक्ट कर, उसको प्रोटेक्ट कर दो। किसी नई जगह जा रही है तो पहले नई एरिया को अपन को उसको ट्रीट करना चाहिए, जब वो नया एरिया क्लियर हो जाए फिर अपन जो पुराना एरिया है जहाँ बहुत ज्यादा फैल चुकी है उस पर वर्क करना चाहिए। तो ये रोकथाम सबसे बढ़िया है।
2: और शायद इनको लगाने से पहले आजकल हमारे पास सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी नॉलेज है जहां हम उसको फोटो उसका लेकर हम उस पर डाल सकते हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म है और वो बता देता है कि कौन सी, ये कौन सा प्लांट है, इसकी कौन सी प्रजाति है, ये स्थानीय है या इन्वेजिव है, तो शायद एक ये तरीका भी हम अपना सकते हैं।
3: क्वेश्चन था वो लास्ट में ऐड किया है कि आम जन किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है,
2: कैसे कर सकता है,
3: क्योंकि हर कोई नहीं जान रहा, यहाँ तक कि जो हमारे कॉलेजों में जो रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन सी स्पीसीज जो है वो इन्वेजिव है, किस तरह का प्लांटेशन करना चाहिए। जैसे अभी अपन ने बात की, विनय जी का एक क्वेश्चन था कि लैंटाना क्यों बिक रहा है, तो आया था तब वो इतना सुंदर नहीं था शायद, लेकिन हॉर्टिकल्चर या जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है उसकी कहीं सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसका हमने ब्यूटिफिकेशन कर दिया, तो एक बड़ा रीजन है।
2: हेलो हेलो,
4: नमस्कार मैम।
2: जी नमस्कार, नाम बताइए।
4: मैं ग्राम संदरा तहसील बानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से मनोहर लाल मेहर बोल रहा हूँ।
2: क्या प्रश्न है आपका?
4: प्रश्न में ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी हेलो क्रमैक्स की रिकॉर्डिंग कब होती है?
2: ये अभी फिलहाल हम इसका आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, वन संरक्षण कार्यक्रम है, अगर इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
4: तो उसके लिए कितने बजे फोन लगाऊंगा मैं?
2: आप 10 बजे के बाद हमें ऑफिस के नंबर पे कॉल करें। धन्यवाद। हम श्रोताओं को पुनः अनुरोध करना चाहेंगे कि वे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग करें, मर्यादित भाषा का वो इस्तेमाल करें और पेशेंस के साथ वे हमारे अधिकारियों के, विशेषज्ञों के जवाब सुने। अनुराग जी, पिछली कड़ी में हमारे पास एक कॉलर का कॉल आया था, हम ले नहीं पाए थे, बाद में मैंने उनको लिया था, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या वन विभाग की अपनी कोई नर्सरी है?
1: अरे हमारी बहुत सारी नर्सरी है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
2: तो वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से पौधे उपलब्ध हैं और किस किस कीमत पर, शायद वो अभी भी सुन रहे हो?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे कोटा की, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप यदि देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ नर्सरीज हैं और वहाँ पे लाखों पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे कोटा की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे बड़गांव नर्सरी है हमारी और 3-4 नर्सरी यहाँ पे और है हमारी, है ना, लेकिन वो टेरिटोरियल डिवीजन के अंतर्गत आती है, वन विभाग की जो टेरिटोरियल डिवीजन है, और उसको आपको नेट पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको कम से कम 50 तरह की स्पीसीज के पौधे मिलेंगे, उनकी कॉस्ट होती है, जैसे 6 रुपए का भी पौधा है वो होती है उसकी एज के हिसाब से, है, और थॉर्नी स्पीसीज है तो उसकी अलग अलग रेट्स होते हैं, उसमें 15 रुपए का रेट भी है, 20 रुपए का रेट भी है, 25-30 रुपए का भी, अलग अलग रेट्स के उसमें पौधे होते हैं, पूरा उसमें सर्कुलर आपको लगा हुआ मिलेगा, जहां पे भी आप नर्सरी में जाएंगे गेट पे लगा हुआ मिलेगा। तो आप जितने भी पौधे लगाना चाहें, कितने पौधे खरीदना चाह रहे हो, ऑनलाइन है सारा सारा।
2: अच्छा।
1: हाँ पूरा ऑनलाइन मिलेगा आपको, और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट भी करना है, सारी फैसिलिटीज है वहाँ पे इसके अंदर। हाँ इसमें क्या डिविजन्स अलग अलग

0: होते हैं, जैसे हमारा जो डिवीजन से हम वाइल्ड लाइफ डील करते हैं तो हम लोग नर्सरी तैयार नहीं करते, लेकिन जो टेरिटोरियल डिवीजन है उनका मेन काम यही है, वो पूरे लाख में कम से कम 20 लाख पौधे तैयार कर रहे हैं हम लोग, और वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें, लेकिन सब कॉस्ट से देते हैं। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होता है, आदमी लेके चला जाता है, फ्री में मिल रहा है, वो फिर लगाता भी नहीं है,
1: उसकी वैल्यू उसको समझ में नहीं आती
0: है, वो बहुत कॉस्ट बहुत कम है, 6 रुपए की क्या कीमत होती है 6 रुपए।
1: और मुख्यतः कौन से हमें वहाँ पौधे,
0: मेन पौधे जैसे आपको मिलेंगे, नीम मिलेगा, बर्ड मिलेगा, पीपल मिलेगा, वहाँ पे आपको गुलमोहर के पौधे मिल जाएंगे, आपको पेल्टाफोरम के पौधे मिल जाएंगे, बहेड़ा मिल जाएगा, अर्जुन मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे पौधे, हर श्रृंगार के मिल जाएंगे,
1: फल के भी मिलेंगे जैसे आम अमरूद,
0: हाँ हाँ आम के, अमरूद के, अनार के, ना केला के, इनके सबके पौधे वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन हम लोग हॉर्टिकल्चर वाले कंपैरेटिव कम रखते हैं, हमारे फॉरेस्ट स्पीसीज ज्यादा होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना फलों वाले, अब ह्यूमन बींग का हमारा क्या नेचर होता है, फलों का मतलब जो मैं खाता हूँ, जो ह्यूमन बींग खाता है, देखिए बड़ के ऊपर इतने फल आते हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको फल नहीं मानते हैं क्योंकि हम नहीं खाते हैं उसको, चिड़िया तो खा रही है ना उसको।
2: उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
3: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
1: हेलो हेलो,
4: हाँ मैम, वन मोर क्वेश्चन
1: जी।
4: ये अपना डिपार्टमेंट ट्री गार्ड सप्लाई करता है सब्सिडी पे या किस रेट पे करता है?
0: नहीं सर, हमारे यहाँ ट्री गार्ड सप्लाई नहीं करते हम लोग, इसके लिए आपको नगर निगम से या ग्राम पंचायत से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वन विभाग के जो जंगल के अंदर पौधे लगाते हैं ना हम लोग, उसमें हम ट्री गार्ड यूज ही नहीं करते हैं
4: जी।
0: तो हम लोग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहीं पर भी पूरे राजस्थान में या पूरे इंडिया में कहीं पर भी ट्री गार्ड सप्लाई नहीं करता है
4: जी।
1: धन्यवाद। और अनुराग जी, अब हम बात करेंगे उन वन्य जीवों के बारे में जिन्हें अधिकतर हम ये सोचते हैं ये आक्रामक है और उन्हें देखते हैं हम मारने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि पता लगा है कि ये वन्य जीव भी हमारे मनुष्य के लिए और पर्यावरण के लिए काफ़ी हद तक ये लाभदायक है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जंगली सुअर के बारे में कि किस तरह से, क्योंकि पिछली कड़ी में हमने जाना था कि ये तो खेतों को नुकसान पहुंचा देता है, खेती बर्बाद कर देता है, अब ये मानव के लिए और पर्यावरण के लिए हितैषी कैसे हुआ?
0: जी बिल्कुल, देखिए एक चीज़ तो थंब रूल ये है कि गॉड ने जिस चीज़ को बनाया है वो किसी न किसी अच्छे काम के लिए बनाया, पर साइंटिफिकली मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जैसे कहते हैं कि वो गाँव से हमारे खेतों में आ जाता है और खेतों में हमारे फसलों को नुकसान कर देता है, वास्तव में कर देता है, पर हमें इसके पीछे थोड़ा सा देखना पड़ेगा वो क्यों आता है। वो वहां पे खाली खाना खाने के लिए आ रहा है क्योंकि उसको जंगल में खाना नहीं मिल रहा है, जंगल में ग्रासेस कम हो गई हैं, जंगल में उसके खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो भटक कर अपने वहां तक आ गया, खेतों तक आ गया, खेतों में नुकसान पहुंचा देता है। तो ये होता है और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्कीम बने जिससे कोई नुकसान हुआ है तो उसको मिले, और हम जंगल को इंप्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं जिससे वो बाहर जाए ही मत। यदि उसको खाना जंगल में मिल जाएगा तो वहां पर क्यों जाएगा? अब जंगल में खाना कम हो गया क्योंकि हमने अपने ह्यूमन बीइंग ने अपने मवेशी सारे गायें भैंस बकरी सब कुछ हम जंगल में भेज देते हैं, तो सारा सारा खाना तो ये खा जाते हैं, अब वो बेचारा निकलता है रात में
1: जी।
0: वो तो रात में निकलता है नॉक्टर्नल है, रात में जब खाना नहीं मिलता है तो आपके खेतों में घुस जाता है। अब वो देखिए साइंटिफिकली हमारे लिए काम कैसे करता है, उसको भगवान ने एक ऐसा काम दिया हुआ है कि वो अप्रैल मई जून वैसे तो पूरे साल ही करता है, वो रूट ट्यूबर्स को ढूंढता है यानी कि वो जड़ों को निकालने की कोशिश करता है, वो जड़े खाता है। तो अब आप ये देखिए वो सारे जंगल में अप्रैल मई जून में पूरे में खोदता जा रहा है, पूरी खोद के उसने पूरी मिट्टी खोद डाली पूरे जंगल की। अब ये कैसे फायदा होता है इसको? आप यदि किसान हैं, आप यदि आपने थोड़ी सी किसानी करी है तो आप देखिए यदि आप बीज बोने जाएंगे तो आप सीधी हार्ड सोयल के ऊपर कभी बीज नहीं बोते, आपको पहले जुताई करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा सारा, फिर आप उसके ऊपर बीज डालेंगे, फिर आप उसके ऊपर पानी डालेंगे, तब आप खेती कर पाएंगे। अब ये हमारे जंगल का किसान है,
1: बिल्कुल
0: जंगल के अंदर खेती मतलब जंगल में हम पेड़ पौधे कैसे लगाएंगे, तो ये क्या करता है, ये पूरे जंगल को खोद रहा है
1: जी।
0: उसके बाद क्या होता है, खैर है, बेर है, दूसरे भी तरह के हमारे वृक्ष हैं, उन सबके बीज उस पर गिरते हैं, और उसके बाद अप्रैल मई जून में ये काम हो रहा है, खुदाई चल रही है, बीज गिर रहे हैं, और जैसी जुलाई आती है, बारिश आ जाती है, पानी आता है, वो सारे सारे बीज ट्रीज बन जाएंगे, अंकुरित हो जाते हैं, ट्रीज बन जाते हैं। यदि इसमें से मैं एक रोल खत्म कर दूं कि मैं जंगली सुअर को हटा देता हूं जंगल से,

0: तो अब बीज तो गिरेंगे, पानी भी आएगा, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, या जर्मिनेट होंगे तो 5% 10% होंगे। अभी वो 100% जर्मिनेट हो रहे हैं, और जितने जंगल ये लगे हुए हैं बड़े बड़े, इन सब के अंदर जंगली सुअर का बहुत बड़ा रोल है
1: जी,
0: वो अपना रोल प्ले करता है।
1: हेलो हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार, नाम बताइए। प्रश्न कीजिए आप।
2: प्रश्न पूछना था मैम, ये नील गाय और ये सूर खेतों में ज्यादा नुकसान कर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
2: इनके लिए आपके विभाग से कोई चलाओ अभियान तो
1: जी, जी जी जी।
0: आपका गांव कहाँ पर है सर?
2: हमारा गांव ग्राम बाजार तहसील तालेड़ा में सर।
0: तालेड़ा में, अच्छा ठीक है। देखिए वही जैसे मैं अभी ये बात कर रहा था कि नील गाय हैं चाहे जंगली सुअर है, वास्तव में आज किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, और इसके ऊपर डिपार्टमेंट बहुत सीरियस है और बहुत इस पर मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जंगल के अंदर हमारा जो वहाँ पे ग्रासेज हैं, जो वहाँ के ट्रीज हैं, जो वहाँ का इनका फूड एक तरह से, वो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। देखो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, यदि मुझे अपने घर में खाना मिल रहा है तो मैं पड़ोसी के यहाँ खाने नहीं जाऊँगा, या मैं बाहर कहीं खड़ा होकर भीख नहीं मांगूंगा। मुझे घर में खाना मिल जाएगा तो मैं दूसरे के क्यों जाऊँगा? अब वो बेचारा जानवर, उसको क्या जंगल के अंदर खाने को मिल ही नहीं रहा है। हमारी गायें भैंसे बकरियां भेड़ें इतनी ज्यादा वहां पे आ जाती हैं, वो सारा सारा चारा वहां पे खत्म कर देती हैं जंगल का। अब ये रात ये निकलते हैं ज्यादातर रात में। अब रात में वो आता है, उसको खाना नहीं मिलता, ढूंढते ढूंढते ढूंढते फिर वो आसपास के खेतों में घुस जाता है। पर इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया को हम फेंस कर रहे हैं, वहां पे हम पक्की दीवारें बना रहे हैं, और अंदर हम ज्यादा से ज्यादा ग्रासलैंड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा ग्रास रहे और एनिमल बाहर ना जाए।
1: इन्होंने नील गाय का जिक्र करा, पिछले कड़ी में भी हमने आपसे जाना था कि वो भी खेती को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या नील गाय भी हमारे पर्यावरण के लिए किसी तरह से वो लाभदायक हो सकती है?
0: बहुत लाभदायक है। देखिए जितने हर्बीवोर्स हैं, मैं जनरली बताऊंगा, उसके साथ स्पेशली मैं यदि बात करूं नील गाय की, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नील गाय सिर्फ हिंदुस्तान में पाई जाती है, और हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एंटीलॉप है वो। एंटीलॉप और हिरण में भी आप समझिए, हम सबको हिरण बोल देते हैं, हिरण मतलब हर्बीवोर, लेकिन दो चीज, एक तो डियर, हम बचपन में पढ़ रहे हैं डियर माने हिरन, है ना, और एक हम दूसरा होता है एंटीलॉप। इन दोनों में क्या फर्क होता है? जिसके सींग मेरे हड्डी से जो जुड़े हुए हैं सींग, वो तो होता है एंटीलॉप, और जिसके सींग मेटिंग सीजन में आते हैं और वो गिर जाते हैं वो होता है डियर। जैसे स्पॉटेड डियर, चीतल जिसको हम बोलते हैं, उसके जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो उसके वो जो सींग है वो निकल आएंगे, और उसके बाद वो बड़े बड़े हो जाएंगे, खूब दिखेंगे, उसके बाद मेटिंग होगा, मेटिंग होने के बाद वो सींग नीचे गिर जाएंगे और अगले साल फिर आएंगे। उसके हड्डी से जुड़े हुए नहीं है, उसमें ब्लड भी निकल आता है, लेकिन आप देखें गाय जो है उसका हड्डी से जुड़ा हुआ है, उसका सींग ऐसे गिरता नहीं है। तो दूसरे जो है जैसे चिंकारा है, ब्लैक बक है, और आपकी ये नील गाय है, ये है एंटीलॉप्स। एंटीलॉप्स मतलब इनके सींग जो है वो उससे हमारे जुड़े हुए हैं, वो कभी गिरेंगे नहीं, और जनरली मेल में ही होते हैं सींग जो होते हैं इनमें, यदि हम बात करें। और ये फायदेमंद कैसे है, जो मैंने डिफरेंस बता दिया, फायदेमंद कैसे होता है नील गाय? देखिए इतने सारे मतलब कम से कम 46 तरह से वो ऐसे ट्रीज हैं, ऐसे ग्रासेस हैं जिनको वो खाती है, और उनके पेट में जब वो जाता है वो सीड के थ्रू उसको सीड डिस्पर्सल कर रही है। वो एक बीज जैसे उसने खाया, कोई भी उसने सीड खाया, वो पेट में गया उसका, और जब वो बीट के थ्रू उसके यानी कि उसकी गोबर के थ्रू जब बाहर निकलता है तो उसमें से वो पेड़ बनता है, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या होती है, ऐसे जंगल के अंदर बहुत सारे बीटल्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं जिसे डंग बीटल जो बोलते हैं, वो उसका जो गोबर होता है उसके अंदर ही रहते हैं, और उससे वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के अंदर। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि मिट्टी में से या किसी भी चीज में से आयरन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, इसको वापस कैसे मिट्टी में मिलाना है, ये लोग ये काम करते हैं।
3: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार, प्रश्न कीजिए।
3: मैं नाथूलाल कुमावत उदयपुर वाटी जिला झुंझुनू से बोल रहा हूँ। ये मैक्सिकन पिटूनिया पौधा है, तो वो भी क्या नुकसान पहुंचाता है, और इन पौधों को दीमक से खत्म किया जा सकता है, लंटाना या पिटूनिया?
4: देखिए उसका नाम ही मैक्सिकन है तो वो अपने आप में ही एक्जोटिक है और इन्वेजिव भी है। उसको जनरली पीली सत्यानाश या पीली कटली बोलते हैं।
3: अच्छा,
4: तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसके सीड्स आजकल सरसों के साथ जब मिक्स करके बेचा जा रहा है तो वो पैरालिसिस वगैरह कर रहा है। तो वो है, इसके लिए हमें आपको उसकी जागरूकता होनी चाहिए कि ये पौधा मेरे लिए आक्रामक है, मुझे

0: अपने यहाँ से हटाना है। तो फर्स्ट थिंग, जब आप उसे अपने आसपास से हटाओगे तो अपने आप वो एक टाइम के बाद आपको नहीं दिखेगा।
1: और लेंटाना को उसे दिमाग से खत्म नहीं कर सकते क्या?
0: नहीं सर।
2: अब दिमाग को कैसे समझाओगे कि इसको खा ले यार? दिमाग हमारा कहना नहीं मानती है, वाइल्ड लाइफ है वो।
3: जी जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अनुराग जी, चीते की भी काफी बातें होती है। कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। समय कम है तो संक्षेप में
2: बताता हूँ। देखिए, चीता की यदि हम बात करें तो इंडिया से तो 1952 में लास्ट रिपोर्टेड है, हमने एक्सटेंड कर दिया था उसको। उसके बाद फिर पहली बार मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अफ्रीका से चीता यहाँ पे लेके आए हैं। और दिस इज ए वेरी गुड न्यूज कि वो बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो गए। आज लगभग 50 प्लस में हमारे चीता इंडिया में आ गए। और चीता की अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है। आज तक रिकॉर्ड के अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर इस एनिमल ने, चीता ने, कभी अटैक नहीं किया। तो यदि ये हमारे यहाँ आ जाता है, इंडिया में आ जाता है, तो इससे हमें देखिए बहुत बड़ा फायदा होगा टूरिज्म के अंदर। इससे बहुत बड़ा टूरिस्ट इसके अंदर हमारे पास आ सकता है। और दूसरा, जो ये पूरा इकोसिस्टम के अंदर जो अपना रोल प्ले करता है वो तो वो कर ही रहा है। ये हमने बहुत बड़ी गलती करी थी कि हमने 52 में सारे चीतों को मार दिया था। 47 में हमने शिकार करके सबको खत्म कर दिया था। ये इतना बढ़िया जानवर है कि ये कभी रोर नहीं करता है, आपको डराएगा नहीं, कभी चार्ज नहीं करेगा आपके ऊपर। तो इसको, इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। ये बहुत कम पानी पीता है और शिकार भी बहुत छोटे जानवरों का करता है। और हमने स्कीम रखी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, यदि चीता किसी भी एनिमल को मार देगा तो तुरंत हम उसका कंपेंसेशन उसको दे देंगे। सपोज आपकी बकरी को वो मार देता है तो आप उसके बदला लेने की कोशिश नहीं करें, हमें बता दें, हम आपकी बकरी के पैसे आपको दे देंगे उसमें।
3: एक आखिरी प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का कार्यक्रम चलता है। पिछले दिनों एक खबर हमने अखबार में पढ़ी थी कि एक बच्चे के द्वारा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में 1008 आम की गुठलियां लगाई गई और आपने उसमें सहयोग करा। यदि कोई इस तरह से अपनी तरफ से सहयोग करना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ खास करना होगा, वन विभाग की किस तरह से सहमति लेनी होगी, वो संक्षेप में जानना चाहेंगे।
2: बिल्कुल, देखिए 1 तारीख से 7 तारीख तक क्या, हम तो पूरे जुलाई में ही हम प्लांटिंग करते रहेंगे। और 5 तारीख में मेरा निवेदन है कि हम लोग भारत विकास परिषद के सहयोग से उनके साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ा वहां पे प्लांटिंग वाला और सीड सोइंग वाला वहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें 300-400 लोगों के आने की संभावना है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। तो मेरा सभी से यहाँ पे जनसाधारण से निवेदन है, यदि कोई भी आदमी इसमें सहयोग करना चाहता है तो अपने बीजों को एकत्रित करे। जैसे आम के बीज है ना, आपके जामुन के बीज है, बेलपत्र है, इनके बीजों को इकट्ठा करे। उनकी लाइफ बहुत कम होती है, 5 से 10 दिन में मर जाते हैं। तो आपको उससे पहले पहले उनको साफ करके धो के यदि आप हमारे ऑफिस में, हमारे अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में दे देंगे उसको, तो हम उनको डेफिनेटली मदर बेड में डाल के उनको पौधे से पेड़ तैयार करने में हेल्प करेंगे।
3: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का सजीव फोन इन प्रोग्राम। वन संरक्षण कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया निहाल सिंह और कमल शंकर मीणा ने, संयोजन हिमांशु नामा का, और अब मेरी ना हमारे दोनों विशेषज्ञों के साथ श्री अनुराग जी भटनागर और सोनू जी के साथ कार्यक्रम से आप सभी से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा।
5: राजस्थान सरकार की एक अनूठी एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इस योजना में आप ले सकते हैं वन्य जीवों को गोद और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में कर सकते हैं एक बड़ा सहयोग। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में आप बाघ यानी टाइगर, लायनस यानी शेरनी, लेपर्ड, हाइना यानी जरक, सियार, स्लॉथ बेयर, सांभर, काला हिरण, चिंकारा, चीतल एवं नील गाय को गोद ले सकते हैं। मूक प्राणियों की यदि सेवा करना चाहते हैं एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से अवश्य जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा, पुराना चिड़ियाघर, नयापुरा, कोटा।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले 1 साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से जोधपुर और बालोतरा प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर को जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंचेंगे। श्री शर्मा रिफाइनरी का निरीक्षण कर एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। और ब्यौरा हमारे बालोतरा संवाददाता से।
1: पीएम के दौरे के दौरान करीब 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। पासधारी लोगों को ही रिफाइनरी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पचपदरा से रिफाइनरी तक साइकिल से विशेष लोग भी पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने 500 से अधिक साइकिलों की व्यवस्था की गई है। वहीं किसी भी वाहन को रिफाइनरी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी आज पचपदरा आ रहे हैं। वे पीएम विजिट की तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं रिफाइनरी के पास एसपीसीएल के नवीन आउटलेट का शुभारंभ भी करेंगे। बंसीलाल, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सहित विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। विभिन्न प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमत में 6.23% की बढ़ोतरी हुई है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा है कि जैविक खेती को अपनाने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कृषि व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कल जयपुर में सहकार सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री दक ने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने और अपने अनुभव अन्य किसानों के साथ साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों और कॉनफेड के बिक्री केंद्रों का उपयोग किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए पूरी तरह से संपर्क रहित और कागज रहित स्वास्थ्य स्वघोषणा प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्री आगमन से 24 घंटे पहले तक अपनी स्वास्थ्य स्वघोषणा ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने झूठी शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने और निर्दोष लोगों को फंसाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए जून महीने में 75 लोगों को अदालत से सजा दिलवाई है। वहीं 1,870 मामलों में न्यायालयों ने संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस की अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन कुमार पांडे ने बताया कि झूठी शिकायतों के मामलों में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अदालत में ये फैसले सुनाए जा रहे हैं। इस अवधि में नागौर जिले में सबसे ज्यादा 292 मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया है, जबकि जयपुर ग्रामीण और अलवर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए की गई सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय

0: निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। ये कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने का मंच प्रदान करेगा। बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में सवाई माधोपुर जिले ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि अप्रैल और मई 2026 के दौरान जिले की 1584 नवजात बालिकाओं के खातों में 39,60,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले ने योजना के तहत 98% से अधिक लक्ष्य हासिल किया है।
1: हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो डिलीवरी होती है, प्राइवेट जो हमसे जुड़े हुए हैं गंगापुर सिटी में, उनमें जो डिलीवरी होती है उसका हम पर डे एनालिसिस करते हैं, कितनी डिलीवरी हुई है, उसमें से कितनी बच्चियां पैदा हुई, कितनों का भुगतान हो गया, कितना नहीं हुआ है। वो डेटा हमारे पास किसी भी हॉस्पिटल का 5, 7, 10, 20 से ज्यादा का नहीं होता। मेजर जो गैप है हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी इंदिरा है, भंडार है, जहां हमारी ज्यादा डिलीवरी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल वहां से निकल गया। फिर हम उसका सब सेंटर वाइज बाइफर्केशन करते हैं, किस सब सेंटर की ये डिलीवरी है, दस्तावेजों के अभाव की वजह से किसी का भुगतान रुकता है तो वो दस्तावेज हम उपलब्ध कराते हैं।
0: प्रदेश के अधिकांश दक्षिण पूर्वी इलाके मॉनसून की बारिश से भीगे हैं। कल मॉनसून के प्रवेश के साथ ही चौमासे की बेहतर शुरुआत हुई, कई स्थानों पर झमाझम में ही बरसा। राजधानी जयपुर में रात भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी है। डूंगरपुर में सुबह से ही बरसात हो रही है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़, गंगापुर, जहाजपुर और गुलापुरा क्षेत्र में झमाझम बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज 12 कोटा और झालावाड़ के लिए वर्षा का ऑरेंज अलर्ट बताया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून के अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है।
2: आगामी 3-4 दिनों में राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने और राज्य के कई भागों में मानसून के प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रबल भावना बनी हुई है। इस दौरान उदयपुर कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी राज्य के ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की भी प्रबल संभावना बनी रही।
0: अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा में तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक साल में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पहुंचा, हाड़ौती क्षेत्र में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। डर्टी पिक्चर फिल्म का ये गीत है, आवाज कमाल खान की। रजत अरोड़ा के बोल हैं और ये धुन है विशाल शेखर की।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को सुनिए फिल्म हे बेबी के इस गीत में। शंकर ऐशान लोई की ये धुन है और समीर के बोल।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं सुनिए ये कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज शाम 7 बजे सजीव फोन इन चौपाल का विषय होगा धान की सीधी बुआई कैसे करें। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कृष्ण मुरारी। हमारे किसान भाई इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07442941142 यानी 2941142 कोटा का एसटीडी कोड 07444।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। इस गीत को अपनी आवाज़ें दे रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। अनु मलिक की धुन है और गीत के बोल समीर के हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत।

आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी शर्मा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू ही बड़े निराले होते हैं। एक तरफ सुख के गीत और दूसरी तरफ गमों के प्याले होते हैं। एक तरफ अंधेरा तो दूसरी तरफ उजाला।

होते हैं, एक तरफ खुशी जीत की तो दूसरी तरफ हार के प्याले होते हैं। किसका कितना वजन है इसका कोई तोल नहीं, जीवन तो जीवन है इसका कोई मोल नहीं। सखियों, जीवन में सुख और दुख, आशा निराशा, प्रेम झगड़ा, सही गलत साथ साथ चलते रहते हैं। हर बात के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। और हमें जो सही लग रहा है, हो सकता है कि वो सामने वाले को गलत लग रहा हो, और जो दूसरे को सही लगता है, हो सकता है कि वो हमें गलत लगे। और देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपने अपनी जगह पे सही भी हो सकते हैं और दोनों ही पक्ष गलत भी हो सकते हैं। ये बस हमारे देखने का और समझने का नजरिया है। रिश्तों में भी तो ऐसा ही होता है ना, कई बार हमें किसी की कही हुई बात बुरी लग जाती है या हमारी कही हुई बात किसी को बुरी लग जाती है, और हमें ये समझ ही नहीं आता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि सामने वाले को इतना बुरा लग गया। सखियों, जब कभी ऐसी असमंजस की स्थिति में होते हैं ना, तो हमें बस इतना सा करना है कि हमें एक बार अपने आप को उनकी जगह इमेजिन करके देखना है कि

पक्ष और नकारात्मक पक्ष। और हमें जो सही लग रहा है हो सकता है कि वो सामने वाले को गलत लग रहा हो, और जो दूसरे को सही लगता है हो सकता है कि वो हमें गलत लगे। और देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपने अपनी जगह पे सही भी हो सकते हैं और दोनों ही पक्ष गलत भी हो सकते हैं। ये बस हमारे देखने का और समझने का नजरिया है। रिश्तों में भी तो ऐसा ही होता है ना, कई बार हमें किसी की कही हुई बात बुरी लग जाती है या हमारी कही हुई बात किसी को बुरी लग जाती है, और हमें ये समझ ही नहीं आता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि सामने वाले को इतना बुरा लग गया। सखियों, जब कभी ऐसी असमंजस की स्थिति में होते हैं ना, तो हमें बस इतना सा करना है कि हमें एक बार अपने आप को उनकी जगह इमेजिन करके देखना है कि अगर हम उनकी जगह होते तो हमें कैसा लगता। सखियों, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। असफलता सफलता की ओर एक प्रयास होता है। सखियों, आपको पता है कि एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, उससे पहले उन्होंने 1000 बार प्रयास किए थे। लोगों ने जब उसे कहा कि आपने 1000 बार असफलता देखी और फिर आपने सफलता देखी तो आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने असफलता नहीं देखी 1000 बार, बल्कि मैंने 1000 तरीके ढूंढे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, कि वो तरीकों से बल्ब कभी नहीं बन सकता, बल्ब जो नया तरीका है मैंने बनाया है उसी से बन सकता है। तो यानी हर असफलता जो है वो एक प्रयास होता है सफलता की ओर। सखियों, कई बार हम रिश्तों में भी ऐसा ही सोचते हैं कि एक पक्ष को सुनते हैं और अपना निर्णय ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारा रिश्तेदार है, हमारा कोई अपना है, वो अपनी किसी बात को हमें बता रहा है, तो वो जितनी भी बात बताएगा वो अपने पक्ष की बात बताएगा, हमें दूसरे पक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ऐसे में हम जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं और अपने निर्णय लेते हैं। तो अपने जीवन में हमें कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो करके निर्णय तभी लेने चाहिए जब हमें दोनों पक्षों के बारे में जानकारी हो। सखियों, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि सास बहू में नहीं बन रही है, ननंद भाभी में नहीं बन रही है, भाई भाई की नहीं बन रही है, लेकिन ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। कुछ न कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे दोनों की तरफ से रिश्तों में खटास आती है। सखियों, वो कहते हैं ना कि बहू को बहू नहीं बेटी समझो और सास को सास नहीं माँ समझो। ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या ये बात हमेशा सही होती है? सोचिए कि जैसे हम अपनी मम्मी से बात करते हैं, उनसे कभी कभी हम उल्टे जवाब दे देते हैं, उनसे हम जिद कर लेते हैं, अपनी बात कैसे न कैसे करके उनसे मनवा लेते हैं, क्या वैसे ही हम अपनी सासू माँ से बात कर सकते हैं? नहीं, हमें उसमें एक मर्यादा रखनी होती है। सासू माँ को माँ की तरह समझना होता है, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा रखनी होती है। ऐसे ही जो बहू है उसको बेटी मान सकते हैं, लेकिन बेटी से जैसा हम व्यवहार करते हैं, कई बार हम उससे बहुत तेज आवाज में बात कर लेते हैं, उससे लेट उठने पर बहुत बुरी तरह से डांट देते हैं, डांटते ही नहीं, बहुत बुरी तरह से डांट देते हैं, तो क्या ऐसे ही अपनी बहू को हम डांट सकते हैं? नहीं, वहां पे सास को भी मर्यादा रखनी पड़ती है। तो सास और बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा हो सकता है, लेकिन माँ बेटी की तरह बिल्कुल नहीं बन सकता और बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते के अपने खुशियां और कुछ गम होते हैं, अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, उनके अनुसार ही हमें उन रिश्तों को संभालना चाहिए। देखिए सखियों कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, मान लीजिए वो बीमार है और हमने किसी ऐसे व्यक्ति को उसी बीमारी से ग्रसित देखा है या उस बीमारी से हम कभी गुजरे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब बताते हैं कि देखिए ये बीमारी है तो आप ऐसा कर लीजिए, हमने भी ऐसा किया था, हम ठीक हो गए। और या फिर जैसे किसी के बच्चे नहीं हैं तो हम अपने अपने नुस्खे बताते रहते हैं कि भाई ऐसा करने से बच्चा हो जाता है, या उस डॉक्टर के पास जाइए। तो हम अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो उस परेशानी से गुजर रहा है वो हजारों लोगों की हजारों एडवाइस सुन चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा कई बार इरिटेट हो जाता है और हमें उनके चेहरे से पता चल जाता है कि वो हमारी बात से इरिटेट हो रहे हैं, और हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि यार हम तो उसके बारे में अच्छा ही सोच रहे थे, हमने तो डॉक्टर के बारे में बता रहे थे और उसको बुरा लग रहा है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा परेशान होकर के उल्टे जवाब भी दे देते हैं कि नहीं भाई हमने सब उपाय अपना लिए, हमें कोई नुकसान नहीं सुनने, आप दूसरी बात करो, या इस तरह के ऐसे जवाब जो हमें पसंद नहीं आते वो दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को ये सोचना चाहिए कि जैसे अगर वो उनकी जगह होते, उन्हें भी अगर कोई बीमारी इस तरह की होती है जिनका वो बहुत सालों से इलाज कर रहे हैं, वो सही नहीं हो रही है, तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में कई बार जो है तीखे शब्द निकल जाते हैं।

और जो बीमार है या जिसके साथ में कोई परिस्थिति ऐसी है जिसके बारे में लोग उसको बार बार जो है उपाय बता रहे हैं, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि सपोज कीजिए कि किसी का उपाय काम कर गया और वो बिल्कुल सही हो गए या उनकी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई, तो कल को जब कभी वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो सेम बीमारी से या सेम परेशानी से ग्रसित हो, तो क्या आप चुप रहेंगे? आप भी नेचुरल सी बातें अपनी राय जरूर देंगे ताकि जैसे खुशियां आपके जीवन में आई है, जैसे स्वस्थ आप हुए हैं, वैसे सामने वाला इंसान भी हो जाए। तो ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या गलत किया। बस उसमें हमें उस समय ऐसा ही करना है कि हमें इमेजिन करके देखना है कि हम उनकी जगह होती तो क्या करते। और हमारे दाम्पत्य जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो प्यार होती है वहीं परवाह होती है, और जहाँ परवाह होती है वहाँ पे छोटी मोटे बात पे लेके तकरार भी होती है, क्योंकि प्यार और तकरार ये दोनों ही दाम्पत्य जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें दोनों पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ प्यार होगा तो थोड़ी सी तकरार भी होगी, और जब कभी पियाजी से हो जाए तकरार तो बस एक छोटा सा प्यारा सा गीत गुनगुना दीजिए ताकि दोनों के बीच में तकरार हो जाए ख़त्म और आप का जीवन महकता रहे कुछ इसी तरह कि हमेशा ही आपका जीवन खुशियों से भरा रहे।

0: अपने ही होते हैं जो दिलों पर वार करते हैं, बेवजह अपनी नज़रों से इनकार करते हैं। जिन्हें सबसे ज़्यादा चाह हमने, अक्सर वही सबसे ज़्यादा दर्द दिया करते हैं। संगियों, अगर प्रेम में हैं आप, प्यार में हैं और आपको दिल में दर्द है, तो कोई बड़ी बात नहीं। रातों की नींद उड़ जाती है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये दर्द बेवजह है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको दिल में कोई बीमारी तो नहीं पनप रही। तो सखियों, दिल संबंधी बीमारियों पर जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साकेत गोयल, जो फोन पर हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने दिल का रखें ख्याल। तो सुनते हैं डॉक्टर साकेत गोयल को।
1: हेलो
2: हेलो
1: सखियों, हम फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर साकेत गोयल, हृदय रोग विशेषज्ञ से। आज हम इनसे बात करेंगे हृदय रोग के बारे में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी कार्यक्रम महिला जगत में।
2: थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्ते सर। सर, महिलाओं में दिल की बीमारी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं?
2: जी, दिल की बीमारी जिसको हम हार्ट अटैक वाली बीमारी कहते हैं, उसमें लक्षण महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है
1: जी।
2: आमतौर पे चलने पे सांस का भर जाना, चलने पे बीच की हड्डी के पीछे दर्द होना, चलने पे दोनों कंधों का टाइट हो जाना, दोनों हाथों का बंद सा जाना या छाती में किसी प्रकार की कसावट हो जाना
1: जी।
2: तो ऐसे कोई भी लक्षण जो चलने पे होते हैं और रुकने पे ठीक हो जाते हैं, आमतौर पे ये प्रमुख लक्षण हार्ट की बीमारी के होते हैं।
1: क्या महिलाओं में ये बीमारी अधिक पाई जाती है और किस आयु वर्ग की महिलाएं इससे प्रभावित होती है?
2: ये तो नहीं कह सकती महिलाओं में अधिक पाई जाती है, लेकिन ये मानना कि जैसे पहले मान जाता था कि हार्ट अटैक पुरुषों की बीमारी है, वो स्वतः गलत है। महिलाएं भी उतनी ही रिस्क पे हैं हार्ट की बीमारी के लिए। खासतौर पे अगर मेनोपॉज की बात करें तो मेनोपॉज के बाद में, जिसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं, उसके बाद में कोई भी महिला पुरुष के बराबर ही रिस्क पे है। और इसलिए भी ज्यादा रिस्क पे है क्योंकि इसमें कई लेवल पे असावधानी या लापरवाही होती है समाज में, जो हम मेडिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। पहले तो महिला खुद ही अपने बारे में थोड़ी सी लापरवाह होती है। एक आमतौर पर देखने में आया है कि परिवार में जितना प्राथमिकता पुरुष के लक्षण को दी जाती है, महिला खुद भी अपने लक्षणों को उतनी प्राथमिकता नहीं देती। दूसरी बात, अगर महिला कुछ कंप्लेन भी करती है तो परिवार उसके लक्षणों को इतनी प्राथमिकता नहीं देता। और ये भी संसार में कई सारी स्टडीज में देखा गया है कि अगर पुरुष और महिला सेम लक्षण लेके अस्पताल पहुंचते हैं तो मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर भी उसको इतनी प्राथमिकता नहीं देते, जो इन्वेस्टिगेशन या जो जांचें या जो इलाज महिला को मिलना चाहिए। आमतौर पर मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी संपन्न कंट्री जो यूरोप में है, अमेरिका में है, वहां भी थोड़ा सा एक जेंडर बायस पाया जाता है। जहां तक ट्रीटमेंट और जांचों का सवाल है, पुरुषों को हमेशा ज्यादा महंगा और ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट मिलता है महिलाओं के बनिस्पत।
1: और महिलाओं को स्वयं से खुद को जागरूक होने की इसमें आवश्यकता है। महिलाएं अपनी दिनचर्या

0: कैसी रखेगी इस बीमारी से वो बची रहे?
1: दिनचर्या में प्रमुख बातें जो हैं, जो हम हमेशा एक हार्टवाइज लाइफ की बात करते हैं कि जिंदगी को किस प्रकार से हार्टवाइज जीना है, उसमें तीन प्रमुख बातें मैं डाइट की बताऊंगा संक्षेप में
0: जी।
1: पहली बात, सबसे बड़ा हमें पहचानना होगा कि जो दुश्मन है वो शुगर है। हमें अपनी डाइट में, अपने परिवार की डाइट में शुगर का उपयोग कम से कम करना है
0: जी।
1: क्योंकि शुगर ना केवल एक, अब माना जाता है कि शुगर, इट इज सेड कि शुगर इज अ न्यू टोबैको, शुगर तंबाकू समान है, ना केवल नशे की लत की तरह, बल्कि बॉडी में जो फैट का डिपॉजिट होता है वो फैट खाने से नहीं होता है, शुगर खाने से होता है। तो पहला नियम तो है जीरो शुगर। दूसरा नियम है कि थोड़ा सा हमारी भारतीय भोजन में गेहूं की मात्रा बहुत ज्यादा है। गेहूं के उपयोग, चाहे हम आटा लें, मैदा लें, सूजी लें, दलिया लें, नूडल्स लें, ब्रेड लें, सब में आटे की मात्रा बहुत ज्यादा है
0: जी।
1: तो ये कहा जाता है कि कोई दूसरा आटा जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, इनमें से कोई ना कोई आटे के उपयोग बढ़ाना चाहिए, गेहूं का उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए। और एक प्रमुख बात यह है कि जो हमारी भारतीय कुकिंग की पद्धति है ना, तलना, छौंक लगाना, कचौरी बनती है तो सुबह शाम तेल खोलता रहता है, तो जब भी हम किसी भी तेल को उस तापमान पे पकाते हैं तो उस तेल का वाष्पीकरण होता है, उसके अंदर कुछ रासायनिक बदलाव होते हैं जिससे ट्रांस फैटी एसिड बन जाते हैं। तो महिलाओं की खुद के प्रति और परिवार के प्रति जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई भी खाना बनाने की पद्धति जिसमें तेल को बहुत ज्यादा अधिक ताप पे पकाया जाता है वो हमें थोड़ा सा उस पद्धति से बचना पड़ेगा। और उसकी ऑल्टरनेटिव पद्धति जो है, बेकिंग की है या रोस्टिंग की है, सिकाई करने की है, उबालने की है, इस प्रकार के खाने की तरफ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये बात हुई खाने की। तो खाने में तीन प्रमुख बातें हैं, जो कि शुगर, एक ये तलने की पद्धति, और तीसरा प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है
0: जी।
1: अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, तो जितना लाइफस्टाइल चेंज हम आमतौर पर भारत में ज्यादा देखते हैं कि महिलाओं, क्योंकि ऑक्यूपेशन में कम है, जॉब में कम है, तो उनका चलना फिरना कम हो पाता है और एक बढ़ती उम्र में उनका वेट गेन ज्यादा होता है। तो चाहे पुरुष हो या महिला, 10,000 कदम चलना रोज सबके लिए जरूरी है। ये कहा जाता है जो रोज चलते हैं वो ज्यादा चलते हैं। दूसरी बात, कोई ना कोई चलने के अलावा एक्सरसाइज, जिसमें कि थोड़ी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आप योग कर सकते हैं, कुछ प्लैंक एक्सरसाइज होती है, हल्के वेट्स हो सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ और एक्सरसाइज जो कि आपकी मसल की टोनिंग करती है
0: जी।
1: ऐसी एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक और जो आजकल एक कई सारे एविडेंस आया है कि बैठना आपको कम करना है। भारतीय घरों में महिलाओं का बैठना बहुत ज्यादा है, खासकर वो लोग जो जॉब पे नहीं जाते हैं, तो आप घर पे जो काम भी करते हैं आमतौर पर बैठ के ज्यादा काम होता है, तो किसी न किसी तरह से जो हमें अपना जो 24 घंटे में बैठने का पीरियड है उसको हम जितना कम कर पाएंगे
0: जी,
1: उतना ज्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा।
0: सर, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने बहुत ही कम समय में हमारी सभी सखियों को उपलब्ध कराई। यदि हमारी दिनचर्या सुचारू हो जाए तो फिर दिल की बीमारी तो हमें छू भी न पाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं।
2: सर, आज आपने फोन लाइन के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारी सभी सखियों को उपलब्ध कराई। आप इस कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
3: सखियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर साकेत गोयल से महिलाओं में हृदय रोग पर जानकारी। और सखियों, अपने हृदय का, अपने दिल का ख्याल रखें, और अगर आपका मन नहीं लगता है, दिल कहीं नहीं लगता है, तो बस हमारी आकाशवाणी से जुड़ जाइए और सुनते रहिए खूबसूरत से गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: सखियों, मौसम इस बार बहुत अटखेलियां खेल रहा है. अब तक तो मानसून जो है आ जाना चाहिए था और हम लोग इंतजार कर करके थक चुके हैं कि कब बारिश आएगी, कब हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी. बहुत उमस पड़ रही है और ऐसे मौसम में जब उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्किन की समस्याएँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है. और सखियों, स्किन की समस्याएं केवल इसी मौसम में नहीं, हर मौसम के बदलाव के साथ साथ हमारी त्वचा को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है. तो

हमें वो देखभाल नियमित रूप से करते ही रहना चाहिए, जैसे कि हमें नियमित रूप से माइल्ड क्लींजर से या माइल्ड फेस वॉश से दिन में 2 बार अपना चेहरा साफ करना चाहिए। गर्मियों में हाई यूरिनिक एसिड वाले मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने चाहिए, और सर्दियों में हमें शिया बटर वाले जो क्रीम्स होती हैं उनको लगाना चाहिए। लेकिन ये जो बरसात का मौसम होता है, इस मौसम के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि मुहासों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन दिनों में बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सर, क्यों ये जो फंगल इन्फेक्शन जो है इस समय बढ़ता है, विशेष रूप से नाखूनों के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा इस तरह का इन्फेक्शन देखने में मिलता है, तो इस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए, या अगर ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है तो आप विनेगर का इस्तेमाल करें। विनेगर इसमें बहुत कारगर साबित होता है। विनेगर में अपनी उंगलियां डुबो कर रखें और सुबह नहाने के बाद में और शाम को रात को सोने से पहले इसको डुबो कर रखें, तो इसमें बहुत राहत मिलती है। और सखियों, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बालों में भी मॉइस्चराइजर की वजह से जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से भी हमारे बाल खराब होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। बरसात के मौसम में बालों का झड़ना भी आम होता है, तो इसीलिए बालों को धोने के लिए बाल्टी में, जो पानी की बाल्टी है, उसमें नींबू निचोड़ कर रखें, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और इस तरह के छोटे छोटे टिप्स के साथ ही अगर आपके मुहासे वगैरह भी हो रहे हैं तो वो उनके लिए बता दें कि मुहासे भी इस मौसम में ज़्यादा होते हैं, तो अपने मुहासों पर आप दालचीनी और शहद का लेप लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत राहत मिलती है। और कुछ ना हो तो केवल सिंपल आप लौंग को पीस करके अपने जगह जहाँ पर मुहासे हो रखे हैं वो लगा लीजिए, तो भी आपको राहत मिल सकती है। और चाहे मौसम कैसा भी हो, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम में धूप से बचाव रखें, आप SPF 30 युक्त सनस्क्रीन लगाएं ताकि आपका रूप हमेशा ही निखरा निखरा रहे। तो सखियों, आप घड़ी की सुइयां जो है वो इशारा कर रही है कि हमें आपसे जो है विदा लेनी पड़ेगी, तो अपनी सखी मीनाक्षी शर्मा को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि आपसे फिर से होगी मुलाकात। अपनी सखी मीनाक्षी को इजाजत। नमस्कार।

अभी बहनों के लिए कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण किया गया। FM 102-103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: हेलो दोस्तों, मौसम ले रहा है अंगड़ाइयां, पूरी हो रही है बरसात में भीगने की ख्वाहिश। विविध भारती के चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी होगी, क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। मैं हूं जयंत पात्रिकर और ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: बोलिए पवन कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, आप लोगों के विविध भारती कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों का जो कार्यक्रम है, आप लोगों का सुमधुर आवाज है, और इसी आवाज से हम

0: दिल लगाए रहते हैं सर।
1: तो पूरा दिन भर आप सुनते हैं विविध भारती?
0: बिल्कुल सर, क्या समय समय में सुनता हूँ सर, मोबाइल के द्वारा काम में भी जाता हूँ, मिस्त्री लाइन के काम करता हूँ मैं।
1: मिस्त्री लाइन के मतलब?
0: तो मकान मिस्त्री का सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी सर, मकान मिस्त्री का ठेकेदारी का काम करता हूँ, और रेडियो तो सर कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ सर मैं।
1: जो अपना काम करते हुए आप मोबाइल ऐप पे जो है विविध भारती?
0: जी सर, जी सर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए पवन कुमार जी, क्या सुनना चाहते हैं आज?
0: आज एक बहुत ही सुंदर आपके केंद्र से एक गीत सुनना चाहूंगा सर, मोहम्मद रफी जी की आवाज में, भरोसा फिल्म का गीत सर, ये झुकी झुकी नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा वाला गीत।
1: ये किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: इसमें सर मेरे खास एक परम मित्र परम दोस्त है पन्नालाल सेन जी, वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ सर अपना फरमाइश अपने भाई पन्नालाल सेन तक।
1: कहाँ रहते हैं पन्नालाल जी?
0: बाग बहरा भदरसी रहता है सर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, अपने गंडई से कम 200 किलोमीटर आगे है सर उसका घर, और हमारा परम मित्र है सर वो।
1: अच्छा, इनका भी ये गाना पसंदीदा है?
0: बिल्कुल सर, उसी के अनुरूप तो मैं फरमाइश कर रहा हूँ सर आज।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए पवन कुमार जी। ये रहा आपकी पसंद का भरोसा फिल्म का गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर, बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी जी,
1: आपकी आवाज़ सुनता हूँ आपका, तो बहुत पुराना सोचा हूँ मैं, तो 50 साल से रेडियो स्टेशन सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन कौन से प्रोग्राम सुनते रहे हैं पिछले 50 सालों में?
1: हाँ मैं सुनता हूँ ज्यादा, और आपकी फरमाइश, आलो फरमाइश।
0: जी जी,
1: और काफी प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: और आपके पसंद के गाने कौन से होते हैं? पुराने गाने ज्यादा पसंद करते हैं आप?
1: पुराने गाने का शौकीन हूँ सर, मैं बहुत पुराने गाने के शौकीन हूँ सर। मैं मेरे दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ बिल्कुल,
1: ताज मोहम्मद जी, बरकत खां और अकबर खां, और दिनेश भाई, कृष्ण राम जी, दारू भाई मेघवाल, हमारे दोस्त रेडियो श्रोता है, नियमित श्रोता है ये।
0: जी जी जी जी, तो महबूब भाई इन सारे दोस्तों को भी वही गाना पसंद है जो आप आज बताने वाले हैं?
1: हाँ जी है, हमारे बहुत दिल के करीब है ये गाना।
0: कौन सा गाना?
1: ये तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो।
0: खानदान सुन करके? अच्छा जी
1: जी सर, नूतन सुनिधि सर फरमा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए महबूब खान साहब। ये रहा आपके और आपके दोस्तों की पसंद का गीत।
2: तुम्ही

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ। साहेब जी
0: बोलिए, बंधु साहब कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगह पर है
0: जी।
1: हम गुलमंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके से वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजीनगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
0: क्या बात है,
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा।
1: अरे साहब मौसम तो की बात ऐसा है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी
0: सहगल साहब।
1: अब तो बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी और इसके अंदर एक गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और केएल सहगल साहब ने गाया है और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं। ये फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
0: जी।
1: क्या सुंदर अभिनय है कुंदनलाल सहगल साहब का और खुर्शीद का, स्वयं अभिनेत्री
0: जरूर
1: रोल है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
0: मोरे सज्जन आ
1: जाना, क्या गीत है जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नयन रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहब जी, और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधुक।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत जी।
0: नमस्कार
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी जी जी जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी जी जी, और बताइए विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विविध भारती से जुड़ाव है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21 साल हो गए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे?
1: जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा।
0: ओके।
1: उसमें हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी जी, और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है जिसके लिए आपने कॉल किया है। बताइए क्या सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मंचाए गीत
0: तो आपने खत भेजे कि नहीं मंचाए गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए आज के लिए कौन सा गीत आपने सेलेक्ट किया?
1: फिल्म का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: बोलिए राकेश जी।
1: मेरी बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितनी भी बात की प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध बात की सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते हैं और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तोड़ने के लिए आ जाएंगे।
0: अच्छा अच्छा, साल में एक बार आते हैं पेड़ों को?
1: साल में एक बार आते हैं और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुँचते हैं। कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपके बाग तो, के सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं या उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं।
0: जल्दी आ जाते हैं।
1: मैं कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक केंद्र भी है और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं।
0: अच्छा जी, बताइए आज के प्रोग्राम के लिए आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे ये गाना सुनना है।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से।
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सर सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह से चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, पत्रकार सब सुनती हूँ मैं, फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की तू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की इबादत है, कैसे करो शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओहो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आपका नाम बताइए।
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरदीप बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना अमरदीप।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर काटिया थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: है जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप लोग फोन करते हैं, तो आपके इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गाँव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी जी पप्पू जी, वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, एक साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे मैं काम किया है, मैकेनिक का काम में करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से आप घर में हैं, तो यहीं अपना कुछ नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी जी, हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: बहुत खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, बहुत भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने?
1: जी जी, न्यूज एनआईआर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको।
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं। तो सुनिए अपनी पसंद का गाना पत्थर के सनम फिल्म से।
2: पत्थर के सनम

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं, मैं फहीम बोल रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुने।
0: जी जी, बाकी पूरे देश में तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट हालांकि आई है, मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है, यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो है फुल मंथ जुलाई तक रहता है। 40 दिनों को हम कश्मीरी में वारात बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: वारात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: गर्मियों के 40 दिन वहरात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान, ये 40 दिन जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं वहरात में चल रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेगी।
0: अच्छा, तो ये बहरात में क्या कुछ खास कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होता है?
1: के समय जी जी त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बहरात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को जब छुट्टियाँ मिलती है तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बहरात के समय हमें जो है यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंडी रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है, तो अभी हम गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं बहरात के समय फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ।
0: आपकी नज़र से वो गर्मियां हैं मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है, ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है। जिस दिन 30 होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी, मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने वाले कहाँ जाते हैं घूमने, आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं, गुलमर्ग भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है आपके यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बेंगलोर जाना और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग और कोलकाता भी जाते हैं, देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है।
0: जी जी जी,
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं, गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: वाह वाह।

0: अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना। तो अगर फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं। लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं।
0: जी जी।
1: तो मुझे एक वीर जारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ, लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज में। ये बहुत ही प्यारा नगमा है, तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे। और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नजारे देखकर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं कहाँ।
0: क्या बहुत ही प्यारा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए। और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर जारा फिल्म से यही।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया हैं, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है, सर इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते। जे कहो सर,
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना, पुराने हैं
1: सर। और

0: सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत। इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में।
0: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे आइए आपका इंतजार है।
1: तो आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं।

दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288।

0: 02288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंग तरंग
1: नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल से।

लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये गीत। संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। एल्बम का नाम था वर्षा ऋतु।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

آپ سن رہے تھے یہ غزل چندن داس کی آواز میں. پنکج اداس کی آواز.

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजें पेश है।

0: छाया गांगुली की आवाज में यह गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक बिन, तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। FM 102.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कड़ी संख्या 1320।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
3: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
3: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
1: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
3: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
3: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं।
1: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
3: ठीक है, तो श्रोताओं उस खनिज

0: उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
0: श्रोताओ, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओ, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओ, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओ, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर, यानी 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है, और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ,

0: जाओ निधि, आओ आधिका बेटी।
1: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
0: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
1: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
0: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
1: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
0: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
1: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
0: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
1: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
1: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
1: मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा भूर्ज वृक्ष?
2: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है, इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
2: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा,
2: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है, हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
2: हाँ हाँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा,
2: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा,
2: और हाँ अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं, ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा,
2: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है, पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
3: एपिग्राफ।
2: शाबाश निधि।
3: मामा जी अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
2: देखो अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है, ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी

0: सिक्के तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को। तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ दिन यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे।

0: ये क्या? ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा, वाह।
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपच्छाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपच्छाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित

0: प्रोत्साहित किया। पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी थी। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: ए साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा।
1: हाँ,
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं अच्छा, किसी से नहीं कहेंगे?
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी?

0: ये तो पहले ही भालों से चिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है।
1: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है कनु।
2: रानीमा देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
1: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
2: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
1: अच्छा तो गनु बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
2: रानी माँ,
3: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1320। FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जोधपुर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात प्रोटोकॉल, हेलीपैड, सभास्थल तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए रिफाइनरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज जोधपुर और बालोतरा के प्रवास पर रहेंगे। श्री शर्मा पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण कर एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे पचपदरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश की पहली ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि उद्योग और माय भारत के बीच सहयोग से युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। युवा मामलों के विभाग की ओर से हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना था। साथ ही उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना रहा। कार्यक्रम में एसोचैम, फिक्की, सीएआईटी और सीआईआई सहित प्रमुख उद्योग निकायों ने भाग लिया। प्रदेश में राजस्थान समान नागरिक संहिता यूसीसी 2026 के संबंध में संभाग स्तरीय जनसुनवाई की जा रही है। इस दौरान आम नागरिकों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हनुमानगढ़ में प्रारूप समिति के सदस्य डॉ. शिव चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर संभाग की जनसुनवाई की। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। बैठक में प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर आमजन से भी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की गई। इधर जयपुर कलेक्ट्रेट में 10 और 11

0: जुलाई को जयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई होगी। राज्य के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर पानी जयपुर के सांभर में बरसा, वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चली। विभाग ने अगले 4 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून के छाने की संभावना जताई है। जैसलमेर को छोड़कर समूचे प्रदेश के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बारिश से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 607 पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का इस साल 6 दिसंबर को होगी और मुख्य परीक्षा का आयोजन अगले साल 1 और 2 मई को प्रस्तावित है। इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पद शामिल हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: बता दीजिए आप।

राजकुमार फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था सभी श्रोताओं।

0: उन्होंने ऐसे ही लिखा है साधना, और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे। किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफर में शायद रिमझिम बरसात सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है, और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है, झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है, फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल की याद आती है, और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम, बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें, लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: गीतकार का नाम जरा बताइए।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है। एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी, लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ

पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांध कर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नजारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे मन लिए घूमते हैं, आंखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसी ऋतु वैसा मन और वैसे ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो कौन है हीरोइन।

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है। मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नजारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है, लेकिन हाँ खतरा भी होता है। इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठें और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक ना जाएं, समंदर के नज़दीक ना जाएं, वो खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी जमीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है। भीगी हवाएं होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है जहां प्रकृति संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं, जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ये झूले वाला ही गीत बहु बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। है बहु बेगम

बहू बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है, तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार जरूर ही बैठ जाते हैं। पिंक ऊंचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जाए घेराए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब, अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियां आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मध्मस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में। आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए और कोई ख़ास याद है, कोई ख़ास बात है तो ज़रूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफर बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है, और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले

सावन ऋतु आई रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मजा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे

0: तो बारिश नहीं होती और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मजा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में, वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, तो जरा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन। शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।
1: एक समा है सुहाना तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओ निगाहें मस्ताना।

मस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी। गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे, लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है। और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है, तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

0: निगाहें मस्ताना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने सुरीले सफर के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है। संगीतकार मदन मोहन, और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार

मदनमोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जरा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए। और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों ना एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और जरा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज्यादा हो गया था, तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहां के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, जरा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

सरंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी। फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो से ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्रध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: '1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी

0: पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
1: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
0: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी तीन रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुनगो की सहायता मिली।
1: अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को शोभा

ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक।

0: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
1: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड।
2: ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठें और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे, और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: कर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से महेश बागशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047

0: की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित

0: राणा और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धा

0: वालों को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीज़ा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं रवि का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ।

विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है। फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कव्वाल का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना। वैसे मैं बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी।
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है
0: जी।
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलते मुझे अच्छा लगता है
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
0: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: ये रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।

0: तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी। आलिया बानो कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवाते पड़ती हूँ, घर पर ही रहती हूँ। घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे, वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना, परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: लेकिन मेरा

0: हाथ पकड़ना पड़ता है।
1: हाँ वो तो है
0: ना
1: जी जी, ये तो सहयोग परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये मुझे जी,
0: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, तो मेरी अम्मी वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सबसे काल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना है कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाईं तरफ ये है दाईं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
0: नहीं मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है, मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि आपसे जो बात कर रही हूँ ना
1: जी,
0: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ, हमारा
1: अच्छा।
0: एक माले का घर है ना वहाँ कर रही हूँ
1: जी,
0: तो मैं नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
1: अच्छा मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
0: ऊपर आप कर लेती हूँ, एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना किस तरह जाना है किस तरह जाना है किस तरह आना है तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना, कठिनाइयाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, आप इसको किस तरह से लेती हैं?
0: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी, लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती।
1: देखिए
0: जिस हाल में रखे उस हाल में ले लेना चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। आपकी बातें सुनके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
1: अंदाज फिल्म का
0: है ना
1: जी?
0: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल, चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या बात,
1: शायरा हूँ।
0: जी
1: जी, कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा पेन नेम है लहरे।
0: पेन नेम है आपका लहरे?
1: लहरे। और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरी कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी।
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी, शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख, सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं।
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये बात
1: मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश मेरे कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हों, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुँचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर,

0: कि मैं क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यू दुश्वार न कर। मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे ये नहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हर दम, नींद ही तो टूटती है हर दम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर। लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
1: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोक राव देशमुख है, मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन सर्विस।
1: हाँ, घर में खाना बनाने को जाती, मैं रोटी बनाती सिर्फ।

0: चार पांच घर के खाना बनाती है दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती है।
1: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
0: हाँ,
1: जाके
0: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती। अच्छा। फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
1: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर हाँ, देती हैं कि आप जाकर
0: करने वाले हैं ना यहाँ पे।
1: जी,
0: टीचर है तो टीचर क्या ही सब काम करती हैं।
1: जी, और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो जाती हैं। जी
0: हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
1: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
0: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
1: जी
0: नीच कमाते बस, ज्यादा करके भी अपने तबियत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ, तो भाई की ही रहती मैं।
1: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और सकारात्मक सोच रख के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं।
0: मैम, मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
1: जी, ले लीजिए।
0: हाँ, बबीता ठाकुर और एक सेना शेख है।
1: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना।
1: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है, अभी गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना।
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयान नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी। सुशीला जी कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं। और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म।
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये।

0: अच्छे हैं और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ, मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म।
0: जी,
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी, बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, ईयर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन से सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: सेवेंथ
0: की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी, मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो हाँ। सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं? क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा।
1: हाँ।
0: तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही हैं विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में HOD के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर।
1: और उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ, मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
0: जी।
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
0: जी,
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
0: जी।
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं, लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
0: जी।
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सके
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारी सखियाँ भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: नहीं ठीक है, तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख
0: जी।
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास

0: करें न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा
1: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
0: अपनाना होगा। और जीवन तो निर्धर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं
1: जी। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
0: ममता फिल्म का रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
1: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से दी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, हाउस वाइफ घर ही रहते हैं कुछ
0: जी
1: नहीं।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना? जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है?
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, वो सुनती रहती, काम भी करती रहती।
0: हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
1: हाँ जी जी
0: जी। तो बताइए,

0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए निकाह पिक्चर का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: वाणी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, वाचन स्वर ममता सिंह का है।
1: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है, भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदि थी, वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग, किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता, लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करती। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती, किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और

हर सिंगार झड़ने लगते, उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती, वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती। शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजर कर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही।

सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागू थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई। तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने

अनमनी उर्वशी। नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वही रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फली रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था।

दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था, वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा। वे प्रेम में थे।

जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब? कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूँ तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, हुँ? कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़ी ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट। प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है

उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।

0: वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रात

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना, ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा।

सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर की शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा।

उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी, एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हों। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी, उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राज काज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी?

रानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती।
2: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 meter अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना खास कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूं आपके साथ खुशी।
0: और आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है।
1: कहते हैं हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, उस पर भरोसा करने की और पहला कदम बढ़ाने की।
0: यही तो हमारी कोशिश है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन विषयों पर जो हर युवा की जिंदगी से जुड़े हैं, सपनों की, चुनौतियों की, सफलता की, असफलताओं से सीखने की और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखने की।
1: क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो सीखना नहीं छोड़ते, सवाल पूछने से नहीं डरते और हर दिन खुद का एक बेहतर रूप बनने की कोशिश करते हैं।
0: तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने करियर की तैयारी में जुटे हो या बस अपने सपनों को दिशा देना चाहते हो, तो अगला एक घंटा आप हमारे साथ बिताइए।
1: और हम वादा करते हैं कि यहाँ से आप सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और एक मुस्कान भी लेकर जाएंगे, और साथ में हम सुनाएंगे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे गीत भी।
0: मनोरंजन भी तो जरूरी है।
1: बिल्कुल स्वर्णिम,
0: तो चलिए दोस्तों आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में इस पहले गीत के साथ।

हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी ही होगी।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके मन पसंद इवनिंग शो में, जिसका नाम है युवाणी। मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम,
1: और मैं हूँ आपके साथ खुशी।

0: खुशी तुमसे एक सवाल पूछूं। जब तुम छोटी थी तब तुमने क्या बनने का सपना देखा था?
1: क्या बताऊं मैं तुमको स्वर्णिम, मैंने तो डांसर, एक्ट्रेस और कभी कभी पायलट बनने तक के सपने देखे थे, और कभी बिना वजह भी बहुत कुछ बनने के सपने देखे।
0: सही कहा, बचपन में तो कुर्सियां जोड़कर ट्रेन बना लेते थे, तकियों से किला बना लेते थे, और एक डंडी भी तलवार लगने लगती थी,
1: है ना। यही तो है इमेजिनेशन की पावर। एक ही चीज सबको दिखाई देती है, पर उसे हर कोई अलग अलग नजर से देखता है। बादलों में कोई हाथी दिखता है तो कोई पहाड़।
0: और मजे की बात यह है कि यही कल्पना, इमेजिनेशन आगे चलकर नए विचारों में बदल जाती है। दुनिया के लगभग हर बड़े आविष्कार की शुरुआत एक छोटे से सवाल से हुई कि अगर ऐसा हो जाए तो।
1: बिल्कुल, क्या किसी ने सोचा होगा कि क्या इंसान उड़ सकता है? क्या किसी ने सोचा होगा कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से तुरंत बात की जा सकती है, और आज हवाई जहाज भी है और मोबाइल भी।
0: बिल्कुल, मतलब जो चीज कभी सिर्फ कल्पना थी आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और सिर्फ विज्ञान की बात नहीं, फिल्मों में देख लीजिए, एक डायरेक्टर पहले पूरी फिल्म अपने दिमाग में देखता है, फिर कैमरे से उसे दुनिया को दिखाता है।
1: बिल्कुल, और राइटर्स के साथ भी यही है, एक खाली कागज के साथ शुरुआत होती है और धीरे धीरे उसी पर पूरी दुनिया बस जाती है, नए किरदार, नई जगहें, नई कहानियां।
0: और कलाकार, उनके लिए तो एक सफेद कैनवास ही पूरी दुनिया होता है। लेकिन एक जरूरी सवाल भी है। है ना,
1: और वो सवाल ये है।

0: ना स्वर्णिम, कि अगर मैं रोज इमेजिन करूं कि मेरे एग्जाम में पूरे मार्क्स आ जाएंगे लेकिन पढ़ू ही नहीं, तो क्या होगा?
1: यही तो बात है दोस्तों, कल्पना, इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ मेहनत भी उतनी ही जरूरी है।
0: बिल्कुल, कल्पना हमें रास्ता दिखाती है और मेहनत हमें उस रास्ते पर चलना सिखाती है।
1: कई बार लोग बोलते हैं कि यार इतना मत सोचो, ये नहीं होगा, लेकिन अगर हर कोई यही सोचने लगेगा तो शायद दुनिया आज भी वही होती जहाँ सदियों पहले थी।
0: बिल्कुल सही बोला तुमने स्वर्णिम, क्योंकि जो लोग दुनिया बदलते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो दूसरों से थोड़ा अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। और नई सोच मतलब कोई बड़ा आविष्कार ही नहीं, छोटी सी नई सोच भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल, जो लोग सवाल पूछते हैं, नई चीजें सोचते हैं और कोशिश करने से नहीं डरते, वही तो आगे बढ़ते हैं।
0: तो दोस्तों आज का संदेश यही है, बड़ा सोचिए, छोटा सोचिए, पर खुलकर सोचिए, नए विचारों से मत डरिए, क्योंकि कल्पना शक्ति ही वो पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर बड़े बड़े काम सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों आज विश्व पटल से मैं हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह पर जो किसी दूसरे ग्रह जैसी दिखाई देती है। वो है अफ्रीका के देश इथियोपिया में स्थित डलोल क्षेत्र, जो अपनी रंग बिरंगी जल पटिया संरचनाओं और ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।
1: दोस्तों डलोल इथियोपिया के अफार क्षेत्र के में स्थित है। ये स्थान पृथ्वी के सबसे गर्म और सबसे कठिन वातावरण वाले इलाकों में गिना जाता है। यहाँ का तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है।
0: डलोल वास्तव में एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ जमीन के नीचे मौजूद गर्म मैग्मा और सतह पर मौजूद खनिजों की परस्पर क्रिया से अद्भुत प्राकृतिक संरचनाएं बनती है। यही कारण है कि यहाँ पीले, हरे, नारंगी और सफेद रंग के छोटे छोटे जलकुंड और नमक की परतें दिखाई देती हैं।
1: इन रंगों का रहस्य भी दोस्तों काफी रोचक है। पानी में घुले हुए सल्फर, आयरन और अन्य खनिज सूरज की रोशनी में अलग अलग रंगों का निर्माण करते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने धरती पर रंगों की पेंटिंग बना दी हो।
0: डलोल क्षेत्र को दुनिया के सबसे अनोखे भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के लिए ये भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ इतनी कठोर हैं कि वो ये स्टडी करते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट में जीवन संभव है या नहीं।
1: और दोस्तों यही वजह है कि कई वैज्ञानिक डलोल की तुलना मंगल ग्रह या अन्य ग्रहों के एनवायरनमेंट से करते हैं। यहाँ के अध्ययन से अंतरिक्ष अनुसंधान भी मदद आती है।
0: हालांकि ये स्थान देखने में बेहद आकर्षक है, लेकिन यहाँ का वातावरण काफी खतरनाक भी हो सकता है।

0: कई जलकुंड अत्यधिक अम्लीय होते हैं और उनसे निकलने वाली गैसेस हेल्थ के लिए खराब हो सकती है, इसीलिए यहाँ केवल विशेषज्ञ मार्गदर्शकों के साथ ही आना चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, डलोल ये सिखाता है कि प्रकृति कितनी विविध और आश्चर्यजनक हो सकती है। एक और यहाँ ज्वालामुखी गतिविधियां हैं तो दूसरी ओर रंग बिरंगे खनिजों से बनी अद्भुत जलपट्टियां संरचनाएं।
0: इतना ही नहीं, डलोल को फोटोग्राफर्स का स्वर्ग भी कहा जाता है। चमकीले रंगों वाला जल स्रोत, नमक के सफेद मैदान और दूर दूर तक फैला अनोखा भू दृश्य इसे बेहद आकर्षक बनाता है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग इस प्राकृतिक अजूबे को देखने आते हैं।
1: दोस्तों, प्रकृति हमें बार बार एहसास कराती है कि उसकी रचनाएं हमारी कल्पना से कई अधिक अद्भुत हैं। डलोल इसका एक शानदार उदाहरण है जहां विज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ दिखाई देते हैं। FM 102.3 पे दोस्तों सुन रहे हैं आप आपका मन पसंदीदा शो जिसका नाम है युववाणी। अब चलते हैं कार्यक्रम में आगे और आपको सुनाते हैं एक सुंदर सा गीत।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों, अब बारी है हमारे सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की, और आज उसमें हम बात करेंगे एक ऐसे मोबाइल ऐप की जो आपको साइबर फ्रॉड और फर्जी मोबाइल नंबर से बचाने में मदद करता है। इस ऐप का नाम है संचार सारथी ऐप।
1: दोस्तों, आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड, फेक कॉल्स और अनजान नंबरों से होने वाली परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया संचार सारथी पोर्टल और ऐप लोगों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: बिल्कुल स्वर्णिम, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शंस की जानकारी देना और साइबर धोखाधड़ी से बचाना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर बिना जानकारी के सिम कार्ड जारी हो जाते हैं। संचार सारथी ऐप ऐसी स्थिति में मदद करता है।
1: दोस्तों, इस ऐप की सबसे खास सुविधा है TAFCOP, यानी टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि उसके आधार या पहचान पत्र पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय है।
0: यदि आपको कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो आप उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं।
1: और इसके अलावा इसमें CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर की सुविधा भी है, यानी आपका मोबाइल फोन अगर चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आप उसकी जानकारी दर्ज करके उसे ब्लॉक करवा सकते हैं।
0: और सबसे अच्छी बात ये है कि यदि आपका फोन बाद में मिल जाता है तो आप उसे दोबारा अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इससे आपके फोन और उसमें मौजूद डेटा की सुरक्षा बढ़ जाती है।
1: दोस्तों, संचार सारथी ऐप का उपयोग करना बेहद आसान भी है। इसे डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जा सकता है और कुछ ही मिनटों में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
0: दोस्तों, ये ऐप न केवल आम नागरिकों के लिए उपयोगी है, बल्कि डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को मजबूत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये लोगों को जागरूक और सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनने में मदद करता है।
1: तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं या अपने फोन की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं अगर आप, तो संचार सारथी ऐप आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है।
0: तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों FM 103.6 पे आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूं आपके साथ खुशी।

0: दोस्तों, हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि किसी राज्य या देश में भूकंप आया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भूकंप आते क्यों हैं?
1: इसका उत्तर हमें पृथ्वी की बनावट में मिलता है। दरअसल पृथ्वी की ऊपरी सतह कई टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। ये प्लेट्स लगातार बहुत धीरे धीरे खिसकती रहती है। जब दो प्लेट्स आपस में टकराती है या अचानक खिसक जाती है तो बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है
0: और यही ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती है और धरती हिलने लगती है। इसी घटना को भूकंप कहते हैं।
1: भूकंप की इंटेंसिटी आज मुख्य रूप से मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल से मापी जाती है, जबकि पहले रिक्टर स्केल का अधिक उपयोग होता था। रिक्टर स्केल एक बेस 10 लॉगरिथमिक सिस्टम है, जिसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर द्वारा विकसित किया गया था। इसमें प्रत्येक पूर्ण संख्या की वृद्धि के आयाम में 10x वृद्धि दर्शाती है और 32 गुना अधिक एनर्जी।
0: दोस्तों, भारत में हिमालय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट, कच्छ और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो घबराइए नहीं। अगर आप घर या किसी इमारत के अंदर हैं तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड का नियम अपनाइए। नीचे बैठें, किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे जाएं और उसे पकड़े रहें।
0: खिड़कियां, कांच, भारी अलमारियां और लिफ्ट से दूर रहें। अगर आप बाहर हैं तो खुले स्थान पर चले जाइए और इमारत, पेड़ तथा बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें।
1: भूकंप के बाद गैस लीक या टूटे हुए तारों से भी सावधान रहें। हर परिवार के पास एक आपातकालीन किट होना चाहिए, जिसमें टॉर्च, प्राथमिक उपचार का सामान, पानी, सूखा भोजन और जरूरी दवाइयाँ हों।
0: दोस्तों, भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही जानकारी, जागरूकता और समय पर उठाए गए सही कदम कई लोगों की जान बचा सकते हैं।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 के महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिनमें अर्जेंटीना बनाम कैप वर्डे, कोलंबिया बनाम घाना और ऑस्ट्रेलिया बनाम मिस्र शामिल है।
1: एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडोनेशिया में स्टार्ट हुई, जिसमें भारतीय मुक्केबाज भी भाग ले रहे हैं।
0: पैंसठवीं राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें तमिलनाडु ने ओवरऑल खिताब बरकरार रखा।
1: शंघाई ई पिक्स फॉर्मूला ई की शुरुआत हुई, जो विश्व चैंपियनशिप के लिए अहम मानी जा रही है।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों आज का टॉपिक ऐसा है जिससे शायद हर कोई कभी ना कभी गुजरा है। एक ऐसा सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आता है, हम हर बात को इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं?
1: बिल्कुल, किसी ने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया, बस फिर क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? वो मुझसे नाराज है क्या, या फिर मुझे इग्नोर कर रहा है?
0: और सबसे मजेदार बात ये है कि सामने वाला शायद बस सो गया हो या उसका फोन चार्ज ही खत्म हो गया हो।
1: सच में हमारा दिमाग कभी कभी छोटी सी बात को इतनी बड़ी कहानी बना देता है कि अगर उसे फिल्म बना देना तो इंटरवल तक 5 ट्विस्ट आ जाएंगे।
0: लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है?
1: स्वर्णिम, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग हमेशा भविष्य की तैयारी करने की कोशिश करता है। वो हर स्थिति का अनुमान लगाना चाहता है ताकि हम किसी मुश्किल से बच सके। यानी ओवर थिंकिंग की शुरुआत बुरी नहीं होती, उसका मकसद हमें सुरक्षित रखना होता है।
0: लेकिन जब यही आदत जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। हम ऐसी चीजों के बारे में भी सोचने लगते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं।
1: और स्वर्णिम, इसकी एक और वजह है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता का डर। इंसान को हर सवाल का जवाब चाहिए, अगर जवाब नहीं मिलता तो हमारा दिमाग खुद ही जवाब बनाने लगता है।
0: बिल्कुल, जैसे इंटरव्यू देकर आए और 2 दिन तक कोई कॉल नहीं आया तो दिमाग बोलेगा लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि असलियत ये भी हो सकती है कि HR अभी बाकी उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले रहा हो।
1: या फिर अपने इंस्टाग्राम पर फोटो डाली और लाइक्स कम आए
0: और बस यही सोचते हैं शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते।
1: बिल्कुल, और जबकि हो सकता है कि उतने लोगों का इंटरनेट ही धीमा हो।
0: और एक और कारण है, हमारा बीता हुआ अनुभव, अगर पहले कभी हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो तो दिमाग हर नई स्थिति में वही खतरा ढूंढने लगता है।
1: यानी दिमाग हमें बचाने की कोशिश करता है लेकिन कई बार वही कोशिश हमें वर्तमान में जीने नहीं देती।
0: तो खुशी, मैं पूछना चाहूंगा कि इससे बाहर कैसे निकले?
1: पहली बात स्वर्णिम, हर विचार सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई बात आपके दिमाग में आई है इसका मतलब ये नहीं कि वो सच ही है।
0: और दूसरी बात, अगर कोई बात आपके नियंत्रण में हो तो उस पर काम कीजिए, अगर नहीं है तो बार बार उसके बारे में सोचने से नतीजा थोड़ी बदलेगा।
1: बिल्कुल, और तीसरी बात, और अपने विचार किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या शिक्षक से साझा करें। कई बार जो बातें हमें बहुत बड़ी लगती है ना, किसी दूसरे की नजर से देखने पर उतनी बड़ी नहीं होती, हम जबरदस्ती ओवरथिंक कर लेते हैं।
0: वही, और एक छोटा सा नियम याद रखिए दोस्तों, अगर किसी बात का कोई सबूत नहीं है तो सिर्फ अपनी कल्पना के आधार पर निष्कर्ष मत कीजिए।
1: जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन चीजों से निकल के आता है जो कभी होती नहीं है, इसे जितना हो सके आज में जीने की कोशिश कीजिए।
0: क्योंकि हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता और हर खामोशी का मतलब नाराजगी भी नहीं होता।
1: इसी सोच के साथ आज का हमारा यही संदेश है, सोचना अच्छी बात है लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना कई बार हमारी खुशियां हमसे छीन लेता है।
0: तो मुस्कुराइए, भरोसा रखिए और अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम भी दीजिए।

0: तो दोस्तों ऐसी खूबसूरत मुस्कान और सकारात्मक सोच के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि हमें या हमारा विदा लेने का समय हो गया। उम्मीद है कि आज का युववाणी कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हमारी बातें आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी।
1: बिल्कुल, आज हमने साथ मिलकर कई रोचक विषयों पर चर्चा की, कुछ नई जानकारियां साझा की और आपके साथ एक यादगार समय बिताया। हम चाहते हैं कि आप हमेशा सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहें।
0: तो इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे यानी स्वर्णिम को
1: और मुझे यानी खुशी को।
0: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव

0: रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून इन किया है FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और अब हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। फिल्म संगीत में शाम का ये खूबसूरत सफर आप हमारे साथ बिता रहे हैं। यहाँ हर एक गीत आपके लिए लेकर आता है कुछ मीठी यादें और प्यारी सी मुस्कान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की इस गीत के साथ, जिसमें है प्यार की मिठास, दिलों की धड़कनों की रौनक। तो आइए सुनते हैं फिल्म सिंह इज किंग से ये गीत। इस गीत में आवाजें हैं अरिजीत सिंह, मंच म्यूजिक की, और संगीत भी मंच म्यूजिक का।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सन ऑफ सरदार से ये गीत। राहत फतेह अली खान की राहत भरे स्वरों में, संगीत है साजिद वाजिद का और गीतकार इरशाद कामिल।

आइए श्रोताओं सुने सोहेल सेन की सरगम पर सजा ये गीत फिल्म एक था टाइगर से। इस गीत को गाया है के और पलक मुंछाल ने और गीत रचना है अन्विता दत्त की।

शफाकत अमानत अली। जी हाँ, शफाकत अमानत अली अनंत अली व नुपुर के खूबसूरत आवाजों से गाया हुआ ये गीत अब आप सुनिए। इस गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन से सजाया है विशाल शेखर ने।

इस्टेट से ये प्यार भरा गीत हम अब आपको सुनवा रहे हैं। स्वर है के मोहन और यशिता शर्मा के, धुन तैयार की है शंकर एहसान लोय ने और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज रात्रि के हमारे एक और विशेष कार्यक्रम रात्रि 9 बजे SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने में अपनी पसंद के गीतों को लाइव सुनने के लिए श्रोता हमें व्हाट्सएप पर या फिर SMS कर सकते हैं। हमारे नंबर रहेंगे 9530012020 पर, या फिर आप हमें ईमेल के जरिए भी आपकी पसंद के गीत भेज सकते हैं। जो भी गीत आप सुनना चाहते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा enjoyairkota@gmail.com पर। तो जल्दी से फोन उठाइए और अपनी पसंद के गीतों के साथ हमें SMS या व्हाट्सएप करें। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का।
1: अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से बोल रहे हैं। 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और उसके बाद आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वार, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एयर पर air.com पर भी लाइव सुन रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी, श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी 1 हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार

0: विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बालोतरा के पचपदरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा से 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। वे जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में हवाई संपर्क को और बेहतर बनाना है। इसे विस्तृत और सतत संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इससे स्वदेशी विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार की उड़े देश का आम नागरिक लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं के साथ ही जोधपुर रिंग रोड द्वितीय खंड पर 4-लेन निर्माण का भी उद्घाटन करेंगे। वे 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के कल प्रस्तावित राजस्थान दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने आज जोधपुर और बालोतरा का दौरा किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कल होने वाले समारोह की तैयारियों के जायजे के लिए बालोतरा पहुंच रहे हैं। इससे पहले वे जोधपुर पहुंचे, वहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान के विकास को नए आयाम मिलेंगे।
2: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए बहुत चाहिए और राजस्थान में तो ही लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
0: गौरतलब है कि पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री पहले 21 अप्रैल को करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन के एक दिन पहले रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लगने की वजह से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार HPCL रिफाइनरी से सालाना 9 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाना है। यहां के तेल को भारत सहित दुनिया भर के 40 देशों में निर्यात भी किया जाएगा। रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रोजोन विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे। ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी देश के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये भारत की अद्वितीय इंजीनियरिंग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। रिफाइनरी से 1,35,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में देश के साथ जोधपुर ने भी आधारभूत प्रगति की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथों कल होने वाले जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण को लेकर कहा कि इससे समूचे मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी।
3: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा। उद्योग जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सबके दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि

के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि नई सुविधा शुरू होने के दो दिनों के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना ईमेल पता अपडेट कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है, क्योंकि इससे आधार नंबर रखने वाले लोग ये जान पाते हैं कि उनके आधार का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। ये समाचार आकाश

0: पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों ही मार्गों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपनी तय तिथि की बारी पर ही यात्रा में शामिल हो। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थ यात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और क्षेत्र के साथ राज्य की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का आह्वान किया है। लोकसभा अध्यक्ष आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के 2 दिन के आमुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे विधायी बहसों के साथ उनके समाधान पर भी बात करें। उन्होंने कहा कि आज का युग डिजिटल तकनीक का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थाओं में बदलाव ला रहे हैं।
1: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और AI टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर दी गई छूट 10 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्थानांतरण प्रतिबंध की छूट को 5 जुलाई से 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिणी पूर्वी जिलों से आगे बढ़ते हुए उत्तरी इलाकों को भी भिगो दिया है। मौसम विभाग के अनुसार करीब हफ्ते भर की देरी से आए मॉनसूनी बादल बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू और हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में जमकर बरसे। इस दौरान सर्वाधिक 84 मिलीमीटर बारिश जयपुर के सांभर में दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। इसके आगामी 3-4 दिनों में राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। श्री शर्मा ने बताया कि आगामी 1 हफ्ते तक मॉनसून की गतिविधियां चरम पर रहने की संभावना है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले 1 सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशंस फेवरेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्ती विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पे मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
0: केंद्रीय शुष्क क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान काजरी ने बीते 1 महीने में राजस्थान, गुजरात और लद्दाख के 10,000 से अधिक किसानों को वैज्ञानिक और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया है। कृषि मंत्रालय के खेत बचाओ अभियान के तहत काजरी ने 186 कार्यक्रम आयोजित कर समन्वित उर्वरकों, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और कीट प्रबंधन पर सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों से साझा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नए आयाम मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू, प्रधानमंत्री ने

0: शुभकामनाएं दी, श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। और प्रदेश में मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, आगामी 1 हफ्ते तक सक्रिय रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिले में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ हुआ। चूनावड़ में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने भाग लिया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करवाने के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे, वहीं ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। कार्यक्रम में लोगों को योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के अनुसार ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार और दलालों की भूमिका पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाए हैं। जिला परिवहन कार्यालय में इनवर्ड प्रणाली बंद कर दी गई है। अब वाहन सारथी पोर्टल से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आमजन खुद या ई मित्र केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जिले में जल संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र पद्मपुर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों और कम पानी में अधिक उत्पादन की आधुनिक विधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर औषधि नियंत्रण विभाग ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा बड़ी संख्या में चालान भी बनवाए गए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत काम शुरू किए जा रहे हैं। योजना के तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिला परिषद के अनुसार इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे। जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी मानव सुथार ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में पदार्पण कर जिले का नाम रोशन किया है। अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट हासिल किए और उपयोगी रन भी बनाए। उनकी उपलब्धि पर जिले में खुशी का माहौल रहा और उनके स्वागत के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कभी कभी घर घर चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और पार्सल पहुंचाने तक सीमित माने जाने वाले डाक विभाग ने अब रोजगार और स्वरोजगार का नया जरिया शुरू किया है। इसके तहत श्रीगंगानगर मंडल की ओर से फ्रेंचाइजी योजना 2.0 युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए कमाई का नया अवसर बनकर उभर रही है। इस योजना के तहत आम नागरिक डाक विभाग के साथ साझेदारी कर अपने क्षेत्र में डाक सेवाओं का संचालन करते हुए नियमित आय अर्जित कर सकेंगे। श्रीगंगानगर के डाक अधीक्षक अजय चुग ने बताया कि फ्रेंचाइजी योजना 2.0 को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। युवाओं को स्वरोजगार का मंच भी उपलब्ध होगा और डाक विभाग रोजगार की नई उम्मीद भी घर घर तक पहुंचा सकेगा। बठिंडा श्रीगंगानगर रेलखंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद अब इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है। पहली बार इस रूट से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ गाड़ी संचालन शुरू होने पर यात्रियों में प्रसन्नता छा गई। इस ट्रेन का श्रीगंगानगर पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ी चलने के बाद श्रीगंगानगर से दिल्ली के बीच करीब 1 से 1.5 घंटे के समय की बचत होगी, क्योंकि इससे बठिंडा में पावर बदलने का झंझट खत्म होगा, स्पीड भी बढ़ेगी। लंबे समय से यात्रियों की मांग और लगातार बढ़ते रेल यातायात को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर के लिए एक बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब तक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही काचीगुड़ा श्रीगंगानगर काचीगुड़ा रेल सेवा को नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है। इससे राज्य के सीमावर्ती इस जिले का दक्षिण भारत से रेल संपर्क और अधिक मजबूत होगा। इस निर्णय से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ क्षेत्र के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। दक्षिण भारत में शिक्षा, रोजगार, व्यापार और चिकित्सा कार्यों के लिए जाने वाले यात्रियों को अब अस्थायी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने समर्पण रो कार्यक्रम। विकास री 1,06,000 करोड़ रुपया बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रो उद्घाटन करण सागे नवी परियोजनावां रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज भैला। अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, प्रधानमंत्री यात्रुओं 5 संकल्प लेवन रियरज कीनी। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा तेज हुई, आवता 1 हफ्ता ताई चोखो में बरसबारा आसार। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रा पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। वे बालोतराऊं विकास री 1,06,000 करोड़ रुपयाऊं बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा उद्घाटन करण सागे नवी परियोजनावां रा कामां री शुरुआत करेला। माणा खबर नवीस बतायो के आमाय रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरा माय आवण जावण रा सुविधाओं जुड़ी न्यारी न्यारी परियोजनावां शामिल है।
1: प्रधानमंत्री कल प्रदेश को जिन परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पचपदरा में विकसित रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर है, जो सरहदी जिलों में विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इनो पहले प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन करेला। 480 करोड़ रुपए रा खर्चो बनाई जो नुओ टर्मिनल भवन सालाना 20 लाख मुसाफिरां री आवाजाही ने ध्यान राखता था का डिजाइन करी चियो है। श्री मोदी जोधपुर माए संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत ही करेला। ई योजना रो मकसद देश माए हवाई जुड़ाव ने और बेहतर बनावनो है। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ बीच रेलानी पटरियां दोवड़ी बनावन री परियोजना सागे जोधपुर रिंग रोड रा दूजा हिस्सा माथे 4 लेन री सड़क बनावन रा काम री शुरुआत करेला। वह 1,000 मेगावाट बोतारी बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ही जनता ने सौंपेला। प्रधानमंत्री रा राज्य रा काल प्रस्तावित दौरा न ध्यान रखता था का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो पचपदरा रिफाइनरी रो दौरो कैरर काल फेवनवाला जलसारी तैयारियां रो जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इनो पहले जोधपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का वह कहो के पचपदरा माए तेल साफ करण रा कारखाना प्रदेश रो विकास और तेज फैला।
2: इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ लाएगा और राजस्थान में कहीं लेकिन देश का बहुत बड़ा काम ये होने वाला है। मैं आपको यही कहूंगा कि उसके साथ साथ कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा समेत न्यारा न्यारा आला अहलकार आज जोधपुर और बालोतरा रो दौरो कीनो। ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री पहली 21 अप्रैल 2026 ने पचपदरा माए HPCL राजस्थान रिफाइनरी रो उद्घाटन करने वाला हा, पर उद्घाटन रा एक दिन पहली रिफाइनरी रा एक हिस्सा माए लाई लाग जावन रा कारण कार्यक्रम टाल दियो चियो हो। करीब 80,000 करोड़ रुपए रा खर्च उमनाई जिया तेल साफ करन रा ई कारखाना माए सालाना 9 मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो जावेला। ओ तेल देश माए पूर्ति सागे दुनिया रा 40 देशा माए बेचो जावेला। ई कारखाना माए बनवा वाला दूजा छोटा मोटा उत्पादा माथे आधारित सहायक उद्योग लगावन सारू राजस्थान पेट्रो जोन विकसित करी चियो है।

0: इनू कारोबारी सीधा रिफाइनरियों कच्चो माल ले सकेला। तेल साफ करन रा इन कारखानाओं 135,000 बत्ता लोगों ने सीधा या परोक्ष रूप काम धंधो मिलेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लाडला 12 साल माए देश सागे जोधपुर माए बुनियादी बरकत हुई है। वह श्री मोदी रा हाथों काल जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल में जनता ने सौंपण रा कार्यक्रम बाबत कहो कि इनो पूरा मारवाड़ और राज्य रा आतुणी हल्का रो हवाई संपर्क बधेला और हल्का रा विकास ने नुवी ऊंचाई मिलेला।
1: अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा। जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सबके दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार ऐप जरिए आधार नंबर सागे मुफ्त ईमेल अपडेट रो सुबितो शुरू कीनो है। वो सुबितो 1 जुलाई 6 महीना सारू मुहैया कराई चियो है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रे मुजब नुओ सुबितो शुरू है वन रा 2 दिन में आई 2 लाख बत्ता लोग ईमेल पतो अपडेट करती नो है। मंत्रालय रे मुजब आधार माय ईमेल जोड़ते बगत संबंधित ईमेल माथे जानकारी मिले है। इनु साफ कोई सागे हिफाजत रो एक और लेवल मिले है। संबंधित आधार नंबर वाला मारा आधार रो जी काम माय इस्तेमाल करियो चारियो है मारी ठा कर सके है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। ई साल री अमरनाथ यात्रा आज शुरू हैगी। पहलो जत्थो आज हमारे पहलगांव और बालटाल रा गेलाऊ पवित्र गुफा सारू रवाना भियो। यात्रुआ रा सुबिता सारू दोनों गेला माथे जरूरी व्यवस्था मा करी ची है। सरकार यात्रुआ ने सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रे मुजब आप अपनी तय तिथि माथे ही सफर शुरू करन री राय दीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरनाथ री यात्रा सारू जावन वाला ने शुभकामनावां दीनी है। यात्रुआ सारू लिख्योड़ा एक कागज माए प्रधानमंत्री हर साल वेवन वाली अमरनाथ यात्रा ने देश री आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एका माए एक शाश्वत अध्याय बताई। प्रधानमंत्री यात्रुआओं अमरनाथ यात्रा रे दौरान साफ सफाई राखण, हिफाजती और प्रशासनिक दिशा निर्देशों की पूरी पालना करण, यात्रा खर्च रो कम 10% वोकल फॉर लोकल पहल रा तहत स्थानीय सामान री खरीदी माथे खर्च कर और स्थानीय माली व्यवस्था ने बढ़ावो देवण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने बढ़ावो देवण सारू राखी रे मौके भाई बहन ने एक पौधो उपहार रा तौरों देवण, ईमानदारियों कर्तव्यों की पालना कर और विकसित भारत बनावण मा योगदान देर राष्ट्र प्रथम री भावना ने आगे बढ़ावण री अरज कीनी। प्रधानमंत्री भरोसा जतायो कि अमरनाथ यात्रा आस्था, सांस्कृतिक एका और सेवा रा मूल्यां ने मजबूत करती रहवेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विधायकाओं लोकतांत्रिक परंपरावां ने मजबूत करण और हल्का सागे राज्य री उम्मीदारी नुमाइंदगी करण बाबत कहो है। वे आज कोलकाता माए पश्चिम बंगाल विधानसभा रा नुआ चुनी ज्या सदस्यां रा 2 दिन रा आमुखीकरण कार्यक्रम माए बोल रहा हा। श्री बिरला सदस्यों विधायी बहस सागे वारा समाधान माथे विचार करण सारू कहो। लोकसभा अध्यक्ष कहो के मौजूदा डिजिटल तकनीक रा दौर माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधायी संस्थावां माए बदलाव ला रहा है।
2: ये समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी।
0: प्रदेश में काल मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव रा तहत न्यारी न्यारी सरकारी सेवाओं सारू चुनी जिया नौजवानों ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया जावेला। जिला मुख्यालय माथे

0: रख्या जावन वाला कार्यक्रमा माए प्रभारी मंत्री और महकमा रा अहलकार नुआ कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागज दे वेला। इस दौरान बालोतरा माए भेवन वाला प्रधानमंत्री रा कार्यक्रम रोई सीधो प्रसारण करियो चा वेला। अरब मौसम प्रदेश रा उत्तराध हल्का माए चौमासारी बिरखा शुरू है की है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा माए जयपुर अजमेर चित्तौड़गढ़ टोंक झुंझुनू और हड़ौती हल्का रा जिला माए जोरदार में बरसियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो कई दौरान सबों 32-84 मिलीमीटर बारिश जयपुर जिला रा सांभर माए दर्ज करी ची। श्री शर्मा बतायो का आवता एक हफ्ता ताई चौमासारी बिरखा चालती रहवन रा आसार है।
1: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं पे भारी और कहीं पे अति भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और आसपास के लगने वाले जिलों में अगले 5-7 दिनों के लिए हेवी और कहीं पे अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर संभाग, भरतपुर, इसके अलावा अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों के लिए भी अगले 5-7 दिनों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहने और शेष इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से कंडीशन फेवरेबल बनी हुई है। इस दौरान कहीं पर तेज थंडरस्टॉर्म, गस्ती विंड्स, आकाशीय बिजली के साथ कहीं पे मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
0: राज्य सरकार कर्मचारियां और अहलकारा ना तबादला माथा छूट री मियाद 10 जुलाई ताई बधा देनी है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग इन बारा माए हुक्म जारी करती ना है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम। विकास री 1,06,000 करोड़ रुपया बत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रो उद्घाटन करण सागे नूवी परियोजनावां रा काम री शुरुआत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश रो औद्योगिक विकास और तेज भेला। अमरनाथ यात्रा शुरू हुई प्रधानमंत्री जातरुआउ 5 संकल्प लेवन री अरज कीनी। हर प्रदेश में चौमासारी बिरखा तेज भी आवता एक हफ्ता ताई चोखो में बरस बारा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना खेती बाड़ी आधारित कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनबाड़ा सभी किसान भाई बहना कहता है श्यामू भाई के अड़सु घनी घनी राम राम। किसान भाई बहना चौमासा को टर्म च और खरीफ की फसलों की लगभग लगभग कुछ किसान भाई बहना ने तैयारी कर रखे थे तो कुछ ना बुआई भी कर दी। अब बुआई का समय पर आज अपन देख रहे थे कि पानी की स्थिति जो भी मौसम के अनुसार वह हुई रही है और आज किसान भाई बहनाओ सजीव फोनिन चौपाल छ
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। किसान भाइयों और बहनों सभी फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक का प्रयोग करें। इसे विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे

0: चना, मसूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और आलू में लगने वाले बीज जनित एवं भूमि जनित उकटा, जड़ गलन, तना गलन, अंकुर गलन, कंद सड़न आदि रोगों के प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार, कंद उपचार, नर्सरी उपचार करें। ये पौधे में रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की क्रियाविधि को सक्रिय करता है। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अपघटन की दर बढ़ाता है। साथ ही किसान भाइयों, बीज और पौध उपचार का कार्य छायादार सुरक्षित स्थान पर करें। ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य कवकनाशी रसायनों का प्रयोग न करें।
1: तो किसान भाई बहनों, आज सजीव फोन इन चौपाल छे और आज अपना जो विषय छे उच धान की सीधी बुआई अपन कशा करा, क्योंकि कई किसान भाई बहन तैयारी कर रहा छे, कोई अटी रोपाई की तैयारी कर रहा छे और कुछ किसान भाई बहना ने रोपाई शुरू कर दी, कुछ ने सोयाबीन की बुआई कर दी। लेकिन जो किसान भाई बहन धान की सीधी बुआई करबो चाहो छे तो उनकी काय काय विधिया छे, उनका काय फायदा छे, काय नुकसान छे, तो यह जानकारी देबा के लेके आज आपने चौपाल में फावना छे डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा, आचार्य सस्य विज्ञान एवं परियोजना प्रभारी अखिल भारतीय चावल अनुसंधान परियोजना कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा। तो किसान भाई बहनों, जो भी आपका मन में प्रश्न हो वह धान की सीधी बुआई से लेर, तो आप सीधी डॉक्टर साहब से बातचीत कर सको छो। बातचीत करवा कर लेकर वही आपका जाना पहचाना फोन नंबर 0744 एसटीडी कोड और 294-1142 फोन नंबर, यहाँ पर आप जो आज का फावड़ा चाहे वहाँ से सीधी बातचीत कर सको छो। और आज जो चौपाल सजीव फोन इन चौपाल चे वहाँ से अपना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि अनुसंधान केंद्र मेदगंज कोटा द्वारा प्रायोजित। तो किसान भाई बना, आपके मन में धान की सीधी बुआई से संबंधित जो भी प्रश्न हो, तो जो आज का अपना फावना चाहे डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा साहब वहां से आप सीधी बातचीत कर सको छो। बात करवा कर लेकर फिर मैं फोन नंबर आप ही बता दूं, 0744 एसटीडी कोड और 294-1142 फोन नंबर, तो आप यहां पर सीधी बातचीत कर सको छो। और किसान भाई बनाओ, डॉक्टर साहब आपने चौपाल में पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब आपको चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब।
2: राम राम किसान भाइयों, सभी को राम राम।
1: डॉक्टर साहब, वर्तमान हालत आपने देख रहे, मानसून की स्थिति रोज दना दना आगे बढ़ते ही जा रहे हो। कुछ क्षेत्र में किसान भाई बहन आना जैसे भी पानी बरस हो जाए, कुछ बुआई होगी, कुछ किसान भाई बहन अपने गरड़ कर धान की रोपाई भी शुरू कर दी। लेकिन वर्तमान में अपन बात करा तो जो आपने देखो खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो जो बीज, तो उन्नत बीज का बारे में थोड़ा सो काय फायदा नुकसान से उनका बारे में पूछ पाछ।
2: वो किसान भाइयों, उन्नत बीज अधिक पैदावार लेने का मूल आधार है
1: जी।
2: जब बीज ही अच्छा नहीं होगा तो अच्छी फसल लेने की हम आशा नहीं कर सकते। इसलिए उन्नत बीज जिसको बोलते हैं, इसका मतलब है वो प्रमाणित है, उसमें एक अधिक अंकुरण क्षमता है, वो रोग रहित है, उसमें एक आकार के एक समान ग्रेडेड बीज होता है जिससे फसल का जमाव एक सार होता है और अधिक उत्पादन होता है।
1: मतलब ज्यादा उत्पादन कर लेकर बीज आपना जतनो बढ़िया होगा उत्पादन भी आपना उतनो ही बढ़िया होगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। तो अब अपन बात करा भाई धान की सीधी बुआई की जो विधियां छे किसान जो आपने कर रहा है, तो डॉक्टर साहब जो धान छे किसान भाई बना बारो लगा होगा, तो इनकी जो बुआई छे इनकी आजकल देख रहे थे कि रुपाई की जगह सीधी बुआई ने ज्यादा महत्व दे रहा है, तो इनकी लोकप्रियता को काई कारण है?
2: जो वैसे हमारे राजस्थान में और पूरे देश में ज्यादातर रोपाई विधि से ही धान को करते हैं। तो रोपाई में एक तो नर्सरी में पहले हम तैयारी करते हैं
1: जी।
2: तो उसके लिए और उसके बाद में हमें खेत में मुख्य खेत में रोपाई करनी होती है। तो आजकल क्या लेबर की बहुत समस्या है, लेबर मिलती नहीं है, तो कई बार लेबर नहीं मिलने से क्या है रोपाई में देरी हो जाती है। अभी आजकल आप देख लो यही सिचुएशन है कि लेबर मिलना मुश्किल हो रहा है। तो एक तो लेबर की समस्या है, दूसरा जब हम रोपाई करते हैं तो खेत में गारा करते हैं, गरड़ जिसको बोलते हैं किसान भाई, तो गारा करने से हमारी जो जमीन की संरचना है ना वो बिगड़ती है। तो अगली फसल को करने में भी हमें दिक्कत आती है, अगली फसल को समय पे बुआई करने में दिक्कत आती है। तो इन सब कारणों से धान की सीधी बुआई को महत्व दिया जा रहा है। इस धान की सीधी बुआई करने से एक तो आपको गरड़ नहीं करना पड़ रहा, नर्सरी का जो पैसा है वो बच रहा है, नर्सरी में नहीं लगाना पड़ रहा, सीधी आप मतलब खेत में ही बुआई कर सकते हो।
1: मतलब गरड़ करवाई के बजाय सीधी आपने बुआई कर सका। अच्छा,
2: बिल्कुल।
1: तो आपना अटी यो चलन धीरा धीरा बढ़तो जा रहे हो, तो यो एक ही विधि छे या इनकी अलग अलग विधियां भी हो सके छे?
2: देखो धान की

0: सीधी बुआई के दो तरीके मुख्य तौर पे, एक तो जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं वैसे ही सीधा खेत को बढ़िया अच्छे ढंग से तैयार करके गेहूं की तरह, और फिर उसमें सूखे खेत में ही धान की सूखे बीज की बुआई की जाती है।
1: अच्छा, मतलब पानी न गिरे जी का फली बुआई कर दे।
0: और दूसरी विधि ये है कि हम जैसे गरड़ भी करेंगे खेत में, लेकिन उसमें पौध रोपने की जगह हम बीज को पहले से थोड़ा सा अंकुरित करके उसको बीज को हम उसमें गरड़ करे हुए खेत में बुआई करते हैं। तो एक सीधी बुआई का दूसरा तरीका वो है,
1: मतलब हल को अंकुरित कर बीज ने सीधो में रोप मतलब बुआई कर सका, फिर वो में बुआई की तरीका से करा, काई मशीन से कर सका या हाथ से छाटने पड़ोगे काई
0: को। दोनों विधियों की हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे जैसे सीधी बुआई धान में गेहूं की तरह सूखे खेत में करना है, तो सीधी बुआई इसके करने के लिए हम सीड ड्रिल का प्रयोग कर सकते हैं। 20 से 22.5 सेंटीमीटर की जो कतारें हैं उनमें सीड ड्रिल से बुआई करें, और बुआई करने में ये जरूर ध्यान रखना होगा कि हमें ये 2.5 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच से गहरा बीज नहीं जाए। अच्छा। नहीं तो अंकुरण में समस्या आएगी।
1: अच्छा,
0: तो पहले तो हम खेत को अच्छे से तैयार करें। देखो सीधी बुआई के लिए धान के लिए खेत बिल्कुल समतल होना चाहिए पहली बात। दूसरा ये कि हम खेत को हैरो और कल्टीवेटर चला के बढ़िया भुरभुरा और बढ़िया पाटा लगा के उसको तैयार कर लें उसमें। और सबसे पहले क्या है इसमें, क्योंकि खरपतवार की समस्या ज्यादा आती सीधी बुआई में, तो हमें सबसे पहले तो पानी देके सिंचाई देके बरसात आने के पहले और खरपतवारों के बीज को उगा लेना चाहिए, और फिर दोबारा जुताई करके और फिर खेत तैयार करना चाहिए, और फिर सीधी बुआई सीड ड्रिल की सहायता से हम 22.5 सेंटीमीटर की कतारों में करते हैं।
1: जी, तो इन तरीका से आपने सीधी बुआई तो ये सूखा खेत में कर सका
0: था।
1: और आपने की कि भाई ऐसे आपने गरड़ करे हुए खेत में भी सीधी बुआई कर सका था, तो उनको काय तरीको रहे
0: गरड़ करे हुए खेत में अगर हमें सीधी बुआई करनी है तो उसके लिए बीज को हम पहले 24 घंटे पानी में गला देंगे, गला के बोरी में उसको दबा देंगे ताकि उसमें थोड़ा सा अंकुरण हो जाए, मतलब 12 घंटे के लिए उसको बोरी से दबा के धर देते हैं, मामूली उसमें 2-3 मिलीमीटर के आसपास थोड़े से प्रांकुर निकले,
1: धांस देखभाल लग जाए,
0: धांस देखभाल लग जाए। फिर उसके बाद में उस बीज को या तो हम गरड़ करे हुए खेत में सीधा ही छिड़काव विधि से ही बीज को फेंक दें, मतलब इसमें लेकिन अनुभवी आदमी चाहिए ताकि बीज समान रूप से बिखरे खेत में। तो लेकिन इस विधि में अगर बिखेर करके हम करते हैं तो पौधों की संख्या समान रहती है, तो इसकी जगह एक पेडी ड्रम सीडर आता है
1: जी।
0: ड्रम सीडर तो वो ज्यादा महंगा यंत्र नहीं है, वो केवल 5,000 रुपए करीब का आता है, जिसमें 8 ड्रम होते हैं जो 20-20 सेंटीमीटर पे बीज गिराता है। इसमें 3 लेबर आपके पूरे 6 बीघा क्षेत्र में एक दिन में उसको बुआई कर सकते हैं।
1: लेकिन
0: उसका कोई एक तरीका होता है कि मतलब आप जैसे खेत में आपने गरड़ किया, गरड़ करने के बाद में उसका पानी पूरा निकाल दो जिस दिन बुआई करना है, और पानी केवल 1-2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रहे उस दिन, आप फिर उसमें जो पहले से अंकुरित बीज है उनको ड्रम सीडर में भर लेते हैं 2/3 तक सारे ड्रम में, और भर के एक आदमी तो उस ड्रम सीडर को खींचता है और एक आदमी उसको बीज उसमें भरने का काम करता है, तो उस ढंग से वो बीज 20-20 सेंटीमीटर कतारों पर गिरता रहता है, तो वो लाइन में भी हम ड्रम सीडर की सहायता से ये गीली सीधी बुआई कर सकते हैं।
1: मतलब दोनों तरीका से बुआई कर सका था, लेकिन आसान जो तरीको जो सूखी बुआई को जो थोड़ी मेहनत अपन करेंगे तो उनको गीली में
0: गीली सीधी बुआई में वो लाभ नहीं मिलेगा जो जैसे रोपित धान में क्या है गीली जो हम गारा करते हैं खेत में तो उससे जमीन बिगड़ती है, और अगली फसल के लिए जब हम खेत तैयार करते हैं तो उसमें जमीन तैयार करने में भी दिक्कत आती है, तो गीली सीधी बुआई करने में वो लाभ नहीं मिलेगा जो सूखी सीधी बुआई में मिल रहा है, उसमें जमीन की संरचना भी बनी रहेगी और आप मतलब उत्पादन भी ले सकते हो।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब अपन आगे भी बात करेंगे। तो किसान भाई बहनों, आज आपने जो चौपाल में फावना से वह फिर बता दूं, आज आपने चौपाल में फावना से डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा साहब, आचार्य सस्य विज्ञान एवं परियोजना प्रभारी अखिल भारतीय चावल अनुसंधान परियोजना कृषि अनुसंधान केंद्र मेदगंज कोटा। और किसान भाई बहनों, आज आपका ताई बता रहे कि धान की सीधी बुआई कशा करा, काई तरीका चरिको काय फायदो छे, तो आपका मन में भी धान की बुआई से संबंधित, रोपाई से संबंधित, धान से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप सीधी डॉक्टर साहब से बातचीत कर सको छो, आपकी समस्या को समाधान पा सको छो। उनका लेकर वही अपना जाना पहचाना फोन नंबर 0744 STD कोड और 294-11-42 फोन नंबर। दूसरा फोन नंबर पर भी आप बातचीत कर सको छो, 0744 STD कोड और 2-333-444 दोनों पर आप फोन कर और डॉक्टर साहब

0: સીધી બાતચીત કરી શકો છો. તો ડાક્ટર સાહેબ જ્યાં દોની વિધ્યા આપણને બતાવી, દોની વિધ્યામાં ભાઈ આપણે જ્યાદા એદી બડ્યા તરીકો માના તો સીધી બુઆઈ કો જો સુકામાં આપણ કરા, તો સુકામાં ઓર ગીલામાં જો ધાન કી બુઆઈ કરા છો ઉમાં ઉત્પાદનમાં ભી કંઈ ને કંઈ અંતર આવો છો?
1: વૈસે ગીલી સીધી બુઆઈ મેં ઉત્પાદન થોડા સા જ્યાદા રહેગા, ક્યુંકિ ઉસમે ખરપતવાર કી સમસ્યા કમ રહેગી, ક્યુંકિ અપન ગરડ કરતે હૈ ના, તો ગરડ કરને સે ખરપતવાર કી સમસ્યા કમ રહેગી. સૂકે વાલે ખેત મેં અગર હમને સહી પ્રબંધન નહીં કિયા ખરપતવાર કા, તો ઉપજ કમ આતી હૈ.
0: અચ્છા, તો ખરપતવાર કોઈ ફરક પડોગો, બાકી યદિ સહી પ્રબંધન કર લ્યા તો
1: લગભગ પ્રબંધન કિયા જાય તો અચ્છી પેદાવાર લી જા સકતી હૈ. ઓર સૂકી સીધી બુઆઈ મેં પાણી કી ભી બચત હૈ
0: જી,
1: है ना, पानी की उसमें काफी बचत है, 20-25% पानी. और वैसे ही इस बार तो बरसात कम होना बता रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसका तो और महत्व बढ़ जाता है वर्तमान दृष्टि से.
0: बिल्कुल सर, तो रोपाई वाले धान में और ये जो सूखी धान में थोड़ा बहुत ही अंतर से पैदावार को, बाकी अटी बचत भी आपने लगभग लगभग उतनी हो जाओ.
1: इसकी गणित ये है कि रोपाई वाले धान में पैदावार तो ज्यादा आती थोड़ी
0: जी,
1: है ना, 10% के लगभग पैदावार ज्यादा आएगी रोपाई वाले धान
0: जी,
1: लेकिन आपने इनकम भी खर्च भी कम होगा
0: जी. एक किसान साथी को पहुंचे, यहाँ से भी बातचीत कर लेते. हेलो,
2: राम राम साहब.
0: राम राम साहब, कहाँ से कौन बोल रहे हो?
2: मैं कलुंदा से बोल रहा साहब.
0: कलुंदा से, काय नाम छ आपको?
2: चितलाल जी साहब.
0: चितलाल जी, काय पूछ बचाओ छो डाट साहब से?
2: चितलाल जी को, द्वार की लाल जी.
0: अच्छा, द्वार की लाल जी, काय पूछ बचाओ छो?
2: पूछ रहे सामान्य दान तो और दियो.
1: अच्छा,
2: दान
0: નહીં
1: તો કબ આપને કબ હો રહા થા? કિતને દિન હો ગયે?
2: 16-17 દિન
1: હો ગયે. તો પીલા પડને કા કઈ કારણ હો સકતે? દેખો, ફસલ પીલી પડતી, જૈસે અપને બુખાર આતી હૈ ના, આપને ક્યા નામ બતાયા?
0: દ્વારકી લાલજી.
1: જૈસે અપને બુખાર આતી હૈ તો પૌધો કો હર કોઈ ભી સમસ્યા હો જિસમે વો પીલી પડતી હૈ ઉનકો. અચ્છા. કોઈ ભી જૈસે પાણી કમ રહે ગયા, ગરમી જ્યાદા હૈ, કોઈ બીમારી હૈ, કીડા હૈ, કુછ ભી હૈ, પોષક તત્વ કી કમી હૈ, હર ચીજ મેં પીલાપન આતા હૈ. તો સીધા મેં યહાં સે દેખ કે યે નહીં બતા સકતા કે આપકા ક્યું પીલા પડ રહા હૈ, મતલબ સીધી સી બાત યે હૈ
0: જી,
1: હૈ ના. તો પીલા પડને કા તો અગર આપ પાણી સહી મેન્ટેન કર રહે હો, જરૂર સે જ્યાદા આપ એક તો ઉસમે પાણી ભર કે નહીં રખે ધાન મેં इतना, क्योंकि तापमान ज्यादा है ना, तो अगर दिन में अगर आप पानी भर के रखोगे ना तो उसमें पानी का तापमान ज्यादा होने से भी पीला पड़ता है. तो पानी एक तो बिल्कुल भी भर के नहीं रखें इस गर्मी में, केवल आप उसको संतृप्त रखें जमीन को.
2: बरोबर पिलाया है.
1: अच्छा, मतलब
2: इसको उपाय बताइए पीलापन हटाने के लिए.
1: पीलापन हटाने के लिए आप ऐसा करना भाई, इसका क्योंकि कारण मैं नहीं जान सकता अभी फोन पे आपके पीलापन का, है ना, जो मैं इसलिए जब तक कारण किसी चीज का पता नहीं चलता तो उसका निदान भी नहीं हो सकता. तो आप स्पष्ट कारण के लिए या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप फोटो भेज देना, मुझे बताना क्या स्थिति है, या मेरे से आप कॉल कर लेना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ.
0: तो एक बार नंबर बता दो डॉक्टर साहब आपका.
1: मेरा नंबर आप नोट कर लो,
0: जो सभी किसान भाई बहन,
1: 98-290-88-726.
0: तो किसान भाई बहन और डॉक्टर साहब का ये नंबर छ, आपका जो भी समस्या से धान से संबंधित, तो आप सीधे बेझिझक यहाँ से बातचीत कर सको छो. હા ડાક્ટર સાહેબ, જ્યાં આપણે વાત કરે છે ભાઈ સીધી બુઆઈ કરી દી આપણને ફાયદો નુકસાન કી વાત છે, તો સીધી બુઆઈમાં કોઈ ને કોઈ જો સમસ્યા છે ઉભા ભી આવો છે કે આપણે કઈ?
1: देखो, सीधी बुआई में प्रमुख जो चुनौती है ना, वो है खरपतवार को नियंत्रित करना. तो अगर उसको भी हम शुरू से प्लानिंग से चले तो कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या है, जैसे हमें, जैसे आज हमने बुआई करी, सूखी बुआई करने के बाद हम तुरंत उसमें पानी छोड़ देते हैं. पानी छोड़ने के बाद में उसमें पानी को मेंटेन रखते हैं, और हम धान का बीज उगने के पहले, मतलब 3-4 दिन के अंदर हमें पेंडामेथिलिन जो दवा आती है खरपतवार नाशी, उसको हम छिड़काव करते हैं. एक 500 लीटर की टंकी में 3.25 लीटर के लगभग पेंडामेथिलिन 30 cc के नाम की जो दवा आती है उसको छिड़क दें हम तुरंत, और जब नमी रहे, और जिस दिन उसको छिड़कें उस दिन पानी नहीं पिलाएं, उसके बाद आप पानी पिलाएं. तो एक तो ये काम करें खरपतवार के लिए. दूसरा, जब 15-20 दिन की फसल हो जाए आपकी, तो बिसपायरीबेक सोडियम जो नोमिनो गोल्ड लोकप्रिय नाम है उस आती है, तो वो आप 500 लीटर की टंकी में 350 ग्राम डाल करके उसका छिड़काव आप कर दें, और फिर आवश्यकता पड़े तो आप 45

0: 50 दिन पे हाथ से खरपतवार और निकलवा दे, फिर कोई ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी आपके, फिर कोई दिक्कत नहीं।
1: तो मुख्य रूप से तो खरपतवार नियंत्रण आपन ने कर लियो, तो इमें और कोई समस्या कोई ना, टर्म टर्म पर पानी कम पानी भी बरसोगे जिमें भी आपने बड़े पैदावार आपन ले सका चाहिए। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया भाई दो विधियां आपने बताई सीधी बुआई की, तो गीली की और एक सूखा की। तो गीली सूखा में जो आप बीज लिया था तो उनकी किस्मा को भी कोई ना कोई अंतर आओ चा?
0: ये जो सीधी बुआई के लिए धान की जो भी किस्में उन पे अनुसंधान कार्य हम कर रहे हैं अभी
1: जी,
0: लेकिन अभी तक जो इस कोटा खंड के लिए जो सिफारिश में है उसमें पूसा 4, पूसा सुगंधा 4, पूसा सुगंधा 5, पूसा 1509 ये किस्में विशेष तौर पे सिफारिश में है। इसके अलावा अभी जो हमारे रिसर्च में अभी प्रारंभिक परिणामों में पूसा 1985 भी इसके लिए बहुत अनुकूल पाई गई है, तो इन किस्मों में से हम बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार प्राप्त होगी।
1: मतलब यह किस्मान दोनों विधियां में अपन काम ले सका था।
0: कोई भी मध्यम अवधि या अल्प अवधि की किस्म है जो बासमती की, हमारे कोटा खंड में हमारे किसान भाई बासमती वेरायटी ही ज्यादा ले रहे हैं, तो उन्ही किस्मों को मैंने बताया, तो मध्यम और अल्प अवधि की किस्में इसमें लेंगे।
1: बिल्कुल, एक बात और पूछ बचाऊं डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे आपन बीज के चुनाव आपन न कर लो, बुआई भी कर रहे हैं, एक बीज उपचार कर वो अपना किसान भाई बहन बहुत सी बार कहें थोड़ा सा आलस का पाचन न कर, तो इनको भी कोई महत्व चाहिए?
0: बीज उपचार एक समझदार किसान जरूर करेगा
1: जी,
0: क्योंकि बीज उपचार एक 10 मिनट का काम है। अगर आपने बीज उपचार बीज का टीका नहीं करा तो फिर बाद में आपको 10 मिनट की जगह हो सकता है आपको 2-4 दिन चक्कर काटने पड़े, दुकानदार के यहाँ दवाई लेने जाओगे, फिर उसका छिड़काव करोगे ट्रैक्टर से, तो बहुत लंबी प्रक्रिया आपको बाद में करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए कि आप बीज उपचार तो कर ही लें, फफूंद नाशी से कोई भी फसल हो, चाहे सोयाबीन हो, उड़द हो, मूंग हो, धान हो, कोई भी फसल हो, फफूंद नाशी से सबसे पहला बीज उपचार किसान भाई अवश्य करें, उसमें कुछ भी 10 मिनट लगते हैं, कुछ भी समय नहीं लगता
1: जी,
0: है ना। दूसरा फिर उसके बाद में उसमें कल्चर भी हम मिला दे, मान लो जैसे दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर और दूसरी फसलों में और एजोटोबैक्टर कल्चर, जैसे धान में एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम कल्चर आते हैं इसके
1: जी,
0: लिए
1: जी।
0: और इसके अलावा पीएसबी कल्चर आता है जो हम डीएपी वगैरह यूज करते हैं
1: जी,
0: तो उसका जो फॉस्फोरस है पूरी तौर पे फसल प्राप्त नहीं कर पाती है। अगर हम पीएसबी कल्चर बीज में उपचार कर देंगे तो फिर वो अच्छे ढंग से प्रयोग कर पाएगी फसल, तो समझदार किसानों को बीज उपचार जरूर करना चाहिए।
1: तो बीज उपचार करवा से एक तो बाद की जो समस्या ऊंसा अपन बचेगा, दुकानदार के चक्कर लगावा से बचेगा, और जो आर्थिक नुकसान है उनको भी आप बचेगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है डॉक्टर साहब आपने बताया। तो किसान भाई बनाओ, आपके मन में भी धान की सीधी बुआई की जो समस्या च या धान की सीधी बुआई का तरीका च कोई समस्या आ रही च बीज का बारे में या खाई के बारे में भी आप जानबो चाहो छो, तो सीधी डॉक्टर साहब से बातचीत कर सको छो। बात करवा कर लेकर वही आपका जाना पहचाना फोन नंबर 0744 एसटीडी कोड और 294-11-42 फोन नंबर, दूसरा 233-444 यहाँ पर भी आप फोन कर डॉक्टर साहब से सीधी बातचीत कर सको छो। और आज आपके चौपाल में पावना से डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा साहब, आचार्य सस्य विज्ञान एवं परियोजना प्रभारी अखिल भारतीय चावल अनुसंधान परियोजना कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा। तो किसान भाई बनो, आप सीधी बातचीत कर सको छो। एक किसान साथी को फोन भी आयो डॉक्टर साहब, यहाँ से बातचीत करा जा। हेलो, हाँ राम राम साहब।
2: राम राम,
1: कहाँ से
2: बोल रहा हूँ? यहाँ से फलिया से।
1: फलिया?
2: हाँ।
1: अच्छा, काहे पूछ बचाओ तो निकले जी?
2: मतलब हम घरेलू बीज होता है ना
1: जी,
2: उसको कैसे प्रयोग करें, मतलब घर वाली फसल को उपचारित करके किसे बीज में बदले, उसके लिए क्या करना चाहिए हमको?
1: दो आपको घर को बीज रखे हुए कैसे काम में लिया उपचारित कर कम
2: उपचारित कर उसको कैसे
0: बोए? कौन सी फसल का बीज है आपके पास घर का?
2: हमारे सबके सभी फसल के हैं, धान का भी है, मक्का का भी है, गेहूं का भी है, सबका है हमारे
0: दो। हाँ, तो इनमें जैसे मैं बताऊं, आप हाईब्रिड के अलावा, मान लो मक्का का हाईब्रिड बीज है तो वो तो हर बार नया काम लेना होता है, बाकी अगर धान का आपके पास में अच्छी क्वालिटी का बीज है
2: पिछले,
0: हाँ तो उसको, धान का अगर बीज है ना आपका, तो जब धूप दे उसको एक तो पहले, तो गर्मी में उससे अंकुरण क्षमता बढ़ जाएगी उसकी, धान का बीज है ना आपके पास, और फिर उसको आप शोधन कर लें, शोधन का मतलब उसको जो थोता बीज है उसको निकाल दे।

0: तोता बीज निकालने के लिए आप क्या करें, एक नमक का घोल बनाएं, 10 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक घोल लें और फिर उसमें आप धान के बीज को डालें, जो तोता बीज होगा वो ऊपर तैर जाएगा और उसको आप निथार के अलग कर दें। बाद में उसको शुद्ध पानी से दो चार बार धो के पूरा नमक निकाल दें और उसको फैला के सुखा लें। ये बुआई करने के एक दिन पहले आप कर सकते हो, सुखाने के बाद में फिर उसमें जो बीज उपचार आप करके बुआई कर सकते हो। तो मतलब तोता बीज निकालना जरूरी है उसमें से, पुराना आपका जो बीज है उसमें से,
1: तो उनको पता चल जाओगे आपने ताई भाई,
0: ताकि एक ही तरह के आपका फसल का जमाव होगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, कम ज्यादा न होगो, सीधो सियांगना कोई फर्क न पड़ोगो। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया निकले जी, आपने फोन करो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब से अपन बात कर रहे थे भाई, अपन बुआई भी करेगा सब कुछ है, धान की भी सीधी बुआई अपन कर ही रहा था, तो एक साथ साथ समस्या पर भी अपन ने चर्चा करी भाई, कई समस्या ही माँ हो बीज की किस्मा भी आपने बताए सारी चीजा से। तो अबारों जो वर्तमान माहौल अपन देख रहे थे मानसून को, इम देखता हूँ या कहीं बताऊँ को किसान भाई बन ध्यान रखाना आपने
0: भाई। मैं तो किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि आपके पास में अगर पानी की पर्याप्त सुविधा है
1: जी,
0: तभी धान करें
1: जी,
0: क्योंकि इस बार अल नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है और मौसम विभाग इस चीज की मतलब संकेत दे रहा है कि आशंका है कि इस बार कम बरसात होगी हमारे मतलब इस बार ये बताया जा रहा है। तो इसको देखते हुए अगर हमारे पास में सिंचाई साधन पर्याप्त है तभी धान की खेती करें, अगर सिंचाई साधन अपर्याप्त है तो फिर आप दूसरी किस्में जैसे मूंग है, उड़द है, तिल है, मक्का भी हम कर सकते हैं, मतलब कम पानी चाहने वाली फसलें आपको फिर सेलेक्ट करना चाहिए
1: जी।
0: ये मेरा, और ऐसी किस्में भी ऐसी लें जो कम समय में हो जाए और उसका पूरा कम, जब ये बरसात होती है तो उसमें ये दलहनी फसलें ना मूंग उड़द इनकी अच्छी पैदावार होती, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, थोड़ा बहुत पानी चाहिए तो उतनी बरसात तो होगी भी सही। लेकिन जैसे मान लो इस बार कम बरसात है तो उस स्थिति को देखते हुए आपके पास अगर धान कर रहे तो सिंचाई साधन पर्याप्त होना चाहिए।
1: बिल्कुल, एक किसान साथी को फोन आ रहा था डॉक्टर साहब, यहाँ से बातचीत कर लेना चाह। हेलो, राम राम साहब।
2: हाँ राम राम साहब।
1: राम राम, कहाँ से कौन बोल रहे हो?
2: मुसलमान लाल योगी बोल रहे थे, मांग रोड से।
1: मुसलमान लाल जी स्वागत है आपको चौपाल में, कहीं पूछ
2: बचा रहे तो मुँह से आपने अगर सीधी बुआई करा मतलब उराई करा धान की तो वो टाइम की खेत में कितनी नमी हो वो जरूरी है साहब?
0: उस समय ऐसा है कोई जरूरी नहीं है, अगर सीधी बुआई करे तो कोई नमी मत हो भले, हमने क्योंकि पहले आपने रेल ना किया, पलाव जिसको बोलते हैं अपन, पहले पानी छोड़ दिया, खेत को तैयार किया बढ़िया से, हेर और कल्टीवेटर चला के क्रॉस और बढ़िया पाटा लगा के तैयार हो गया, तो फिर हम बुआई जो सूखी स्थिति में ऊपर हम कर देते हैं। बुआई करने के बाद में बस ये जरूर ध्यान रखें कि बीज की गहराई है ना 2-2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं जाए, है ना, और उसकी जो कतारों की दूरी 20-22 सेंटीमीटर रखें और फिर उसके बाद हम पानी पिला देते हैं तुरंत। फिर मतलब जैसे बुआई करी आज तो हम भले आज ही पानी पिला दें, पानी पिला के फिर रोजाना उसको मेंटेन रखते हैं, उसमें पपड़ी नहीं जमे तो एक दिन छोड़ के एक दिन हम पानी उसमें पिलाते रहे और 2-3 दिन के अंदर
2: उर्वरक
0: नहीं, नहीं है शुरुआत में उर्वरक देने की जरूरत नहीं है। उर्वरक का भी अभी सीधी बुआई में एक तरीका है, वो मैं सभी किसान भाइयों को बताऊं। सीधी बुआई में आपको बुआई के समय केवल आपको जो फॉस्फोरस देने वाला या तो डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटास, ये दो ही खाद आपको जमीन में पहले से ही बुआई के पहले ही आपको बुरक के बढ़िया अच्छे से मिला दें, या अगर आप डबल पेटी के सीट ड्रिल से कर रहे हैं तो उसके साथ में बिजाई के साथ में ही डीएपी दे सकते हैं। और जो यूरिया है नाइट्रोजन के लिए यूरिया देंगे तो वो बुआई के 10-15 दिन के बाद देंगे, पहले देने की जरूरत नहीं है, जितना भी देना है उसका एक तिहाई, तो बुआई के 12-14 दिन पे एक तिहाई जब हमारा जब कल्ले पूरे निकल जाए निकलेंगे उस समय, और फिर बाद में जब हमारी जब बाली बनना शुरू होगी तब एक तिहाई डोज नाइट्रोजन का जब देंगे।
1: तो ये तरीका से उर्वरक प्रबंधन भी आप ना कर सकते। श्रवण लाल जी आपने फोन करो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आपने उर्वरक प्रबंध भी बताया भाई, सीधी बुआई में तो दोनों तरीका की जो बुआई चाहे गरड़ करी हुई में और दूसरी में, दोनों को तरीको एक ही रहोगे उर्वरक को आप
0: नहीं। उर्वरक में देखो ऐसा है जो सीधी बुआई वाला है जो मैंने बताया उनमें एक ही तरीका रहेगा, एक तत्व और है जिसका विशेष ध्यान रखना किसान भाई को, वो है जिंक
1: जी।
0: जिंक की हमारी यहाँ की 50% मिट्टी के नमूनों में जिंक की कमी आ रही है
1: जी।
0: तो जिंक सल्फेट हम सोइल में मिट्टी में आखिरी जुताई के समय डाल दें।

0: है ना, जैसे आप जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट ले रहे हो तो 16 किलो एक हेक्टर में
1: जी,
0: और हेप्टाहाइड्रेट जिंक सल्फेट ले रहे हो तो वो आपको 25 किलो एक हेक्टर में, अगर आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है तो ये हम किसी वर्मी कंपोस्ट या थोड़ा सा देसी खाद लेके उसमें मिला के और हम आखिरी जुताई के समय खेत में भुरक देते हैं तो जुताई में मिल जाना चाहिए, मतलब
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ताकि खड़ी फसल में दिक्कत नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया माता डॉक्टर साहब आपने बताया छे, एक टर्म पूरा हो रहे थे तो आखिर में संदेश का रूप में किसान भाई बना कहीं कब छो।
0: मेरा किसान भाइयों को संदेश ये है कि समय के साथ में तकनीक बहुत बदल रही है, बहुत जानकारी उपलब्ध है, आप सबके पास में मोबाइल भी है, आजकल तकनीक बहुत उपलब्ध है, तो नई नई तकनीकी जानकारी आप लें और पुरानी रूढ़िवादी तकनीकों को बदलें, नए तरीके अपनाएं, ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हमारी ज़मीन भी स्वस्थ रहे, हम वर्तमान में भी अच्छे ढंग से उसमें पैदा कर लें और आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी जो ज़मीन है ना इसको भी अच्छा छोड़ के जाए।
1: बिल्कुल,
0: मतलब इसको ज़मीन को बिना बिगाड़े हम आगे के लिए अभी वर्तमान की भी पूर्ति करें और आगे के लिए भी हम
1: मतलब भविष्य के लिए भी जमीन सुरक्षित रहे बहुत जरूरी है।
0: इस ढंग की तकनीकों का प्रयोग करें।
1: बिल्कुल,
0: और अधिक से अधिक आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क में रहें।
1: बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब आपने बातें बताए थे, निश्चित रूप से किसान भाई बनिया बातों को लाभ लेगा और फायदा उठाऊगा। आप मांगे चौपाल में पधारे, इनके लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब, धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। किसान भाइयों और बहनों, सभी फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक का प्रयोग करें। इसे विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे चना, मसूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, मिर्च, टमाटर और आलू में लगने वाले बीज जनित एवं भूमि जनित जैसे उकटा, जड़ गलन, तना गलन, अंकुर गलन, कंद सड़न आदि रोगों के प्रबंधन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार, कंद उपचार, नर्सरी उपचार करें। ये पौधे में रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता की क्रियाविधि को सक्रिय करता है। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अपघटन की दर बढ़ाता है। साथ ही किसान भाइयों, बीज और पौध उपचार का कार्य छायादार सुरक्षित स्थान पर करें। ट्राइकोडर्मा के साथ अन्य कवकनाशी रसायनों का प्रयोग न करें।
1: तो किसान भाई बहनों, निश्चित रूप से जो डॉक्टर साहब ने बाता बताया जो ध्यान रखना, अब चौपाल को टाइम भी पूरा हो रहा है, तो आपका साथी श्यामू भाई के ताए भी दे अनुमति चला जा। राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं लोक संगीत, और आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत में ये पहली रचना।

0: अभी ये लोकगीत अभी आपने सुना सरस्वती देवी के स्वर में। आइए अब आपको सुनवाते हैं ओम प्रकाश मेहरा की ये रचना।
1: आ वही जिकिरे बेरणी।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में अगला स्वर आपको सुनवाएं, उससे पहले एक खास अनुरोध। रात्रि 9 बजे होता है हमारा खास कार्यक्रम एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने, और इस कार्यक्रम में आप अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं अपनी पसंद की गीतों की फरमाइश के साथ। हमारे फोन या व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 9530012020 पर। साथ ही आप हमें ईमेल के जरिए भी अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश भेज सकते हैं, साथ ही अपना नाम और जिनको आप ये गीत डेडिकेट करना चाहते हैं उनका नाम भी साथ में लिखें enjoyair@kota.gmail.com पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं किशन लाल वैष्णव की ये रचना

ये खूबसूरत भजन अभी हमने आपको सुनवाया किशन लाल वैष्णव के स्वर में। आइए अब आपको सुनवाते हैं मंजू रानी विजय के स्वर में ये लोकगीत।

0: अगर आप है दुनिया के किसी भी कोने में
1: और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी का चंबल चैनल,
0: तो आप हमें सुन सकते हैं कहीं भी।
1: हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर,
0: वहाँ से कीजिए डाउनलोड न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप।
1: न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप
0: ऐप ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे
1: रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट चैनल,
0: चंबल चैनल आकाशवाणी कोटा।
1: चंबल चैनल आकाशवाणी कोटा,
0: ओनली एट न्यूज ऑन एआईआर ऐप।
2: आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से लोक संगीत, और आइए लोक संगीत में अगला स्वर इंतजार कर रहा है। धनराज रावल के स्वर में आपको सुनवा देते हैं ये लोकगीत।

बात तो भाई साची खींच धनराज रावल जी ने जाना काई बात को बड़ दस रहे हो जया बादलान ग बरस ही नरिया लाडान की ना इंतजार कराया पकराया जा रहे फैलिया की जी कसी दो तीन दिन में बरसंगा रब तो भाई भविष्यवाणी या होगी कछे सात दिन और लगेगा खेर कराचा इंतजार खेर खदी तो बाजेगा बेंड बाजा आओ सुनो छा अगली रचना भंवर सिंह का स्वर में

और इसी खूबसूरत रचना के साथ आज का लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद है आज की हमारी रचनाएं आप सभी को पसंद आई होंगी। FM 102.6 MHz साथ ही प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। रात्रि के 8 बजने को हैं और लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत में आप सभी का स्वागत है और आइए आपको सुनवाते हैं आज की रात्रि का हमारा पहला नगमा। ये नगमा हमने लिया है फिल्म कसूर से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, और साथ ही इस गीत को गाया है अलका याग्निक कुमार सानू ने और लिखा है समीर ने। संगीत है नदीम श्रवण का।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हमारा दिल आपके पास है से। इस गीत में आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतबद्ध किया है इसे संजीव दर्शन ने।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मैं हूं आपकी रेडियो साथी नेहा। आज रात के हमारे विशेष कार्यक्रम एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तरानों में अपनी पसंद के गीतों को लाइव सुनने के लिए हमारे श्रोता हमें व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं 9530012020 पर। नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, हमारे स्टूडियो के नंबर रहेंगे 9530012020 पर। ईमेल के जरिए भी आप अपनी पसंद का गीत भेज सकते हैं और अपने उन साथियों को भी शामिल जरूर से करें जिन्हें आप ये गीत सुनवाना चाहते हैं, उनके भी नाम लिखें और हमें भेजें। हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा enjoyairkota@gmail.com पर। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमें व्हाट्सएप या एसएमएस कीजिए अपने पसंद के गीतों के साथ।
0: आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल दुनिया में कहीं भी आपके साथ, आपके मोबाइल फोन पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR NEWSONAIR। अब भाषा चुनिए, ऊपर की पंक्ति पर रेडियो के हरे निशान को छूकर मौजूद सूची से चुनिए AIR कोटा। न्यूज ऑन AIR आपके साथ।
1: हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में आपको सुनवाने जा रहे हैं बेहद खूबसूरत गीत जो हमारे दिल के हैं बेहद करीब। आइए सुनते हैं फिल्म फिजा से ये गीत। गीत में स्वर है सोनू निगम अलका याग्निक के, मधुर धुन है अनु मलिक की और गीत को लिखा है गुलजार ने।

आइए सुने चित्रपट संगीत में हमारा अगला नगमा। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से। आवाजें एक बार फिर सोनू निगम और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत अनु मलिक का।

देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

साथियों, ऐसे ही खूबसूरत गीत आप आज सुन सकते हैं रात्रि 9 बजे। बस फर्क इतना होगा कि इन गीतों में पसंद होगी आपकी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी पसंद के गीत आज हम शामिल करेंगे रात्रि 9 बजे आज के हमारे विशेष कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तरानों में। और इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर्स या फोन के जरिए आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स रहेंगे 9530012020 पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत और चित्रपट संगीत में पेश है हमारा अगला नगमा फिल्म खामोशी से। स्वर है उदित नारायण के।

और चित्रपट संगीत का आखिरी अलबेला गीत हमने लिया है फिल्म अलबेला से, अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो के मधुर युगल स्वरों में। गीतकार हैं समीर और इस गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है।

0: श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट

0: BMS Epoch IIN और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित

0: का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बज रहे हैं और अब हमारे श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने।

श्रोताओं, जैसे कि रात्रि 9 बजे हम आपके लिए खास कार्यक्रम पेश करते हैं हर शुक्रवार रात में एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने, और स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का जिन्होंने अपनी प्यारी सी फरमाइश अपने नामों के साथ हमें भेजी है। जो भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी बनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमें फोन या व्हाट्सएप के जरिए अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। एसएमएस भी आप इसी नंबर पे कर सकते हैं और हमारे नंबर रहेंगे 9530012020 पर। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी रहेगी enjoyairkota@gmail.com पर। कृपया एक फरमाइश के बाद दूसरी फरमाइश तुरंत न भेजें और इंतजार करें।

0: आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का हमारी पहला गीत। हम आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है फिल्म नमक हलाल से। यहाँ ये गीत हम आपको सुनवाएं, इससे पहले बताएं कि फरमाइश करता आखिर कौन है। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है संजीव कुमार जैन, देवाशीष सिटी कोटा से। साथ ही यही गीत सुनना चाहते हैं इंटाली तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान से राजेश पुष्करणा, प्रकाश कपिल, रामचंद्र गोपाल, जागृति नव्या व समस्त पुष्करणा परिवार। और एक प्यारा सा अनुरोध हमें भेजा गया है, मेजबान जी नमस्कार जी, कोई भी गीत हमें सुनाए, धन्यवाद जी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मिंडी सौरभ, सायना शर्मा और निवान शर्मा। तो आपका नमस्कार स्वीकार करते हुए आइए आपको सुनवाते हैं नमक हलाल से आज की हमारी पहली प्रस्तुति और ये पहला गीत।
1: बुजुर्गों ने

0: पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी, नाची थी।
1: बेहद ही खूबसूरत और छनकार भरा ये गीत अभी आपने सुना, जिसकी फरमाइश हमें की थी देवाशीष सिटी से। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारी अगली फरमाइश, जो हमें की गई है अपना देश फिल्म के गीत के लिए। और इस गीत के लिए फरमाइश आई है सीधे नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नहाकर, निर्मल नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मोहरकर। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। ये कहते हैं कि व्हाट्सएप वाला ये प्रोग्राम इन्हें काफ़ी पसंद है और

कोई भी गीत सुना दिया जाए। और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से ये गीत हम आपको भी सुनवाते हैं। तो यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, इस गीत को जरूर सुनिए। यकीन है हमें कि आपको काफी पसंद आएगा। लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत आपके लिए।

अब हम शामिल कर रहे हैं थोड़े वक्त के बाद। करणवीर हाउस भूचो केचनिया बटिंडा पंजाब से नमस्कार। परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन, अभिजोत किसी भी गीत में शामिल करें तो किशोर कुमार के इस खास गीत में हम आपको शामिल करते हुए सुनवाते हैं ये खास गीत।

भाई गानों की धुनों में इतना खो जाते हैं और फिर जब SMS पढ़ने लगते हैं तो भूल ही जाते हैं कि भाई गीत तो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसके लिए फरमाइश हमें भेजी गई है, और ये फरमाइश भेजने के बाद हम आपको बता दें कि इस गीत में हम और भी हमारे श्रोता हैं उनको शामिल करने जा रहे हैं। तो इसी गीत में हम शामिल करेंगे गाँव खोखरा वाली विनोद बारासा, विशाल विकास रोशनी और शगुन बारासा को, और हिंदुस्तान रेडियो मित्र ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा को। ये खूबसूरत गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये लिया है हमने फिल्म सावन को आने दो से, जिसकी फरमाइश हमें बस अभी मिली है और मात्र चंद सेकंड्स के अंदर हम

ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए अगर आप भी देर कर रहे हैं अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए, तो देर मत कीजिए, जल्दी से फोन उठाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर 9530012020 पर, और कार्यक्रम का नाम है SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने। आप कहां से हमें सुन रहे हैं ये भी शामिल करें, और किसे ये गीत सुनवा रहे हैं वो उसे भी शामिल करें।

आइए बढ़ते हैं श्रोताओं हमारे अगली फरमाइश की ओर, जो हमें ढेरों मिल रही हैं, लगातार मिलती जा रही हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा वालेकुम अस्सलाम, फाजलिका पंजाब खेड़ा, परिवार भूषण खेड़ा, विशाल विशु खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, अरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक, समस्त खेड़ा परिवार, ये धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं हमें किसी भी गीत में शामिल करें। जी जल्दी शामिल करेंगे और गीत भी तैयार है जिसमें हम आपको शामिल करने वाले हैं। और यही फरमाइश हमें मिली है गांव बनवाला, हनवंता फालविका पंजाब, विनोद, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और सारा मायल परिवार, ये भी किसी गीत में शामिल होना चाहते हैं और अपना नाम हमारे स्टेशन से सुनना चाहते हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि किसी भी गीत में शामिल करें, एक और प्यारा सा अनुरोध, नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन, अमन, दिव्यांश और मदनलाल वर्मा के, तो बिना किसी देरी के इस गीत में इन्हें शामिल करते हुए, इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए ये प्यार भरा गीत आपके लिए।

नांदेड़ एतला महाराष्ट्र से एक और फरमाइश जी, बादल क्यों गरजता है? बादल क्यों गरजता है, ये तो खैर बादलों को पता है ये क्यों गरजते हैं, बरसने के लिए। शंकर जायसवाल, गणेश जायसवाल और शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव दुर्गेश्वरी, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल ये गीत सुनना चाहते हैं और किसी भी गीत में शामिल करने के लिए उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया, धाकड़ भोला, प्रवीण रियांश और प्रतीक वाकतरिया गीत सुनना चाहेंगे। नमस्कार के साथ धनोरी तेली वाला से निसार नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, इनकी गुजारिश है कि किसी भी गीत में इन्हें शामिल किया जाए। जी ये बेहद खास गीत हम आपको भी सुनवाएंगे कि बादल आखिर क्यों गरजता है। गांव रायखाना, जिला बठिंडा, पंजाब, परमिंदर सिंह, सोनी करण, सोनी रानू, दीपू, वीरपाल, कुलदीप, किसी भी गीत में साभार शामिल किया जाए। जी बिल्कुल आपको शामिल करेंगे। और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, किसी भी गीत में हमें भी शामिल करें। तो आइए आप सबकी पसंद पर, आप सबके अनुरोध पर इस गीत में आपको शामिल करते हुए सुनते हैं कि बादल यूं गरजता है।

श्रोताओं, अगर अभी तक आप पीछे छूट रहे हैं और हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको बता दें हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं 9530012020 पर, और कार्यक्रम का हमारा नाम है SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने। इस प्रोग्राम में जी लाइव प्रोग्राम में आपका नाम लिया जाएगा, आपकी पसंद का गीत सुनवाया जाएगा, तो बिना किसी देरी के हमें SMS या व्हाट्सएप जरूर करें। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप अपनी पसंद के गीत के साथ अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली फरमाइश जो हमें भेजी गई है जिला अम्बाला से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशप सिंह राहुल, जो कि एक बेहद प्यारा गाना सुनना चाहते हैं जो थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे। कुछ नाम हमसे रह जाते हैं जो चाहते हैं कि वो भी गूंजे जाए हमारे रेडियो स्टेशन पर, तो मदन चावला गांव कैलाशपुरी चतरगंज हिंडोली बूंदी, भरत गुजर रावतभाटा से, अनिश अदुका सीकर से, करुणा तवनवर सीकर से, राम गुजर देवली, प्रिंस भरतपुर हर

पाल सिंह, गीता देवी, प्रकाशी देवी, जतिन और योगेश, ये सब चाहते हैं कि किसी भी गीत में शामिल करें। उम्मीद करते हैं आप तक ये गीत पहुंचे और आप सभी को ये गीत कहां सा पसंद आए। और जी, एक और मैसेज आया है और इन्होंने भी गुजारिश की है कि इनका भी नाम शामिल कर लिया जाए। तो गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा से राधेश्याम, इंदिरा सार्थक और सचिन शर्मा जी को भी शामिल करते हुए पेश करते हैं। आप सभी के प्यार के लिए वैसे बहुत बहुत धन्यवाद और ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार, समस्त राजपूताना परिवार सुनना चाहते हैं एक खास गीत। फिल्म हिफाजत से ये गीत आप तक पहुंचाएं उससे

0: पहले इसी गीत में हम शामिल करना चाहेंगे मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर को, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल प्रियंका, मन्नत गुरकीत और गुरशप सिंह राहुल जो कि कह रहे हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लिया जाए। और इसी के साथ खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, आयुषी रमेश चंद्र, शेख मुसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप भी, आप सभी के लिए भी ये गीत पेश होने वाला है। और इसी गीत को आप तक पहुंचाएं उससे पहले कुछ नाम हमारे साथियों के छूट रहे हैं तो उनको भी शामिल करते हैं। हरियाणा से अंकित मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा ये भी ये गीत सुनना चाहते हैं। और किसी भी गीत में शामिल करें धन्यवाद के साथ बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। तो आप सबकी प्यारी सी फरमाइश के साथ, जिसमें हमें एक और जस्ट अभी SMS मिला है और इस SMS में जो नाम शामिल है उन्हें भी शामिल करते हैं। किरण, अमन, सुप्रिया, जया और कनिष्का ने बिसलपुर टोंक से हमें इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।
1: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो।

बेहद ही खूबसूरत गीत अभी हमने सुना और यकीन मानिए हमें सुनने के बाद काफी पसंद आया भाई। जिस भी श्रोता ने इस गीत के लिए फरमाइश की उन्हें धन्यवाद तो बनता है। तो प्यार भरे नमस्कार के साथ SMS के बहाने चंबल चैनल के तराने कार्यक्रम में हमें फरमाइश भेजी गई है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार। उन्होंने हमें जो गाने की फरमाइश भेजी है वो गाना हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसी गाने को सुनने के लिए हमें दरखास्त मिली है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल खटक, योगेश, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक की। और इनका जो है इनका नमस्कार हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं इनकी भी फरमाइश। जी हाँ, सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, जिन्होंने ये गीत सुनना चाहा है। फिल्म निकाह 1982 से आवाज है महेंद्र कपूर व सलमा आगा की। तो आइए इनकी फरमाइश पर आप तक पहुंचा देते हैं ये खूबसूरत गीत।

इसी गीत के साथ आपकी अनुमति चाहेंगे आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तरानों से। साथ ही जिन भी श्रोताओं ने आज हमारे कार्यक्रम में सहभागिता की है उन सबका दिल से आभार, दिल से धन्यवाद इस कार्यक्रम को बेहद खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एसएमएस के बहाने चंबल चैनल के तराने। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। जब कभी अनमनी सी होकर शाम दिन के आंचल को झटक देती है, खुद को समेट लेती है अपने खेमे में, तो क्षितिज गुनगुना कर उसे मनाता है। कोई दिलकश सा नगमा चुनकर उसके उदास मन को गुदगुदाता है।

कभी आसान नहीं होता। उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहाँ। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती है, जैसे आवाज लगाती हैं। कभी देखो तो यहाँ इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।

ये कैसे बताए कि चंद अल्फाजों से एक गुलशन किस तरह खिल उठता है, उम्मीदों का दरख्त कैसे झूम उठता है, किस तरह उस पर फूलों की तरह दुनिया के तमाम हसीन रंग सज जाते हैं, और कैसे उसकी डालों पर बैठे ख्वाबों के पंछी सरगोशियां करते हैं, गुनगुनाते हैं।

वो रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

रोज कुछ ऐसा ही होता है। दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं। दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।

0: ใจรัก
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
3: India's development assistance.
4: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
5: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
2: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है।

अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: on behalf of the government and the people of India. They also extended condolences to the family of those who lost their lives in the recent conflict. In Wimbledon Tennis Championships, Novak Djokovic equaled Roger Federer's record for most match wins at Wimbledon as the seven-time champion defeated French star Arthur Rondaresh to reach the rounder of 16 today. In other round third of matches, world number one Jannik Sinner defeated US player Jenson Brooksby, while Jan Lennard Struff of Germany beat Daniel Medvedev. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 102.3.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 11:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।